मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के आश्विन माह की 9वीं तिथि तदनुसार 1 अक्टूबर सन 2026। इस वक्त सुबह के 5:58 हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की प्रातःकालीन सभा। इस सभा में आप सभी सुधी श्रोताओं का स्वागत अभिनंदन।

ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले कर रहे हैं।

होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क्स जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज और संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री

0: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रुपए प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका में श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। विचार मंथन गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के अनुसार चंद्रमा अपना प्रकाश संपूर्ण आकाश में फैलाता है, परंतु अपना कलंक अपने पास ही रखता है। प्रस्तुत है वंदना। देश की रक्षा करना, उसके प्रति फर्ज निभाना, अभिनंदन करना, देश को सर्वोपरि रखना और देश के विकास के लिए तन मन धन वारना हर एक नागरिक का कर्तव्य तो है ही, साथ ही दैवीय गुणों का प्रतीक भी। आइए देश की वंदना करें, गुणगान करें।

जिस मनुष्य के अंदर गुरु की कृपा हो जाती है उसे परमात्मा की ज्योति का प्रकाश मिल जाता है, उसके अंदर आत्मिक अडोलता का आनंद पैदा होता है, फिर वो किसी भी परिस्थिति में न डरता है न गिरता है, बस अपने खुदा की बंदगी में लीन रह आत्मसंतुष्टि को पाता है।

परमात्मा का नाम जप लेने से, उन्हें हृदय में बसाने से मन का अहंकार खत्म हो जाता है। विकारों से परे रहकर दैवीय गुणों के अथाह समंदर को पा जाता है और जीवन सार्थक कर लेता है।

0: श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हुए हैं। सुनिए आज का चिंतन। आलेख श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव का, वाचक हैं दिनेश नामदेव।
1: आपने एक पुरानी कहानी सुनी होगी जिसमें एक बुजुर्ग सास ने अपनी चार बहुओं को परिवार के विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारियां सौंपने के लिए एक प्रयोग किया। वे लंबे समय के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही थीं। जाने से पहले उन्होंने अपनी चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और उन्हें धान के एक एक कटोरे दाने दिए। उनके इस अप्रत्याशित व्यवहार से बहुओं को आश्चर्य होना स्वाभाविक ही था, पर सासू जी का आदेश मानकर सभी ने वे धान के दाने सहज ही स्वीकार कर लिए। जब सासू माँ तीर्थ यात्रा से वापस लौटी तो एक दिन फिर से उन्होंने बहुओं को बुलाया और उनसे अपनी दी हुई धान के दाने वापस मांगे। एक बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो उन दानों को मसलकर चावल निकालकर खा लिए थे। सास ने उस बहू को रसोई की जिम्मेदारी सौंप दी। दूसरी बहू ने सास को कटोरे में वे पूरे दाने लौटाते हुए कहा कि मैंने ये दाने संभाल कर अपने गहनों के डिब्बे में रख लिए थे। सासू माँ ने उस बहू को घर के रख रखाव की जिम्मेदारी दे दी। तीसरी बहू ने घर में रखे धान के बोरों में से एक कटोरे दाने निकालकर सास को लौटाए और बताया कि उसने सास के दिए हुए दानों को घर के धान के भंडार में मिला दिया था और अब वहीं से निकालकर एक कटोरे दाने वापस कर रही है। अनुभवी सास ने उस बहू को परिवार के बच्चों में एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी सौंप दी। और अंत में जब चौथी बहू से सास ने वे दाने वापस मांगे तो उसने नौकर को बुलाकर अपने कमरे से धान का बोरा उठवाया और सास को बताया कि उसने उनके द्वारा दिए हुए दाने खेत में डलवा दिए थे और उनसे जो फसल मिली यह बोरा भर धान उसी का परिणाम है। सास ने मुस्कुराते हुए उस बहू को तिजोरी की चाबियां सौंपते हुए कहा कि तुम्हारी सोच धन बढ़ाने की है, इसलिए तुम्हें तिजोरी संभालनी चाहिए। इस दृष्टांत से यह स्पष्ट है कि चारों बहुओं के पास समान संसाधन होते हुए भी उनकी सोच की विभिन्नता तथा अवसर को पहचानने की उनकी क्षमताओं के कारण ही परिणाम अलग अलग आए। जिस बहु ने धान के दाने फसल के रूप में बोने के लिए दिए थे, उसने सास के द्वारा दिए गए धान के दानों का महत्व समझा और उसका गूढ़ अर्थ भी समझने का प्रयास किया। उसकी तुलना में जिस बहु ने धान को मचलकर चावल खा लिए, उसने अवसर की गंभीरता की उपेक्षा की। संसाधनों की तुलना में सोच सदैव बड़ी होती है। हमारी सोच का अंतर ही हमें भीड़ से अलग और महत्वपूर्ण बनाता है, इसलिए बड़ी सोच अत्यंत आवश्यक है। उदार हृदय से विशाल सोच हमें महान बनाती है। नवाचारी सोच अन्वेषक तथा आविष्कारी होती है। प्रत्येक परिवर्तन की प्रवर्तक कोई मूलभूत सकारात्मक परिष्कृत सोच ही होती है। चिंतन से रचनात्मक सोच का प्रादुर्भाव होता है। यदि सोच सही हो तो संसाधन सहज ही जुटाए जा सकते हैं। एक अच्छी सोच लेकर आगे बढ़ते चलें तो कारवां स्वमेव बनता जाता है। सकारात्मक सोच को संसाधनों के अभाव में प्रस्फुटित होने में विलंब हो सकता है, पर उसे कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। किंतु यदि सोच ही गलत हो तो पर्याप्त संसाधन होते हुए भी उन्हें समाप्त होते देर नहीं लगती। किसी शायर ने कहा है, बरकत जो नहीं होती नीयत की खराबी है। अवसरों को पहचानना और उसके अनुरूप सोच से कार्य करना जरूरी है। एकाएक बड़ी सोच सप्रयास विकसित नहीं की जा सकती, इसके लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है। अपने परिवेश को अपना ही मानना और उसे सुविकसित करने की सोच बनाए रखने में स्वयं के साथ ही सबका हित भी जुड़ा होता है। और जब हम सबके हित के लिए कोई कार्य करते हैं तो हमें समाज के और सरकार के भी साधन सहज ही सुलभ हो जाएं तो किंचित आश्चर्य नहीं होना चाहिए। संसाधन तो सोच को मूर्त रूप देने का माध्यम मात्र होते हैं। संसाधन जुटाने के अनेक तरीके हो सकते हैं, पर सोच मौलिक ही होती है। इसलिए जीवन में सोच को सदैव संसाधनों से अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। नवाचारी, वृहद और मौलिक सोच के लिए चिंतन, मनन और अध्ययन को बौद्धिक व्यक्तित्व का हिस्सा बनाने के लिए हमें सदैव सक्रिय रहना चाहिए।
0: ये था आज का चिंतन। आलेख श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव का, वाचक स्वर दिनेश नामदेव का। ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। 6:35 हुए हैं। सुनिए श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक कलाकार हैं श्रीकांत पारगांवकर और सुरेश वाटकर।

हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई विभीषण हूं। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरी काया तामसी है। स्वभाव से ही मैं पापी हूं। कानों से आपका सुयश सुनकर आपकी शरण आया हूं। मेरी रक्षा कीजिए। विभीषण ये वचन कहकर श्रीराम के चरणों में दंडवत आ गिरे। हर्षित होकर श्रीराम उन्हें गले से लगा लेते हैं। कहते हैं, हे लंकेश, परिवार सहित अपना कुशल क्षेम सुनाइए। दिन रात दुष्टों के बीच आपका निवास है। आप अपना धर्म भला किस प्रकार निभाते हैं? मैं जानता हूं कि आप नीति कुशल हैं। अनीति से आपका कोई संबंध नहीं। विभीषण निवेदन करते हैं, हे प्रभु, नरक में रहना श्रेयस्कर है, किंतु विधाता किसी को दुष्टों की संगति न दे। लोभ, मोह, मद और अभिमान तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक श्री रघुनाथ का वहां निवास नहीं होता। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने उन चरणों में शरण प्राप्त कर ली जिनकी पूजा स्वयं ब्रह्मा तथा शिव करते हैं। श्रीराम ने विभीषण को अपनी भक्त वत्सलता से आश्वस्त कर दिया। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण का जीवन धन्य हो गया।

0: श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर और सुरेश वाडकर। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुनिए कृषि सामयिकी में किसानी की सलाह विषय पर जानकारी।
1: किसान बहनों भाइयों, आने वाले दिनों के दौरान मौसम थोड़ा सा सूखा रह सकता है और आसमान में आंशिक बादल छाए रहने की संभावनाएं बनी हुई हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर हरी सब्जियां जैसे कि अगेती, मूली, मेथी, पालक, साग के लिए सरसों और हरे पत्ते के लिए धनिया और शलजम के बुआई के लिए खेत की तैयारियां आरंभ कर दें। हमारे जिन किसान बहनों भाइयों ने टमाटर, बैगन, मिर्च, फूलगोभी और पत्ता गोभी की पौध तैयार की है वो इस सप्ताह रोपाई उथली मेड़ों पर क्यारियां बनाकर करें। और जहां तक फल बागों की बात है तो थालों की निराई गुड़ाई इसी समय पे करना होगी। साथ ही एक वर्षीय पौधों में 15 किलो और दो वर्षीय पौधों में 30 किलो, तीन वर्षीय पौधों में 45 किलो और चार वर्षीय पौधों में 60 किलो, पांच वर्षीय या उससे अधिक आयु वाले पौधों में 75 किलो गोबर की अच्छी पकी हुई खाद या कंपोस्ट या जैविक खाद अवश्य डालें। इसके अलावा एक वर्ष के लिए 250 ग्राम यूरिया, 250 ग्राम सुपरफॉस्फेट एक वर्षीय पौधे में, 500 ग्राम दो वर्षीय पौधे में, 750 ग्राम तीन वर्षीय पौधे में और 1 किलो यूरिया और 1 किलो सुपरफॉस्फेट और 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश चार वर्षीय पौधे में डालना होगा। ये जो उर्वरक हैं, इनको थाला बनाकर जो पौधे की छाया वाली परिधि होती है वहां मिलाना होगा गुड़ाई करके। नए लगाए गए पौधों में सिंचाई करना होगी। सिंचाई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि सिंचाई जल जो है वो तने में ना लगे, नहीं तो तना और पदगलन रोग की संभावनाएं बढ़ जाएगी। इसके लिए ये ध्यान रखें कि सिंचाई करने से पहले तने के चारों तरफ मिट्टी चढ़ा दें। आपने यदि भिंडी और पपीता लिया है तो ध्यान से निरीक्षण करें। इसमें यदि आपको सफेद मक्खी का प्रकोप दिख रहा है तो इसके नियंत्रण के लिए तुरंत उपाय करें और आधा मिलीलीटर इमिडाक्लोप्रिड दवा को प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर जब आसमान साफ रहे तब छिड़काव करें। इसी प्रकार जिन किसान बहनों भाइयों ने कद्दू वर्गीय सब्जियां ली होगी उसमें फल मक्खी का प्रकोप या लाल कीड़े का प्रकोप देखने मिल सकता है। यदि आपके खेत में या आपकी फसलों में ये दिखे तो इसके बचाव के लिए भी तुरंत प्रयास करें और आक्रमण अधिक होने पर एमामेक्टिन बेंजोइट 5% का प्रयोग करें। हम अपने किसान बहन भाइयों को दवा के छिड़काव के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि जब भी आप दवा का छिड़काव सब्जियों या फलों पर करें तो इसके 7 दिनों तक फल या सब्जी बिल्कुल भी तोड़े नहीं, क्योंकि इसके पहले इसके अंदर जहरीला प्रभाव सबको नुकसान कर सकता है। किसान बहनों भाइयों, तैयार फसलों की शीघ्र कटाई करें और कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थान पर रखें। धान की कटाई के पहले खेतों का पानी निकाल दें, उसके बाद ही धान की कटाई करें। सोयाबीन की कटाई में जब फलियां पीली पड़ने लगे दाना कड़ा होने के पहले ही सोयाबीन की कटाई करें ताकि रबी की फसलों के लिए आपको खेत की तैयारी का समय मिल सके। ऐसे खेत जो खरीफ में पड़ती पड़े हुए हैं उन्हें हल बखर चलाकर तैयार करें और पाटा लगाकर नमी को संरक्षित करें। आगामी रबी फसलें जैसे कि मटर, चना, अलसी, सरसों और मसूर, इनकी बुआई के लिए बीज और खाद की व्यवस्था करें और खेत की तैयारी पूरी करें। जहां धान की फसल अभी पकी नहीं है इसमें तना भेदक कीट देखा जा रहा है, इसलिए किसान बहन भाई फसल की निगरानी अच्छे से करें और यदि ये कीट पाया जाता है तो कारटेप हाइड्रोक्लोराइड 4% 15 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। अभी आप गेंदे के फूल की उन्नतशील प्रमाणित बीजों जैसे कि पूसा नारंगी, पूसा बसंती, इस तरह की प्रजातियों की नर्सरी तैयार करें और यदि आपने बकरी पालन किया है तो उनको बाहरी दवा से स्नान कराएं ताकि परजीवी का नियंत्रण हो सके। जैसा कि अभी मौसम है इसमें जो हमारे दुधारू पशु हैं गाय और भैंस, इनके आहार में संतुलित पशु आहार हरा चारा 15 से 20 किलो और भूसी या दाना 2 से 3 किलो प्रतिदिन के हिसाब से दें। अपने पशुओं के लिए आप चारे के रूप में बरसीम की बुआई भी अभी कर सकते हैं।
0: कृषि सामयिकी में अभी आप किसानी की सलाह विषय पर जानकारी ले रहे थे। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं और हम अब आपको बता दें आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सेवाकाल के 25 वर्ष का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से सुबह 9:10 पर, विश्व दर्पण सुबह 10:10 पर, क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रात 10:00, रात 8:00 जनसेवा से देश सेवा का प्रसारण। ये कार्यक्रम आकाशवाणी भोपाल से अनुप्रसारित किया जाएगा। साथ ही प्रायोजित कार्यक्रम किसानवाणी शाम 7:30 पर, प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग 8:30 पर। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में दिन के 1:00 महिला सभा में सुनिएगा श्री बीडी बजाज की कहानी सौगात। लोक संगीत दिन के 1:33 पर और सुगम संगीत 1:45 पर। शाम 5:02 पर युववाणी में सुनिए प्रेरक व्यक्तित्व क्रम में राय बहादुर डॉक्टर हीरालाल के व्यक्तित्व के बारे में। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होंगे और प्रसारित किए जाएंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।

स्थानीय कार्यक्रमों में एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग शाम 6 बजे, लोक संगीत में रुद्रदत्त दुबे के गाए लोकगीत सुनिएगा शाम 6:30 पर, 6:45 पर सुगम संगीत में सुनिएगा आलोक वर्मा की गाई चंद गजलें। सुबह 9 बजे लोक रसधार में संजीव सिन्हा के गाए बुंदेली लोकगीतों का आनंद लीजिएगा। हम आपको बता दें, श्री राजेंद्र कौल राय का लिखा धारावाहिक कलचुरियों के इतिहास गाथा सुनिएगा रात 9:30 पर। प्रस्तुति गर्जन सिंह वरकड़े की होगी। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:20 का समय होता है हमारे नियमित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर का। श्रोताओं, कार्यक्रमों के संबंध में ये थी जानकारी। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है, मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज़।

श्रोताओं, हम आपको बता दें हमारे कार्यक्रम आप न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी सुन सकते हैं। 6:55 होने को हैं, कुछ ही पलों बाद सुनिए समाचार संस्कृत में आकाशवाणी दिल्ली से।

0: आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां भारत मण्डपम् इत्यत्र संघलोक सेवायोगस्य शताब्दी समारोहे सहभागं करिष्यति। सः अस्मिन् अवसरे आयोजितं कार्यक्रममपि सम्बोधयिष्यति। अयं कार्यक्रमः विगतवर्षस्य अक्टूबर मासस्य प्रथमदिनाङ्कात् प्रारब्धानाम् आवर्षं यावत् प्रवर्तमानानां समारोहाणां समापनसूचकः भविष्यति। षड्विंशत्यधिकनवदशशततमे वर्षे संघलोकसेवायोगस्य स्थापनायाः शतवर्षपूर्त्यवसरे एतस्य समारोहस्य आयोजनं भवति। श्रीमोदी संघलोकसेवायोगस्य शताब्दी स्मारक नाणकम् अथ स्मारक प्रैष्य चटिकाञ्च प्रख्यापयिष्यति तथा 100 लैंडमार्क जजमेंट्स शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन्स इन इंडिया इति नामना एकस्य पुस्तकस्य विमोचनमपि करिष्यति। मंत्रिमंडलस्य आर्थिक कार्य समित्या ह्यः अग्रिम वित्तीय वर्षस्य रबी विपणन सत्रस्य सर्वेषां सूचितानां सस्यानां न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धयितुम् अनुमोदनं प्रदत्तम्। केन्द्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णवः नवदिल्ल्यां केन्द्रीय मंत्रिमंडलस्य उपवेशनानन्तरं वार्ताहरान् सम्बोधयन् उक्तवान् यत् कृषकेभ्यः तेषां कृष्युत्पादानां लाभकरं मूल्यं सुनिश्चेतुं निर्णयः अयम् गृहीतः।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: कुसुम सस्यस्य समर्थन मूल्ये सर्वाधिकं 75.6 रूप्यकाणां, सर्षपस्य 13.4, चणकस्य 83, गोधूमस्य च 25 रूप्यकाणां प्रति क्विंटल मितं परिवर्धनं विहितम्। एतदतिरिच्य मंत्रिमंडलेन हरितोर्जा वीथि इत्यस्य तृतीय चरणं अथ ऐतिहासिकी पीएम धारा योजना च समनुमोदिता, येन राज्येषु केन्द्रशासित प्रदेशेषु च 35% गीगावाट परिमितस्य नवीकरणीयोर्जा उत्पादनस्य सुगम संचारणं भविष्यति। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य तटीय कर्णाटक, केरलम, माहे, आंतरिक कर्णाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल चेत्येषु प्रदेशेषु विद्युत गर्जनेन सह प्रबल वृष्टिः पूर्वानुमानिता। ऋतु विभागेन अद्य नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा प्रदेशेष्वपि समानैव ऋतु परिस्थितयः प्रवर्तिष्यन्ते इति संभावना अभिव्यक्ता। विभागेन उक्तं यत् रायलसीमा, आंतरिक कर्णाटक, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय प्रदेशेषु अपि विद्युत गर्जनेन सह विद्युत्पातस्य च संभावना अस्ति। जापान देशे प्रवर्तमानासु एशिया क्रीडासु भारताय ह्यः अद्यावधि सर्वाधिकः सफल दिवसः अभवत्। भारतेन 4 सुवर्ण पदकानि प्राप्तानि। अनेन भारतस्य पदक संख्या आहत्य 6 अभवत्, यस्मिन् 10 सुवर्ण पदकानि, 21 रजत पदकानि तथा 39 कांस्य पदकानि च सम्मिलितानि सन्ति। महिलानां हॉकी क्रीडायां भारतं ह्यः दक्षिण कोरिया दलं 2-0 इत्यंकहि पराजित्य निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। तत्रैव स्क्वॉश क्रीडायां भारतस्य पुरुष दलं महिला दलं च उपांत्य चक्रे प्रविष्टे, येन भारताय 2 अन्ये पदके सुनिश्चिते। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां ह्यः रात्रौ गुवाहाटी नगरस्य बरसापारा क्रीडांगणे आयोजितायाः त्रिस्पर्धायाः एकदिवसीय अन्ताराष्ट्रिय श्रृंखलायाः द्वितीयायां स्पर्धायां भारतेन वेस्ट इंडीज दलं 8 पराजितम्। इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को भी संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
3: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने इसे मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उसकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
1: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
2: श्री वैष्णव ने बताया कि मसूर के लिए एमएसपी में 390 रुपए प्रति क्विंटल, जौ के लिए 136 रुपए प्रति क्विंटल, चने के लिए 83 रुपए प्रति क्विंटल और गेहूं में 25 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल हैं। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 13 करोड़ से अधिक लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिला है, जिन पर 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यय हुआ है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रुपए से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बोर्ड ने वन जोन वन ऑपरेटर योजना के तहत 10 साल के लिए करीब 17,969 करोड़ रुपए की सीवर रखरखाव योजना को मंजूरी दी। हर जोन में एक ऑपरेटर सीवर की देखरेख और सफाई करेगा। लोगों की शिकायतों का भी समाधान किया जाएगा। सीवर की जांच और सफाई के लिए मशीनों और रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। सीवर की निगरानी ऑनलाइन भी की जाएगी। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में मदद की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इसराइल कार्ज ने इस घटना को एक गंभीर घटना और संदिग्ध आतंकवादी हमला बताया। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटका, केरलम, माहे कर्नाटक के अंदरूनी क्षेत्रों और पुदुचेरी में तेज बारिश के साथ आंधी तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वीसी प्रमोद। Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of the Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. He will also address the gathering on the occasion. A report.
3: The program will mark the culmination of year-long celebrations that commenced on 1st October last year, commemorating 100 years since the establishment of the Union Public Service Commission in 1926. On the occasion, Prime Minister Narendra Modi will release a UPSC centenary commemorative coin, a commemorative stamp, and a book titled 100 Landmark Judgments Shaping the Policies of UPSC and Public Service Commissions in India. The program will witness participation of stakeholders from across the country, including chairmen and members of state public service commissions, senior officers of Government of India, academicians, UPSC officials and others. This event is part of the two-day program being held by UPSC. Yesterday, on the first day, Shatabdi Samaroh Manthan was held at Bharat Mandapam. Eminent speakers addressed the event and it was followed by panel discussions on various themes. Anupam Mishra, Akashvani News, Delhi.
4: The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, yesterday approved an increase in the minimum support price, MSPs, for all mandated Rabi crops for the marketing season 2027-28. Briefing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav said the decision has been taken to ensure remunerative prices for farmers for their produce. He said the highest absolute increase in MSP has been announced for sunflower at 675 rupees per quintal, followed by rapeseed and mustard at 413 rupees per quintal. The minister said the MSP for lentil or masoor has been increased by 390 rupees per quintal, barley by 136 rupees per quintal, gram by 83 rupees per quintal and wheat by 25 rupees per quintal. The minister said the CCEA has also approved the implementation of the Intelligent Traffic Management System, ITMS, project by the Delhi Police at an estimated cost of over 1,789 crore rupees inclusive of taxes. Mr. Vaishnav said the Union Cabinet also approved the Green Energy Corridor, GEC, Phase 3 scheme. Defence Minister Rajnath Singh will attend the 279th Annual Day of the Defence Accounts Department, DAD, in New Delhi today. On the occasion, the Defence Minister is scheduled to launch various IT initiatives of DAD. These include the integration of the Indian Army Financial Information System and Department's Saksham platform, the revamped National Compilation System for the Ministry of Defence, and the Payment Routing and Integrated System Management platform for introducing Treasury single account payments in the Ministry of Defence. New Delhi will host a textile conclave today to discuss emerging technologies in the textile sector. Addressing a press conference in New Delhi, National General Secretary of Laghu Udyog Bharati, Om Prakash Gupta, informed the conclave will bring together 400 micro and small industries associated with the textile sector from across the country. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal had a meeting with Poland's Finance and Economy Minister Andrzej Zomanski on the sidelines of the G20 Trade Ministers meeting. In a social media post, Mr. Goyal said that they discussed new avenues to further strengthen trade and investment ties. Both the ministers also discussed that how the India-EU FTA can create new opportunities for businesses and deepen economic cooperation between India and Poland. India Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall along with thunderstorms and lightning over coastal Karnataka, Kerala, Mahi, interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today. The IMD predicted similar conditions in Nagaland, Manipur, Mizoram and Tripura today. In men's cricket, India crushed the West Indies by 8 wickets in the second ODI of the 3-match series at Barsapada Cricket Stadium in Guwahati last night, taking an unassailable 2-0 lead. Put into bat, West Indies posted their high

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए हॉटस्पॉट पर निगरानी के निर्देश दिए और प्रदेश में हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर 8 अक्टूबर तक जन जागरूकता अभियान जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे वहां पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कल केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 3 योजना को मंजूरी दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये निर्णय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना के तहत 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण और पावर इवैक्यूएशन के लिए इंट्रास्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल वर्ष 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा के हर संभव प्रयास कर रही है। रबी फसलों के MSP में वृद्धि के फैसले पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि किसान हितैषी नीति के तहत किसानों को ठीक दाम दिलाने के लिए रबी की फसलों की कीमतें बढ़ाई गई हैं।
1: हमारी किसान हितैषी नीति को ध्यान में रखते हुए किसानों को ठीक दाम दिलाने के लिए अब हमने इस वर्ष की MSP भी घोषित की है। गेहूं पहले जब 13-14 में था 1400 रुपया क्विंटल, अब ये बढ़ के हो गया 2610 रुपया क्विंटल। जो 1100 रुपया क्विंटल था अब 2286 रुपया क्विंटल, दुगने से ज्यादा की वृद्धि हुई है दामों। चना 3100 रुपया क्विंटल बिकता था, अब ये 5958 रुपया क्विंटल, लगभग दुगनी। तो इस साल ये MSP A2+FL पर 106% मार्जिन देके घोषित की गई है।
0: वहीं मंत्रिमंडल ने इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS परियोजना को भी मंजूरी दी है, जिसके तहत दिल्ली के चिन्हित यातायात गलियारों और सिग्नलों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी मंजूरी दी गई। करीब 186,000 करोड़ रुपये के इस कार्यक्रम के तहत 135 गीगावाट तक नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ट्रांसमिशन व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा की मौजूदगी में यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे RCVP नरोना प्रशासन अकादमी के स्वर्ण जयंती सभागार में आयोजित किया जाएगा। इसमें 500 से अधिक वरिष्ठ जन और गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। इसके साथ ही आगरमालवा, नर्मदापुरम और इंदौर समेत प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और प्रत्येक जिले में 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को शतायु सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार द्वारा 2 से 10 अक्टूबर तक प्रदेश भर में सेवा सेतु अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत प्रशासनिक दल ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। जी हाँ, सेवा सेतु अभियान के माध्यम से अब सरकार पहुंचेगी सीधे आपके द्वार। 2 से 10 अक्टूबर 2026 तक प्रदेश भर में आयोजित होंगे मेगा शिविर। आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास खंड स्तर पर और नगरीय निकायों में जोनवार आयोजित इन शिविरों में केंद्र और राज्य

0: सरकार की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही प्रदान किया जाएगा। एक ही स्थान पर पंजीयन से लेकर आवेदन के निराकरण तक और साथ ही हितलाभ वितरण पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। जनता तक पहुंचेगी सरकार, मौके पर ही मिलेगा समाधान, सभी हितग्राहियों तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे सेवा संकल्प अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न सेवा और जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। कटनी के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धूरी में कल सेवा मेरा योगदान पहल के तहत विद्यार्थियों के लिए पोषण एवं एनीमिया जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। वहीं झाबुआ के झकनावदा में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। धार के आंगनवाड़ी केंद्र में आंगन मिलन कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने बच्चों से संवाद किया। वहीं जबलपुर में सेवा संकल्प यात्रा के तहत बाइक रैली निकाली गई। वहीं वड़नगर से बनारस की ओर प्रस्थान करने वाली सेवा संकल्प यात्रा का डिंडौरी पहुंचने पर कल स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए शहरों के हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी रखने और जिला स्तर पर प्रत्येक माह बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय में कल कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और आबकारी विभाग जरूरत के अनुसार संयुक्त कार्रवाई करें और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026 में प्रदेश में एडीपीएस एक्ट के तहत 2706 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और अगस्त तक 3690 आरोपियों से 46,313 किलोग्राम मादक पदार्थों को जब्त किया गया है। प्रदेश में नशा मुक्त हेल्पलाइन 14446 भी संचालित की जा रही है। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कहा है कि कृषि और किसानों की समृद्धि के लिए गौपालन तथा जैविक खेती को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गोबर प्राकृतिक खाद के रूप में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और खेती को टिकाऊ बनाने में सहायक है। मंत्री श्री कुशवाहा कल भोपाल में आयोजित फार्म फूड कृषि सम्मान अवार्ड 2026 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले किसानों को भी सम्मानित किया गया। मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग को लेकर प्रदेश भर में 10 दिवसीय विशेष प्रवर्तन एवं जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। 8 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना और नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। अभियान के दौरान प्रमुख चौराहों, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों तथा ब्लैक स्पॉट पर विशेष चेकिंग की जाएगी। हेलमेट और सीट बेल्ट का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। पर्यावरण और जीवन शैली विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन आज भोपाल के विज्ञान भवन में किया जाएगा। संगोष्ठी में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए समन्वित प्रयासों तथा राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में राज्यों की भूमिका पर विचार विमर्श होगा। मंदसौर के शॉटगन खिलाड़ी कैनेथ ग्रिंडी का चयन मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित एमपी स्टेट शूटिंग अकादमी भोपाल के लिए किया गया है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित टैलेंट सर्च में अपने प्रदर्शन के आधार पर कैनेथ ने यह उपलब्धि हासिल की। अब क्रिकेट की खबर में, भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने जॉन कैंपबेल, शाई होप और आमिर जंगू के शतकों की बदौलत 7 विकेट पर 405 रन बनाए। एक दिवसीय क्रिकेट में यह वेस्टइंडीज का सर्वाधिक स्कोर था। वहीं भारत ने कप्तान शुभमन गिल के नाबाद 233 रन और रोहित शर्मा की शतकीय पारी की बदौलत 44वें ओवर में ही ये लक्ष्य हासिल कर लिया। शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई अगले 2 से 3 दिनों में हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक नमी के प्रभाव से कुछ इलाकों में बूंदाबांदी और गरज चमक की स्थिति बन सकती है, लेकिन प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। प्रदेश में इस मानसून सीजन में अब तक 35.8 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य 37.3 इंच की तुलना में करीब 4% कम है। मौसम विभाग ने आज मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में बूंदाबांदी और गरज चमक की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी के उत्कर्ष विद्यालय माधवनगर में पुलिस एवं शिक्षा विभाग के तत्वावधान में सृजन कार्यक्रम के तहत कक्षा 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यशाला आयोजित की जा रही है। जबलपुर में स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा एक दिन एक घंटा एक साथ वृहद श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर में आयोजित स्वच्छता गौरव सम्मान समारोह के दौरान नगर निगम ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 22 सफाई मित्रों और 22 ड्रेनेज कर्मचारियों को सम्मानित किया। खंडवा के नया हरसूद स्थित सती माता मोहल्ला में गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर का आयोजन किया जाएगा। डिंडौरी के नेचर कोटियार्स रिसॉर्ट में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम एवं लघु उद्योग भारती के तत्वावधान में 2 दिवसीय एमएसएमई कंपोजिट कार्यशाला

का कल समापन हुआ और मंडला में प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल ने जरूरतमंद परिवारों की सहायता और सामाजिक सरोकार को बढ़ावा देने के लिए आनंदम विभाग को वस्त्र भेंट किए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 7:21 हुए हैं। समय है हमारे नियमित कार्यक्रम गुड मॉर्निंग जबलपुर का।

कौन कहता है कि खुदा नज़र नहीं आता, एक वो ही तो नज़र आता है जब कुछ नज़र नहीं आता। वाकई दोस्तों, कभी ज़माने के दिए ज़ख्मों को बंदा सह नहीं पाता, ज़िंदगी बदहाल सी लगने लगती है, अंधेरा छाया रहता है जीवन में, और तब परमात्मा का एक नाम का आसरा इन सभी परिस्थितियों से निकाल हमें सुनहरे जीवन की आस देता है, विश्वास देता है, और फिर जिंदगी सभी परेशानियों से दूर अपने आप में ही चमकने लगती है, दमकने लगती है। सुबह का ये समय जब हम नित प्रतिदिन के कार्य के बाद पाठ पूजा से अपने मन को शांति देते हैं, तत्परता देते हैं, तब जिंदगी की हर एक सुबह नव कोमल सी नवजीवन देती प्रतीत होती है और हम चल पड़ते हैं अपने कार्यों की ओर, उन्हें सफल बनाने की राह पर। और तभी रेडियो पे बजता कोई गीत जीवन में एक छोटी सी प्यारी सी मुस्कुराहट को उड़ेलता सा प्रतीत होता है और हम उसे सुनते हंसते चल पड़ते हैं सुनहरे रास्तों की ओर।

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहे।
3: दोस्तों, खेल खेल में बच्चा बहुत कुछ सीखता है, अनुशासन, जीत, दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूती और विश्वास, साथ ही सहृदयता भी। कई सोसाइटी, कई लोग, पेरेंट्स और इन सब से मिली सरकार, उसकी भी सोच यही रहती है कि जिस बच्चे में जिस भी खेल के प्रति रुचि हो उसे और बढ़ावा दे और जीत की लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो भी चीज़ें मुहैया करवानी पड़े उसे करवाई जाए, ताकि वो आगे चलकर खेल संसार की बड़ी हस्ती बने, देश का नाम ऊंचा करे। भारत सरकार का एक राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम है खेलो इंडिया, जिसे 2017 में शुरू किया गया ताकि देश में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने और जमीनी स्तर पर खेल प्रतिभाओं को तराशा जाए, प्रतिभाओं को पहचाना जाए और उन्हें वित्तीय सहायता देना इनका मुख्य उद्देश्य है, ताकि कई सितारे जो हैं खेल के उसमें क्षेत्र में वो हमारे देश के फलक पर चमके और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम हो, जिससे हमारे देश का नाम हो, विकास हो और वो चलता रहे हर एक फलक पर सफलता की ओर।

दोस्तों, कल ही मैंने एक हमारे भाई साहब हैं, उन्हें देखा। वो जा रहे थे आयकर सुधार के लिए। कई गलतियां हो जाती हैं या कहीं आयकर जो हमें मिलता है किसी भी क्षेत्र का या विभाग का, वो कहीं उसमें गलती हो जाती है, कहीं बढ़ के आता है। तो उनके सुधार के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए या कैसे कहाँ जाना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, आयकर सुधार मुख्य रूप से दो संदर्भों में देखा जाता है। पहला, आपके द्वारा दाखिल किए गए आयकर रिटर्न में किसी गलती को ठीक करना, और दूसरा, देश की कर प्रणाली में सरकार द्वारा किए गए बड़े बदलाव को देखना। यानी भारत में आयकर प्रणाली में पारदर्शिता, सरलता और करदाताओं को राहत देने के लिए आयकर अधिनियम 2025 में नवीनतम नियमों के तहत महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। वो सुधार क्या-क्या किए गए हैं, उनसे हमें क्या लाभ मिल सकता है, कैसे हम उस ओर जा सकते हैं, जागरूक रह सकते हैं, जिसका लाभ हम निश्चित तौर पर ले सकते हैं, इन सब बातों को समझना हमारे लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ बातों के तहत अगर हम आपसे पूछें कि क्या आपको पता है कि भारत में पुराने श्रम कानूनों को बदलकर चार नए लेबर कोड लागू कर दिए गए हैं, जो कर्मचारियों के वेतन, सुरक्षा और अधिकारों को सरल बनाते हैं। और ये नए श्रम कानून वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता है। श्रोताओं, कोई भी कानून बनाने का उद्देश्य तो यही होता है ना कि लाभ मिले सभी को बराबर, और दायरा सभी का हो, किसी को भी कोई हानि ना हो, और सभी को समानता मिले, उचित लाभ मिले। किसी भी उम्र में आपको इस कानून का लाभ मिले, चाहे आप वृद्ध हो, बालावस्था हो, या फिर अपनी जवान जिंदगी की राहों में चल रहे हों, कोई भी उम्र हो, हम कहीं भी ठगे ना जाएं, हमारा कहीं भी शोषण ना करें, हमें इन कानूनों के बारे में निश्चित तौर पर जानकारी होनी ज़रूरी है। और श्रोताओं, कोई भी कानून हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी सरकार द्वारा किए गए प्रयास हो, या हम समाज में रहते हैं, कई बातों का जानना हमें हमेशा ज़रूरी रहता है, क्योंकि हमें इसी समाज में रहना है, और समाज में सभी के साथ, सभी के साथ चलना होता है, और हमें कहीं कोई हानि ना हो, हमसे कोई ठगी ना कर पाए, हमें कोई धोखा ना दे पाए, इसीलिए जागरूक रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो ज़िंदगी है, चलती रहेगी, और इसी का नाम ज़िंदगी क्यों कहते हैं कि रुकना तो कहीं है ही नहीं ना, बस चलते जाना है, चलते जाना है सफल राहों की ओर।

श्रोताओं, गीता का ज्ञान है, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। सार ये है कि कर्म बहुत ही दृढ़ होता है। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा तो बुरे का बुरा। किसी के साथ अच्छा कर लेने मात्र से हमें जो प्रसन्नता मिलती है या दिल हमारा खुशनुमा हो चहकने लगता है, वही बुरा कर्म आज नहीं तो कल काला एक काल बनकर जब पीछे पड़ जाता है तब हमें समझ में आता है। और ये बात बिल्कुल सत्य है। संबंधों में मधुरता और अपनापन बनाए रखने के लिए भी कितने ही जतन करने पड़ते हैं, और सही भी है, ये संबंध हमारे जीवन में कई सद्गुणों का प्रवेश कर हमें सुखी बनाते हैं। वहीं हम जब किसी के साथ भी गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा दिल कचोटता सा रहता है। कहते हैं ना कि स्वभाव वो खुशबू है जिससे रिश्ते महकते हैं, सम्मान वो दान है जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं, कर्म वो इबादत है जिससे भाग्य बदलते हैं। तो आज है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस। बुजुर्गों के सम्मान में और देखरेख के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और खैर, जागरूकता इस दिवस की, एक दिवस की कोई मोहताज नहीं होती। जागरूक तो हमेशा हमें हर हालत में रहना होता है, और ये हमारे लिए अच्छा भी है। बस जो बात हम कहना चाहते हैं कि हृदय को साफ रख कर जीवन जीने में हमें जीवन के जो सभी सुख फिर मिलते हैं ना, वो फिर किसी भी चीज़ से नहीं मिलते। बस अच्छा अच्छा करते जाइए, किसी के साथ भी बुरा करने की सोचिए भी नहीं, तो जीवन अपने आप में सफल हो जाता है और हमें वो संतोष, वो आत्मसम्मान, वो संतुष्टि मिलती है जिससे हम और कहीं अन्यत्र नहीं पा सकते। केवल अच्छे कर्मों की ही दरकार तो है इस जीवन में।

दोस्तों, हर जगह इत्र नहीं महका करते। कभी कभी शख्सियत भी खुशबू दे जाती है। वाकई बनो तो ऐसा बनो कि शारीरिक तौर से जाने के बाद भी हमारी मौजूदगी सदियों तक रहे सम्मान के साथ। फिर वो शख्सियत ऐसी बने कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वैसी रहे, दुनिया याद रखे। हमारे कर्म वाकई हमें खुशबू जैसी हर सू महका देते हैं। जच्छे कर्मों के बलबूते हम स्वाभिमान की पराकाष्ठा को प्राप्त करते हैं, साथ ही सार्थक जीवन जीने की इस कला के द्वारा कई जिंदगियों में भी रंग भर देते हैं। जिंदगी दी है परमात्मा ने, तो क्यों ना और भी कई जिंदगियां संवारे हम। कोशिश का छोटा सा दिया जला, रोशनी फैलाए हम और अपने जन्म को सार्थक करें हम।

सही बात है, तूफानों से लड़कर ही साहिल तक पहुंचा जा सकता है। तो बस अच्छे कर्म करते चलिए, किसी का साथ निभाते चलिए, अच्छा करते जाइए, अच्छा ही मिलेगा। अब आज गुड मॉर्निंग जबलपुर का ये अंक यहीं तक। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी का जबलपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने को है। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे समाचार प्रभात आकाशवाणी दिल्ली से। हम अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जया भारती।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया, संतुलित दृष्टिकोण का समर्थन किया। सऊदी अधिकारियों ने भारतीय पायलट स्मित मच्छार पर चाकू से हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान को सच्चा नायक बताया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, यूपीएससी के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी।
1: यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोहों का समापन होगा जो पिछले साल 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष और सदस्य, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद, संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारी और देश भर के अन्य हितधारकों की भागीदारी देखने को मिलेगी। यह कार्यक्रम संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जा रहे 2 दिवसीय कार्यक्रम का हिस्सा है। कल पहले दिन भारत मंडपम में शताब्दी समारोह मंथन आयोजित किया गया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कहा कि यह निर्णय किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।
2: सबसे पहला फैसला लिया गया रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी तय करना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही एमएसपी में 50% प्रॉफिट देना वो तय किया था, उस फैसले को इसमें लागू किया गया है। वीट, बार्ली, ग्राम, लेंटिल्स, रेपसीड, मसूर, मस्टर्ड और सेफ्लावर, इन सब के लिए जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उससे कम से कम 50% ज्यादा रखी गई है एमएसपी।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के तीसरे चरण को भी स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक पहल से भारत की अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली मजबूत होगी, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 135 गीगावाट तक नवीनीकरणीय विद्युत ऊर्जा का पारेषण संभव हो सकेगा।
2: 135 गीगावाट को रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, स्टेट की जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज है उनको अपग्रेड करना और नई ग्रीन फील्ड लाइन्स को बनाकर इसको और एग्जिस्टिंग लाइन्स को अपग्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। श्री सिंह रक्षा व्यय 2026 पर व्यापक सांख्यिकी पुस्तिका, विभाग की आंतरिक हिंदी पत्रिका और वर्ष 2025-26 के लिए बाजार की रिपोर्ट सहित कई प्रकाशनों का विमोचन भी करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंटरोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभों का उल्लेख किया।
3: आयुष्मान भारत पीएम जय,
4: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी सरकार द्वारा वित्त पोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। इस योजना से अब तक 60 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं और इसका लक्ष्य 70 करोड़ लोगों को इस योजना से जोड़ना है, जो देश की कुल जनसंख्या का लगभग 40% है।
0: खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि ये भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं, जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, एक्सपर्ट @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने दीपावली से पहले पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और इसके लिए कोई संतुलित उपाय अपनाने का सुझाव दिया है। जस्टिस MM सुंदरेश और PB बराली की खंडपीठ ने संकेत दिया कि वे दीपावली के दौरान कुछ खास तरह के पटाखे जलाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए समय सीमा तय की जाएगी। न्यायालय ने कहा कि पटाखों पर पूरी तरह रोक लगाने से लोगों की भावनाएं आहत हो सकती है, जबकि दिन भर पटाखे जलाने की अनुमति देने से पर्यावरण और बुजुर्ग तथा बीमार लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तथा उत्तरी भारत के अन्य राज्यों में वायु प्रदूषण के दौरान पटाखों पर पाबंदी से जुड़े एक लंबित मामले की सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने ये बात कही। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: हमले के कारण 2 मिनट से भी कम समय में विमान लगभग 17,400 फीट नीचे गिर गया। हालांकि कर्मचारियों सहित यात्रियों और चालक दल के सदस्यों ने कॉकपिट में प्रवेश किया, हमलावर को काबू में किया और विमान को स्थिर करने में सहायता की। इसके बाद फ्लाइट को डायवर्ट किया गया और उत्तर पश्चिमी सऊदी अरब के तबुक क्षेत्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन स्मिथ के स्वास्थ्य पर कड़ी नजर रख रहे हैं। वर्तमान में स्मिथ तबुक के एक अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी से सैकड़ों लोगों की जान बची और एक बड़ी त्रासदी टली। प्रधानमंत्री ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दूरदर्शिता से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सेवा संकल्प अभियान की इस विशेष श्रृंखला में आज हम एक ऐसे उदाहरण की बात कर रहे हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की आधुनिक बुनियादी ढांचे और मजबूत जुड़ाव की परिकल्पना जम्मू कश्मीर में बने ऐतिहासिक चिनाब और अंजी खड्ड रेलवे पुलों के माध्यम से साकार होती दिखाई दे रही है।
6: उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, ये रेल लाइन प्रोजेक्ट ये सिर्फ नाम नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। हमारा अंजी ब्रिज भी इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना है। ये प्रोजेक्ट पूरा करना मुश्किल था, चुनौतीपूर्ण था, लेकिन हमारी सरकार ने चुनौती को

0: न केवल जम्मू कश्मीर का शेष भारत से रेल संपर्क जुड़ा बल्कि माल ढुलाई और पर्यटन में भी काफी बढ़ोतरी हुई। इन पुलों की वजह से कश्मीर के कृषि बागवानी और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर के बाजारों तक तेजी से पहुंचाना आसान हो गया। कुलगाम के एक सेब उत्पादक तजमुल अहमद का मानना है कि रेल संपर्क जुड़ने से जम्मू कश्मीर के फल उत्पादकों के लिए अपनी उपज को देश भर में पहुंचाना बहुत आसान हो गया।
1: जब से रेल कनेक्ट हो गई है तो तब से हमारी जो मेवा सनत है इसमें काफी सुधार आया है, क्योंकि हम एक तो अपना मेवा मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों में ले जाने के लिए इस रेल सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, दूसरा ये कि किराया भी बहुत कम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि रेलवे कनेक्टिविटी जो है ये हमारे इस मेवा सेक्टर के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत इख्तियार कर चुकी है।
0: जानकारों का कहना है कि ये पुल न सिर्फ इंजीनियरिंग की शानदार मिसाल और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है बल्कि जम्मू कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के साथ और भी मजबूती से जोड़ने की अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
2: भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। जापान एशियाई खेलों में आज सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना पाकिस्तान से होगा। वहीं महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटका के तटवर्ती और भीतरी इलाकों, केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी आज तेज बारिश की संभावना है। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है। इसके साथ ही वर्षा भी हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
2: अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
4: धन्यवाद जया। दीपावली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के बयान को आज सभी अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी है। सुप्रीम कोर्ट का देश भर में पटाखों पर रोक से इनकार, कहा 24 घंटे भी आतिशबाजी नहीं, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। लोकसत्ता ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, भावनाओं, स्वास्थ्य और पर्यावरण में संतुलन जरूरी, पटाखों पर पूर्ण रोक नहीं, दिवाली से पहले तय होंगे नियम। दुबई से इसराइल जा रही फ्लाइट को हाईजैक कर क्रैश कराने की कोशिश की खबर भी आज की अखबारों की सुर्खियां हैं। दैनिक जागरण लिखता है, विमान हाईजैक कर इसराइल में क्रैश कराने को मंसूबा, भारतीय पायलट ने साहस दिखाकर बचाए 172 जाने। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, इसराइल जा रही फ्लाइट की सऊदी में इमरजेंसी लैंडिंग, भारतीय पायलट ने 9/11 जैसे आतंकी हमला रोका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फोन पर बातचीत को लेकर की खबर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। प्रधानमंत्री मोदी व अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने चर्चा की, दोनों करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमत, जनसत्ता की सुर्खी है।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2027-28 विपणन सत्र के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की। भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने के लिए सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। दीपावली से पहले सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार किया। और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे वनडे क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am VC Pramod, the headlines. Prime Minister Narendra Modi to participate in centenary celebrations of UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Cabinet hikes minimum support prices for Rabi crops for 2027-28 marketing season. Government to launch auction of offshore mineral blocks today to unlock India's offshore mineral potential. Supreme Court rules out total ban on firecrackers ahead of Diwali. Favors balanced approach. Saudi authorities are

0: स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग।
1: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 16 सितंबर। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से निखिल उइके और रामनगर बैतूल से गगन कुमार। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।

0: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
1: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
0: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
1: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
0: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

इतिहास के सबसे उजले प्रसंग प्रतिरोध की आग से लिखे गए हैं, जहां किसी हृदय से उपजे साहस ने सदियों से बंद दरवाजों की सांकलें खोल दी। बात 19वीं सदी के भारत की है, जहां स्त्री के लिए समाज ने उम्र से पहले रिश्ते तय कर दिए थे, सपनों से पहले सीमाएं खींच दी थीं और उसकी आवाज जैसे हाशिए पर रख दी गई थी। ऐसे दुरूह समय में एक स्त्री आगे बढ़ी और पूरे साहस के साथ अपने हिस्से का आसमान मांगा। उनका नाम था डॉक्टर रुखमाबाई राउत। उन्होंने रूढ़िवादी सामाजिक मान्यताओं, औपनिवेशिक न्याय व्यवस्था और महिलाओं के लिए संकीर्ण विचारधारा को एक साथ चुनौती दी। वो भारत की प्रैक्टिस करने वाली शुरुआती महिला डॉक्टरों में से एक थीं तथा दूरदर्शी नारीवादी चिंतक थीं। यही कारण है कि उनके संघर्ष ने 19वीं सदी के अंत तक आते आते पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। रुखमाबाई का जन्म 22 नवंबर सन 1864 को बॉम्बे के एक सुतार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जनार्दन पांडुरंग था तथा उनकी माताजी का नाम जयंती बाई था। जब रुखमाबाई मात्र 2.5 साल की थीं, तभी उनके पिता का असमय निधन हो गया। लेकिन उनकी माताजी ने उस दौर की सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ते हुए सन 1870 में डॉक्टर सखाराम अर्जुन से पुनर्विवाह किया। डॉक्टर सखाराम अर्जुन बॉम्बे के जाने माने वनस्पति शास्त्री, प्रसिद्ध चिकित्सक और सामाजिक सुधार आंदोलनों के सक्रिय कार्यकर्ता थे। वो प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे तथा महिला शिक्षा और उनकी स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। ऐसे प्रगतिशील पारिवारिक वातावरण में रुखमाबाई की परवरिश हुई, जिसका बहुत गहरा प्रभाव उन पर पड़ा। वो नई और क्रांतिकारी सोच के साथ बड़ी होने लगीं। घर पर ही उनकी पढ़ाई की व्यवस्था की गई। मराठी और अंग्रेजी भाषा में वो पारंगत हुईं। इसके साथ ही उन्हें गणित तथा अन्य बुनियादी विषयों का ज्ञान भी दिया गया। उनके घर पर नियमित रूप से विद्वानों, कानूनविदों और समाज सुधारकों का आना जाना बना रहता था, जिसके कारण उनके भीतर बहुत कम उम्र में ही तर्कसंगत सोच और स्वतंत्र चेतना का विकास हुआ।

जब रुखमाबाई मात्र 11 वर्ष की थीं, तभी उनका विवाह 19 वर्षीय दादाजी भीकाजी से कर दिया गया और तय हुआ कि उनके पति रुखमाबाई के घर पर ही रहकर अपनी शिक्षा पूरी करेंगे ताकि वो आगे चलकर आत्मनिर्भर बन सकें। लेकिन उनके पति गलत संगत में पड़ गए तथा अकर्मण्य जीवन बिताने लगे। जब रुखमाबाई वयस्क हुई तो इन्हीं कारणों से उन्होंने पति के साथ रहने से इनकार कर दिया। ऐसे समय में उनके पति दादाजी भीकाजी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया तथा रुखमाबाई के खिलाफ दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना का मुकदमा दायर किया। ये मुकदमा तत्कालीन न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। न्यायाधीश रॉबर्ट हिलपिन्ही ने 1885 में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए रुखमाबाई के पक्ष में फैसला सुनाया, क्योंकि उनका विवाह अबोध बचपन में उनकी सहमति के बिना हुआ था। इसके बाद फिर अपील हुई और अपीलीय अदालत ने जज पिन्ही के निर्णय को अस्वीकार कर मामला पुनः विचार के लिए भेजा। मुकदमे के पुनर्परीक्षण में सन 1800

काजी में जस्टिस फरान ने उनके पति के पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन रुकमाबाई ने पूरे साहस के साथ स्पष्ट किया कि वो पति के साथ रहने की बजाय जेल जाना स्वीकार करेंगी। और अंततः सन 1888 में अदालत के बाहर 2000 रुपए के वित्तीय समझौते के बाद उनके पति ने अपना दावा छोड़ा और रुकमाबाई को स्वतंत्र जीवन जीने का मार्ग मिला। इस मुकदमे के दौरान ही सन 1885-86 में रुकमाबाई ने एक प्रमुख समाचार पत्र में अ हिंदू लेडी के छद्म नाम से पत्रों की एक प्रसिद्ध श्रृंखला प्रकाशित की। इन पत्रों ने तत्कालीन भारतीय समाज के बौद्धिक जगत को अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि समाज में लड़कियों को केवल 8 या 9 साल की उम्र में विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है। उन्हें अपनी इच्छा या शिक्षा को आगे बढ़ाने की स्वतंत्रता नहीं होती। पुरुषों को बहुविवाह की छूट है, जबकि महिलाओं पर कठोर पाबंदियां हैं और विधवा स्त्री अमानवीय यातनाएं भी सहती है। उन्होंने कठोर प्रश्न किए कि ऐसा क्यों है। इस तरह उनके लेखों ने अनेक सुधार अभियानों को मजबूती दी तथा ब्रिटेन के समाचार पत्रों ने भी इन्हें प्राथमिकता से छापा। परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में महिलाओं की दशा पर गंभीर बहस छिड़ गई। इस मुकदमे की गूंज पूरे यूरोप और ब्रिटिश साम्राज्य में सुनाई दे रही थी। इस तरह ब्रिटेन और भारत में अनेक सुधारकों तथा महिला अधिकार समर्थकों ने उनके पक्ष में आवाज उठाई तथा समर्थकों ने उनकी आगे की शिक्षा के लिए धन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1889 में रुकमाबाई उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड रवाना हुई। रुकमाबाई ने लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन फॉर वुमेन में अध्ययन किया तथा रॉयल फ्री हॉस्पिटल में प्रशिक्षण प्राप्त किया। आगे चलकर उन्होंने एडिनबर्ग के स्कॉटिश मेडिकल कॉलेज की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1894 में उनका नाम मेडिकल रजिस्टर में दर्ज हुआ। इसी दौरान सन 1890 में उन्होंने ब्रिटिश पत्रिका न्यू रिव्यू में इंडियन चाइल्ड मैरिज एन अपील टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट शीर्षक से एक शोधपरक लेख लिखा। इसके माध्यम से उन्होंने वैश्विक मंच पर यह सिद्ध किया कि भारत में बाल विवाह कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि ये एक कुप्रथा है। इस तरह उनकी कलम ने लोगों को झकझोर कर जगाने का काम किया।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रुखमाबाई की पहचान केवल एक भारतीय महिला के रूप में नहीं रही, बल्कि वो स्त्री अधिकार और स्वतंत्र निर्णय की आवाज के रूप में पहचानी जाने लगी। वहां उन्होंने महिला अधिकारों और मताधिकार से जुड़े विभिन्न संगठनों से संवाद किया। विभिन्न आंदोलनों में वो शामिल हुईं। इस तरह उन्होंने अपनी विचारधारा को व्यापक अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। रुखमाबाई के प्रकरण और उनके संघर्ष ने औपनिवेशिक भारत के सामाजिक और विधिक ढांचे में दूरगामी बदलाव की नींव रखी। उनके मुकदमे के कारण बाल विवाह, महिला अधिकार और सहमति की अवधारणा पर देशव्यापी बहस शुरू हुई। रुखमाबाई के मामले ने सुप्रसिद्ध समाज सुधारक बहरामजी मालाबारी के नेतृत्व में चल रहे अभियान को कानूनी और व्यावहारिक आधार प्रदान किया। इस व्यापक जन आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ब्रिटिश सरकार को सहमति आयु अधिनियम 1891 पारित करना पड़ा, जिसमें लड़कियों की शारीरिक सहमति की आयु को 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दिया गया। सन 1894 में रुखमाबाई एक योग्य चिकित्सक के रूप में भारत लौटी। वो कादम्बिनी गांगुली और आनंदीबाई जोशी की तरह भारत में चिकित्सक का सफल पेशेवर जीवन जीने वाली शुरुआती महिला चिकित्सकों में शामिल हुई। सन 1895 में वो सूरत के वुमेन्स हॉस्पिटल की चीफ मेडिकल ऑफिसर बनी और 2 दशक से अधिक समय तक वहां चिकित्सा सेवा दी। सन 1918 के आसपास उन्होंने राजकोट के जनाना हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी। महिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये उनका महत्वपूर्ण योगदान था। एक निष्ठावान डॉक्टर के रूप में कार्य करते हुए भी रुखमाबाई ने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अपनी लड़ाई हमेशा जारी रखी। अस्पताल संचालन के दौरान उन्होंने देखा कि पर्दा प्रथा के कारण महिलाएं गंभीर बीमारियों की शिकार हो रही हैं। उन्होंने अस्पताल के भीतर पर्दा प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और महिलाओं को खुले वातावरण में सांस लेने के लिए प्रेरित किया। अपनी सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने पर्दा द नीड फॉर इट्स एबॉलिशन नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की। इसमें उन्होंने पर्दे के कारण महिलाओं की सामाजिक भागीदारी और उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों पर विचार किया। उन्होंने अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ी। डॉक्टर रुखमाबाई राउत का मानना था कि मरीज केवल मरीज होता है, उसे जात या वर्ग की दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने हमेशा सुनिश्चित किया कि सभी मरीजों को एक समान भोजन, दवा और सम्मान मिले। सेवानिवृत्ति के बाद वो बॉम्बे में ही बस गईं तथा अनाथालयों और महिला आश्रम से जुड़कर काम करने लगीं। उन्होंने अनाथ बच्चों की शिक्षा, विधवाओं के पुनर्विवाह और लड़कियों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए अपना शेष जीवन और निजी संसाधन समर्पित कर दिए। उनका मानना था कि किसी भी देश की वास्तविक शक्ति उसकी महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और प्राप्त अधिकारों पर निर्भर करती है। जीवन के अंतिम दिनों तक वो इसी संकल्प के साथ पढ़ने, लिखने और सामाजिक कार्यों में संलग्न रहीं और 25 सितंबर सन 1955 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल का प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर ग।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार ने वर्ष 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 3 योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये निर्णय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज RCVP नरोना प्रशासन अकादमी भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें 500 से अधिक वरिष्ठजन और गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में भी 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को शतायु सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा अभियान के तहत अधिकारियों को हॉटस्पॉट्स पर विशेष निगरानी रखने और प्रत्येक माह समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस और आबकारी विभाग संयुक्त कार्रवाई कर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। और भारत ने कल गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त ले ली है। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मुकाबला शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 800 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 9 बज चुके हैं। समय है कार्यक्रम लोक रसधार का। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे संजीव सिन्हा के गाए भोजपुरी गीत।

लोकरस धर में अभी आप सुन रहे थे संजीव सिन्हा के गाए भोजपुरी गीत। आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 9:10 होने को है, अब से कुछ ही पलों बाद अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से।

0: लोकतंत्र में जनसेवा का अर्थ केवल शासन करना नहीं बल्कि ऐसी व्यवस्थाओं का निर्माण करना भी है जो नागरिकों के जीवन को सरल बनाए, आसान बनाए, आर्थिक विकास को गति दें, न्याय सुनिश्चित हो और संस्थानों को अधिक जवाबदेह और प्रभावी बनाया जाए। साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सार्वजनिक सेवा यात्रा शुरू करने से लेकर साल 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने तक और उसके बाद लगातार 12 सालों तक राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी निभा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इस दौरान शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, कानून और संस्थागत ढांचे में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव हुए। भारतीय न्याय संहिता, श्रम संहिताएं, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC, GST परिषद, रेरा, नीति आयोग, सहकारिता मंत्रालय, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जन विश्वास अधिनियम, वाणिज्यिक न्यायालय और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जैसे कानूनों एवं संस्थानों ने देश की शासन व्यवस्था और आर्थिक ढांचे में नई भूमिकाएं निभाई हैं और इन सब में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन और नेतृत्व का अहम योगदान रहा है। तो इन कानूनों में बदलाव से क्या व्यापक असर पड़ा है, आइए सुनते हैं इस बारे में एक रिपोर्ट।
1: आपराधिक न्याय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के साथ आया। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने आपराधिक कानूनों का स्थान लिया। ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू हुए। नए प्रावधानों में अपराधों की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए संगठित अपराध और आतंकवाद जैसे मामलों के लिए प्रावधान किए गए हैं और कुछ अपराधों में सामुदायिक सेवा का विकल्प भी रखा गया है। श्रम व्यवस्था में भी व्यापक बदलाव हुए हैं। 29 पुराने श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में समाहित किया गया है। इनमें वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और व्यावसायिक सुरक्षा से जुड़े प्रावधान शामिल हैं। ये संहिताएं नवंबर 2025 से लागू हैं। इनमें न्यूनतम वेतन, समय पर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों को एक व्यापक ढांचे में रखा गया है। कर व्यवस्था में GST एक बड़ा संस्थागत बदलाव रहा। केंद्र और राज्यों के बीच कर संबंधी फैसलों के लिए GST परिषद को साझा मंच बनाया गया। रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए रेरा की व्यवस्था की गई। कारोबार और वित्तीय व्यवस्था में दिवाला समाधान के लिए IBC ने समयबद्ध प्रक्रिया उपलब्ध कराई। वहीं छोटे और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की दिशा में जन विश्वास कानून महत्वपूर्ण कदम रहा। कारोबारी विवादों में तेजी से समाधान के लिए वाणिज्यिक न्यायालयों और मुकदमे से पहले मध्यस्थता की व्यवस्था को भी मजबूत किया गया। नीति निर्माण में भी संस्थागत बदलाव हुआ। वर्ष 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया जो केंद्र और राज्यों को नीतिगत और तकनीकी सलाह देने के साथ सहकारी संघवाद के लिए मंच उपलब्ध कराता है। सहकारिता क्षेत्र के लिए वर्ष 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं के लिए प्रशासनिक और नीतिगत ढांचे को मजबूत करना तथा उनके आधुनिकीकरण और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। आयोग पिछड़े वर्गों के लिए उपलब्ध संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की निगरानी करता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग ने चिकित्सा शिक्षा और नियमन के लिए नया संस्थागत ढांचा उपलब्ध कराया है। इन सभी बदलावों का दायरा अलग अलग क्षेत्रों में है लेकिन व्यापक उद्देश्य एक ही है, बदलती जरूरतों के अनुरूप कानूनों और संस्थानों को विकसित करना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और नागरिकों तथा कारोबार के लिए अधिक स्पष्ट और जवाबदेह व्यवस्था तैयार करना। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: इन सुधारों का उद्देश्य क्या रहा? इनसे आम नागरिक, श्रमिक, उद्यमी, निवेशक, किसान और विभिन्न सामाजिक वर्ग किस तरीके से सकारात्मक तरीके से प्रभावित हुए? क्या इन बदलावों ने भारत की संस्थागत क्षमता और कारोबारी माहौल को नया स्वरूप दिया और क्या इनके क्रियान्वयन में अभी भी चुनौतियां बाकी हैं? इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों पर आज हम पेश कर रहे हैं जन सेवा से देश सेवा और हमारे साथ मौजूद हैं दो महत्वपूर्ण मेहमान। प्रफुल्ल केतकर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका।
2: धन्यवाद।
0: और आशीष कुमार पांडे जी भी हमारे साथ हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं। आशीष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: साल 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की सार्वजनिक सेवा की शुरुआत से लेकर केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल तक शासन की प्राथमिकताओं और प्रशासनिक दृष्टिकोण में क्या कुछ बहुत

0: प्रमुख बदलाव देखने को मिले और इन बदलावों के प्रमुख आयाम क्या हैं, इस चर्चा की शुरुआत हम केतकर जी आपके साथ करना चाह रहे हैं।
1: देखिए, शासन प्रशासन जो भी होता है उसको तो लोकाभिमुख होना ही पड़ता है और उसके आधार पर नीतियां भी बनती हैं। प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जब थे तो उस समय से एक विशेष रूप से ये दिखता है, क्योंकि जिस पृष्ठभूमि से वो आते थे उन्होंने उसको केवल लोकाभिमुख नहीं बनाया, बल्कि जो सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस थी उसको फेडरलाइज किया। मुझे ध्यान में है 2002 में 3 में जब पहली बार उन्होंने प्रयोग शुरू किया तो शासन आपके द्वार इस नाम से गुजरात में हर जिले में पूरा सेक्रेटरिएट जाता था, तो साल भर में यह राउंड पूरा होता था, तो ये अपने आप में एक अलग प्रयोग था। दूसरा, मैंने देखा कि सीएम के रूप में उनके कार्यालय में डैशबोर्ड, हर स्कीम का कंटिन्यूस मॉनिटरिंग, तो इसमें एक तरफ ग्राउंड के इनपुट्स आने का मैकेनिज्म और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के साथ उसका इंटीग्रेशन। मुझे लगता है कि जो किसी भी सुशासन के 4 स्तंभ माने जाते हैं, एक होता है ट्रांसपेरेंसी, दूसरा होता है अकाउंटेबिलिटी, तीसरा होता है डिलीवरी और चौथा होता है जस्टिस, इन चारों को उन्होंने जिस तरीके से इंटीग्रेट किया पूरे ही शासन प्रणाली में और एक तरीके से ब्यूरोक्रेसी को जो भी डिलीवर कर रहा है उसको उसके लिए अकाउंटेबल बनाया, क्योंकि नंबर्स रोज दिख रहे हैं। कोई भी सामान्य व्यक्ति भी आज देख सकता है कि पिछले 10-12 साल में भारत में कितने घरों तक बिजली पहुंची या हर घर जल मिशन में कितने लोगों को एक्चुअली टैप का पानी मिला। नहीं मिला है तो भाई आपका डेटा ये कह रहा है, आप ये ग्राउंड पर एज ए मीडिया में तो देख ही सकता हूं। फिर उसके कारण क्या है कि एक नैतिक दबाव उस ग्राउंड पर डिलीवरी करने वाले पर बनता है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा अप्रोच का बदलाव है। तीसरा, इसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है लेकिन महत्वपूर्ण है, कि इन सबको भारत की वास्तविकता के कुछ चीजें तो हमको अडॉप्ट करनी पड़ती है, चाहे वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट हो चाहे इंटरनेशनल मानकों पर आधारित प्रोजेक्ट हो, लेकिन उसका इंडियनाइजेशन, भारत की वास्तविकता को, भारत के सांस्कृतिक सामाजिक धरातल को ध्यान में रखते हुए, और उसमें मैं फिर नीति आयोग को देखता हूं कि जो सेंट्रलाइज प्लानिंग कमीशन था वो नीति आयोग बनना या इंसॉल्वेंसी कोड के आधार पर। तो मुझे लगता है कि भारत की वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए, उसकी सांस्कृतिक रूट्स को बनाए रखते हुए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर फॉरेन स्कीम्स हो या टेक्नोलॉजी हो उनका एक इंटीग्रेशन करते हुए जो गवर्नेंस का एक मॉडल खड़ा रहा, वो मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी एज अ पर्सोना का एक बहुत बड़ा योगदान है।
0: और यही गवर्नेंस का मॉडल जो है भारत को विकसित भारत 2047 की तरफ ले जाने में काफी अहम भूमिका निभा रहा है। अगले सवाल में आपके पास आएंगे, योजना आयोग से नीति आयोग बनने की कहानी और उसके क्या फायदा हुए इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आशीष जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आशीष जी, भारतीय न्याय संहिता यानी BNS ने भारतीय दंड संहिता IPC का स्थान लिया और 1 जुलाई 2024 से ये लागू भी हुई। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी लागू हुए। इन नए कानूनों में आम नागरिक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बदलाव अब आपको क्या दिख रहे हैं और क्या हम अगर देखें 2 सालों में तो इनसे न्याय मिलने की प्रक्रिया और अधिक सुलभ और समयबद्ध हो सकी है?
2: न्याय प्रणाली किसी भी व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अभी प्रफुल्ल साहब ने 4 अनिवार्य अंग बताए और आखिरी उसका जो अंग बताया वो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को बताया, क्योंकि उसका कारण ये है कि अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम अगर फेल हो जाता है तो आपकी व्यवस्था को पूर्ण व्यवस्था नहीं कहा जा सकता। हम गवर्नेंस की बात कर रहे थे, जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली तो उनका एक मोटो था, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। अब इसको किस तरीके से धरातल पर इम्प्लीमेंट किया जाए और उसका खासकर जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, इसी के साथ एक वास्तविकता का रिकॉग्निशन भी था कि जो हमारे दंड संहिता से रिलेटेड कानून थे वो सदियों पुराने हो चुके थे, क्या आने वाला भारत उन कानूनों के आधार पर आगे चल सकता है या नहीं, ये एक बड़ा प्रश्न था, यक्ष प्रश्न था। इन सारी चीजों को देखते हुए ही ये नए 3 कानून लाए और जो हमारी न्यायिक प्रणाली के 3 महत्वपूर्ण अंग थे, जैसा आपने कहा IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट, तीनों को चेंज किया। अब आपका सवाल इस विषय को टच करता है कि क्या इससे परिवर्तन क्या आया है। अब देखिए, परिवर्तनों को अगर हम डिस्कस करेंगे तो शायद हो सकता है पूरा दिन निकल जाए। मैं कुछ ऐसे परिवर्तन बताता हूँ जिसकी डायरेक्ट बेयरिंग है, जिसने कि समाज की सीढ़ी पर अंतिम स्तर पर बैठे हुए व्यक्ति को भी टच किया है। अब अगर आपके साथ कोई घटना घटित हो जाती है तो सबसे पहला आपका क्या कंसर्न होता है, पुलिस के पास जाकर रिपोर्ट कैसे दिखाना है। देश की

0: आज भी एक बहुत बड़ी जनता का वर्ग ऐसा है जिसको कि थानों में जाने में डर लगता है। पुलिस का नाम आते ही छोड़ो, इसमें क्या पढ़ना है यार, जो भी हमारे साथ घटना घटित हो गई है, अगर अवॉइड की जा सकती है अवॉइड की जा सकती है। लेकिन आज की डेट में जब जीरो FIR जैसे प्रोविजंस लाए जा सकते हैं, आज की डेट में जहां डिजिटल माध्यम से आप पुलिस के पास कंप्लेंट कर सकते हैं, तो एक बहुत बड़ा बैरियर जो था पुलिस और जनता के बीच में और जो एक हिचक थी, उसको कहीं ना कहीं पाटने का प्रयास किया गया है। क्योंकि किसी भी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का सबसे पहला अंग होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कैसे होंगी, तो मैं यहीं से शुरू करता हूं। अब एक बार FIR रजिस्टर हो जाती है, उसके बाद बहुत सारे चरण होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट फाइल होती है, ट्रायल होता है, जजमेंट्स आता है। इन कानूनों ने इस प्रक्रिया के हर एक चरण को कहीं ना कहीं टच किया है। अगर आप देखें इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड जो प्रोसीजर्स हैं, किस तरीके से आपको साक्ष्यों को कलेक्ट करना है, कई स्तरों पर वीडियोग्राफी को मैंडेटरी किया गया है, कई जगह फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी किया गया है, और आखिरी स्तर पर अगर हम जाकर कहें तो कहीं ना कहीं कितने समय में किसी जजमेंट को डिलीवर करना है। इवन कोर्ट्स के लिए भी एक गाइडलाइन बनाई गई है, एक रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि अगर फाइनल आर्ग्यूमेंट्स हो गए हैं तो आपको इतने दिनों के भीतर अपना जजमेंट पास करना है। तो इन तीनों कानूनों के माध्यम से इस पूरी व्यवस्था को, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हर एक चरण को टच करने का प्रयास किया गया है, और जिसके बहुत ही प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं।
1: जब आशीष जी ये कानून लाए गए थे, तब एक बात हो रही थी कि पुलिस को थोड़ी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि वो पुराने सिस्टम के आदि हो चुके हैं, तो एक उनकी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग की प्रक्रिया शुरू की गई, शायद वो अभी भी चल रही है। साथ ही नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पुलिस अभियोजन न्यायपालिका और फॉरेंसिक संस्थानों की क्षमता भी बढ़ानी थी। तो आज हम 2 साल बाद कहाँ पर खड़े हैं?
0: आपके पहले ही बिंदु से शुरू करते हैं। देखिए इन कानूनों के पीछे उद्देश्य क्या था। जब ये कानून पुराने कानून थे, उस समय देश में अंग्रेजों का शासन होता था, या एक CRPC थोड़ा बाद में भी आया, लेकिन जो उसकी मूल भावना थी वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल एरा से जुड़ी हुई थी। अब सरकार का उद्देश्य ये था कि किसी तरीके से जो दंड पर आधारित कानून है, जो कहीं ना कहीं पनिशमेंट की बात करते हैं, उसको किसी तरीके से हम विक्टिम सेंट्रिक बना सकें, उसको किसी तरीके से रिफॉर्मेशन का एक एलिमेंट डाल सकें। अब अगर मंशा पुलिस की केवल इतनी हो कि इस व्यक्ति के ऊपर ये एलिगेशन है, और थाना ही जब कोर्ट बन जाता है और वहां से ही दंड स्टार्ट हो जाता है, उसको कहीं ना कहीं से वहां से निकालकर अगर कहीं रिफॉर्म करने की उस व्यक्ति को संभावना दिखाई पड़ रही है, तो कम्युनिटी सर्विस जैसे जो प्रोविजंस हैं उसको भी इन कानूनों में लाया गया है। और पुलिस की मानसिकता किस तरीके से चेंज हो, इसको लेकर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पुलिस कि जो ऑफिसर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग बहुत ही आवश्यक थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में ही BPRD इंस्टीट्यूशन आता है, और बहुत ही नेशन वाइड प्रोग्राम इसके लिए ऑर्गेनाइज कराए गए हैं। बहुत सारे सेशंस हुए हैं, और कुछ सेशंस का पार्ट बनने का मुझको भी मौका मिला है, जहां पर पुलिस ऑफिसर्स को नए कानूनों के बारे में समझाया गया है। दूसरी चीज आपने कही महत्वपूर्ण बात कि चूंकि इन कानूनों को, खासकर एविडेंस से रिलेटेड प्रोविजंस को सुदृढ़ करने के लिए फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्शन और इस तरीके की चीजें भी आई हैं, तो जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर भी सतत रूप से काम हुआ है, ये हम देख रहे हैं, और ये मेजरेबल काम है। ऐसा नहीं है कि केवल बातें हुई हैं, हम धरातल पर भी काम हुआ देख रहे हैं।
1: प्रफुल्ल जी, जो हम चर्चा कर रहे थे इन बदलावों की, तो आप तो जुड़े रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते रहे हैं। जन विश्वास अधिनियम के माध्यम से विभिन्न कानूनों में छोटे अपराधों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को कम करने और अनुपालन को और सरल बनाने का प्रयास किया गया है। इसका आम नागरिक, खासकर छोटे कारोबारियों और उद्यमियों पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है?
2: देखिए 1860 में ये सारे प्रावधान जब बने थे, तो उसके पीछे सोच कॉलोनियल सोच थी। भारतीयों को दंडित करना, भारतीयों को हर चीज में फंसा के रखना, बहुत सारे कानून तो ऐसे थे, हजारों कानून जिनका उपयोग ही नहीं होता था। तो दंड देना है या न्याय देना है? दंडित करना है तो शासन की भूमिका बदल जाती है, न्याय देना है तो भूमिका बदल जाती है। तो ये केवल नाम का बदलाव नहीं है, सोच का बदलाव है। वही जनविश्वास में है। पहले ये होता था कि यदि स्पेशली टैक्सेशन रिलेटेड रूल्स में, कि वो अधिकारी मान के चलता था कि इसने टैक्स चुराया तो जैसे मेरा पैसा चुराया है, तो उसके ऊपर मान ले किसी के ऊपर रेड होती है, किसी को नोटिस चली जाती है, तो वो चर्चा का विषय उसके मोहल्ले में बन जाता था। और फिर उस व्यक्ति की जो उसमें वास्तविक रूप में क्या निकलेगा नहीं निकलेगा वो बात की बात है। अब जनविश्वास के तहत क्या हुआ है कि पहली बात तो उसका इन्वेस्टिगेशन फेसलेस हो गया है, तो अधिकारी को पता नहीं है मैं किसका इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसको पता नहीं है कि कौन अधिकारी है। तो फर्स्ट फेज में तो वो फेसलेस है, इसने क्या किया है उसको नोटिस अभी भी जाएगी, लेकिन वो किसने भेजी है, कौन अधिकारी, इसके बारे में तो इंटरफेस इसमें जो ट्रांसपेरेंसी वाला और अकाउंटेबिलिटी वाला इशू है गवर्नेंस का, वो अपने आप ही एड्रेस होने लगा क्योंकि ये मैकेनाइज हो गया। तो मान लो 500 रुपए की मेरे टैक्स कैलकुलेशन में मुझसे या मेरे सीए से कुछ गलती हो गई है तो उसका अभी भी मुझे आता है, आएगा, हजारों लोगों का आता है, लेकिन उसको इमीडिएट रिड्रेसल करने का उसमें उपाय भी दिया हुआ है, तो मैं उसको एड्रेस करूंगा तो अगले रिटर्न में मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन उसके कारण मुझे इनकम टैक्स ऑफिस के चक्कर नहीं लगाने हैं, या जीएसटी ने उसको और भी अलग कर दिया है क्योंकि शुरू के टेक्निकल ग्लिचेस थे, उसको मैंने भी रिपोर्ट किया बहुत बार। लेकिन क्या हुआ कि मल्टीपल लेयर्स ऑफ टैक्सेस थे, उनका इंटीग्रेशन हो गया, तो स्टेट लेवल के सेल्स टैक्स से रिलेटेड हो या वैट से रिलेटेड टैक्सेस हो, उनका इंटीग्रेशन होने के कारण अब वही व्यापारी जो शुरू में इसके बारे में कतराता था, वो कहता है यार हर 3 महीने के बाद ये करना पड़ता है, लेकिन प्रोसेसेस बहुत आसान हो गए, हर बार हमको जो हमारा माल जा रहा है, क्योंकि हर स्टेट का टैक्सेशन का ये अलग होता था, सेल्स टैक्स के रूल्स अलग होते थे, तो उसके बारे में हमको ये नहीं करना पड़ता। दूसरी बात है कि एक बार हमने ये प्रोसेस कर दिया तो हमको हर बार किसी न किसी ऑफिसर के सामने जाकर नहीं बैठना पड़ता। तो ये इस प्रोसेस पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, उस ये बिजनेस कर रहा है मतलब चोरी कर रहा है, ये जो मानसिकता हमारी सोशलिस्ट माइंडसेट ने बन गई थी, प्लानिंग कमीशन भी उसी का प्रतीक था
0: जी,
2: इसलिए वो नीति आयोग करना पड़ा। तो मुझे लगता है कि इस सारी प्रोसेस ने सरकार की इस सारी व्यवस्था पर, टैक्स देने पर लोगों का विश्वास बढ़ाया, बिजनेसमैन को अपने जो बिजनेस एक्टिविटीज है उसको एक सिंगल विंडो, सिंगल क्लिक, सिंगल वेबसाइट, इसके आधार पर मैनेज करने की व्यवस्था आई, और इसके कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारा रैंकिंग बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ,
1: बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ। और साथ में जो आप बता रहे हैं कि अधिकारियों का जो एक डर था, टैक्स अधिकारियों का, वो डर मन से समाप्त हुआ।
2: उसे एक शब्द प्रयोग होता था मोदी जी की गवर्नमेंट आने से पहले, मीडिया में भी हम उसको उपयोग करने लगे थे, टैक्स टेररिज्म
1: जी।
2: तो ये 1970 से एक शब्दावली रूढ़ हो गई थी, टैक्स टेररिज्म, कि टेररिज्म की तरह डर हो गया था, तो उससे निश्चित रूप से
1: इनकम टैक्स ऑफिस से किसी के घर एक चिट्ठी पहुंच जाए, उस दिन उस घर में खाना भी नहीं होता था, लोग सही ढंग से खा नहीं पाते थे डर के, ये देखा है। लेकिन आज जीवन में सुकून आया है, खास करके मध्यम छोटे कारोबारियों के बीच में, आर्थिक सुधार, श्रम और कारोबारी माहौल भी परिवर्तित हुआ है। 4 श्रम संहिताओं के जरिए 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समेकित इंटीग्रेट करने का प्रयास किया गया। इनका उद्देश्य श्रम कानूनों को सरल बनाना और श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों का विस्तार करना है। इन संहिताओं से संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, विशेषकर गिग वर्कर्स जो हैं और प्रवासी मजदूरों को काफी लाभ मिला है। इस बारे में भी आपसे हम जानना चाह रहे हैं कि वो क्या हुआ।
2: देखिए, अब जब 2025 में, क्योंकि 2016-17 के बाद ये 29 अलग अलग लेबर लॉज बने हुए थे, और ये समस्या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके लिए भी थी क्योंकि उनको उसका कंप्लायंस करना था, दूसरी तरफ जो उसका जिसके लिए ये बनाए गए हैं उसके लिए भी ये 29 अलग अलग कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपने अधिकारियों के लिए लड़ना, ये किसी भी व्यक्ति के लिए या इवन यूनियंस के लिए पॉसिबल नहीं था। अब ये जो 4 कानून आए, 4 लेबर कोड्स, जिसमें एक तो वेजेस से रिलेटेड है, एक इंडस्ट्रियल रिलेशंस से जुड़ा हुआ है, एक जो है वो सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है, और चौथा जो है वो सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशन से जुड़ा हुआ है। अब इन 4 कोड्स के आने के कारण क्या हुआ, इस पर एक लंबी चर्चा जब भारत में G20 आया था तो उस समय भी हुई थी, L20 के नाम से, लेबर 20 नाम से, वहां पे एक फोरम बना था, और उस फोरम ने भी इन 4 कोड्स की सराहना की कि इतना सिंप्लीफाइड और इतना वर्कर फ्रेंडली। तो हमने क्या किया था कि ये कानून बनाते हुए वर्कर्स के इंटरेस्ट के बारे में तो सोचते थे, लेकिन ये मानकर चल रहे थे कि बेसिकली इंडस्ट्री और वर्कर्स ये एक दूसरे के दुश्मन है। अब पहली बार एक कॉन्सेप्ट, उद्योग परिवार एज अ फैमिली, इंडस्ट्रियल यूनिट एज अ फैमिली, जिसमें सरकार, उद्योगपति और वहां पे काम करने वाले वर्कर्स, ये तीनों जो है एक परिवार है जो देश के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर रहा है। तो इन 4 कोड्स ने सबसे बड़ी बात जो की है, तो एक तो सिंप्लीफिकेशन किया, दूसरी तरफ कंप्लायंसेस को स्ट्रीमलाइन किया। तो इंडस्ट्री के जो भी कंप्लायंसेस थे, जो आउटडेटेड प्रोविजंस थे, वो बाहर हो गए। अब इतना ज्यादा मैकेनाइजेशन हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी

0: बदल गई, तो वो जो पुराने इंडस्ट्रियल लॉस थे उसमें से तो कुछ तो एप्लीकेबल ही नहीं थे। लेकिन इसके साथ साथ इसने एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया जिसमें वर्कर्स के राइट्स और वेलफेयर की प्रोटेक्ट हो, और दूसरी तरफ इंडस्ट्री को भी अपने उद्योगों को बढ़ाने में सहायता मिले।
1: ये जो चार लेबर कोड्स हैं आशीष जी, इसने भी सोच में बदलाव का काम किया है, जो आप भारतीय न्याय संहिता के संबंध में अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। आशीष कुमार पांडे जी, सुप्रीम कोर्ट में आप एडवोकेट हैं, आपसे ये जानना है कि दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता यानी IBC, इसने कंपनियों के दिवालियापन और ऋण समाधान की प्रक्रिया के लिए एक बिल्कुल नया ढांचा पेश किया। इस कानून ने बैंकों की जो NPAs हैं, ऋण वसूली है, निवेशकों के विश्वास और कारोबारी अनुशासन को किस हद तक प्रभावित किया है, ये हम आपसे जानना चाहेंगे।
2: इस पूरे कार्यकाल में जो महत्वपूर्ण कुछ कानूनी रूप से जो बदलाव हुए हैं, उसमें से एक वकील होने के नाते मैं जिस तरीके से देखता हूँ, उसमें IBC की आपने बात करी, ये बहुत ही जिसने व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया है। और इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं आप दो चीज़ों से जोड़ सकते हैं। प्रफुल्ल साहब ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी, और दूसरा जो सरकार का एक मोटो रहा है, मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस। देखिए 2014 के पहले हो क्या रहा था, ऐसा नहीं है कि कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन जहां भी ऋण से रिलेटेड डिफॉल्ट्स होते थे, और बैंकों का उसमें बहुत सारा पैसा फंसा हुआ था, इंस्टीट्यूशंस का बहुत पैसा फंसा हुआ था, जो कि अपने आप में कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ को भी हैम्पर कर रहा था। अब उसके रिकवरी कैसे करी जाए, ये एक बहुत बड़ा एक सवाल था, और उसके लिए बहुत सारे कानून थे, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स थी, मल्टीपल फोरम्स थी। अब बैंकों को अपना पैसा पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर बहुत सारी फोरम्स में जाना पड़ता था, और वो भी सालों साल प्रोसीडिंग्स लटकी रहती थी, और उसमें भी कोई निर्णय नहीं निकल पाता था। तो एक जनरल टेंडेंसी बन जाती थी कि आप लोन लीजिए, डिफॉल्ट करिए, कानूनी प्रक्रिया में चीजों को डाल दीजिए, और चूंकि उस उद्यम का, उस कंपनी का, उस व्यवसायिक प्रतिष्ठान का कंट्रोल उसके प्रमोटर के पास ही रहता था, तो अल्टीमेटली उसका ऑब्जेक्टिव होता था कि मैं जाकर बाद में वन टाइम सेटलमेंट टाइप की कोई एक चीज कर लूंगा और उससे मुनाफे के साथ निकल जाऊंगा, जो कि कहीं ना कहीं पूरे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा था। IBC के आने के साथ क्या हुआ है, देखिए एक तो बहुत मल्टीपल कैटेगरी हैं क्रेडिटर्स की। आज की डेट में अगर कंपनी आपसे कुछ भी पैसा लेती है, सपोज करिए आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, मैं बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं करता हूँ, आपने एक सर्विस प्रोवाइडर के रूप में किसी भी कंपनी को कुछ गुड्स सप्लाई करी हैं और कंपनी ने आपको पेमेंट नहीं किया हुआ है, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस आप उनको भी IBC कोड के तहत बाध्य कर सकते हैं या उनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पर अगर पेमेंट नहीं होता है तो एक बेसिक मैकेनिज्म बनाई गई है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स की, और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स की एक पूरी संस्था खड़ी करी गई है। प्रमोटर्स के हाथ से कंट्रोल निकल जाता है उस कंपनी का, और उस कंपनी का कंट्रोल कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के पास में आ जाता है। तो प्रमोटर्स के सामने सबसे बड़ी एक चुनौती ये हो गई है कि अगर मैंने किसी भी ऋण का समयबद्ध तरीके से भुगतान नहीं किया तो मेरी कंपनी का कंट्रोल मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक डिटरेंस क्रिएट हो चुका है। फिर दूसरी सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट इसमें यह है कि किसी भी कंपनी में अगर वो स्ट्रेस्ड कंपनी है और अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर पा रही है, तो पहला प्रयास ये होता है कि किसी तरीके से चीजों को रिजॉल्व कर लिया जाए। अगर कंपनी ऑफ क्रेडिटर के अपॉइंटमेंट के बाद उस कंपनी के फंक्शंस प्रॉपरली चल सकते हैं और उस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है, तो किसी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे प्रतिष्ठान को उसको बाद में बेचा जा सकता है, एसेट्स को प्रिजर्व किया जा सकता है, और जो भी क्रेडिटर्स हैं उनका पैसा जिस हद तक भी संभव है वहां तक लौटाया जा सके। अल्टीमेटली जो उसका डिसोल्यूशन है कंपनी का, इंसॉल्वेंसी है, वो सबसे लास्ट स्टेप के रूप में आया गया है। तो इस पूरी व्यवस्था ने कई स्तरों पर जो समस्याएं थी उसका समाधान किया है। सबसे पहला डेटरेंस, अगर आपने कोई लोन लिया है आपको समयबद्ध तरीके से चुकाना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी कंपनी का कंट्रोल आपके हाथ से चला जाएगा। दूसरा, अगर कंट्रोल जाता है तो ऐसा नहीं है कंपनी की देखभाल नहीं होगी, एक प्रोफेशनल बॉडीज होगी जो कि खुद क्रेडिटर्स की है, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है उस कंपनी को चलाने में, वो पैसे की रिकवरी के लिए उस कंपनी को चलाने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज एक शेड्यूल्ड क्रेडिटर्स की है, अगर ये संभव नहीं हो पाता है तो लिक्विडेशन के बाद जो एसेट्स होंगी वो उस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होती है।
1: बिल्कुल, और साथ ही अगर GST की बात करें, GST ने भी कारोबारियों का जो जीवन है वो बहुत आसान कर दिया है, और साथ ही GST परिषद जो है ये सहकारी संघवाद का एक महत्वपूर्ण संस्थागत उदाहरण है, जहां केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक संबंधी निर्णय लेते हैं। GST ने देश के साझा बाजार, कर अनुपालन और व्यापारिक गतिविधियों को

0: बेहद ही सकारात्मक तरीके से प्रभावित किया है। आज कहाँ आप खड़ा पाते हैं, जीएसटी पर आप क्या कहना चाहेंगे?
1: अगर आज मुझको लगता है देश की अर्थव्यवस्था उन्नति कर रही है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा अहम योगदान जो जीएसटी रिजीम, न्यू जीएसटी रिजीम है, उसका रहा है। देखिए, जीएसटी रिजीम आया क्यों, जरूरत क्यों पड़ी हमको? इनडायरेक्ट टैक्सेशन के नाम पर हमने एक टैक्स टेररिज्म की बात करी थी। टैक्स टेररिज्म केवल डायरेक्ट टैक्सेस में नहीं होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में भी होता है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जब टैक्स टेररिज्म की बात होती है तो उसकी कैस्केडिंग इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि वो पूरी अर्थव्यवस्था पर उसके असर होते हैं। जो कई सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको कंसोलिडेट कर एक सेंट्रलाइज एक जीएसटी रिजीम हमने इंट्रोड्यूस किया। उसकी वजह से देखिए हुआ क्या, जो मल्टीपल टैक्सेस पे करने पड़ते थे छोटे छोटे बिजनेस से लेकर बड़े बिजनेसेस तक को, वो एक सेंट्रलाइज सिस्टम एक हमारे पास है। अब चूंकि देश बहुत बड़ा है, बहुत सारे राज्य हैं और राज्यों के पास भी चूंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस कई सारे होते थे, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चीजों का मूवमेंट होता था, गुड्स या सर्विसेज का, तो जो भौगोलिक बॉर्डर्स होती थी वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बॉर्डर्स बन जाती थी। और उसके वजह से आप देखते थे हर स्टेट बॉर्डर पर ट्रकों की एक लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन करना पड़ रहा है। जीएसटी के आने के बाद से पूरे देश को एक सिंगल इकोनॉमिक यूनिट के रूप में कन्वर्ट किया गया है। और इसके असर से ये हुआ है कि जब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं तो उसमें मल्टीफोल्ड एक तरीके से इजाफा हुआ है। और इसका असर आज हमको आज की इकोनॉमी में दिखाई पड़ रहा है। आज जो अगर आप जीएसटी कलेक्शन को देखिए, जीएसटी कलेक्शन कई गुना बढ़ चुका है। और जीएसटी कलेक्शन के साथ साथ आप इसका एक अलाइड एक पार्ट इसका ये भी है कि इसने कहीं ना कहीं इकोनॉमी की फॉर्मलाइजेशन की तरफ भी गए हैं हम, क्योंकि ई इनवॉइसिंग जैसे बहुत सारे प्रोविजंस जीएसटी में आए हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट की अगर हम बात करते हैं तो जो छोटे दुकानदार हैं जो पहले शायद कैश में डील करते थे, एक लार्जर स्कीम के पार्ट में देखिए तो अब चूंकि वो इनवॉइसिंग के थ्रू काम हो रहा है तो इकोनॉमी का भी फॉर्मलाइजेशन हुआ।
0: बिल्कुल।
1: और इस पूरी व्यवस्था को रेगुलेट करने के लिए जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन उसमें ऐड किया गया है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, जैसा प्रफुल्ल साहब ने भी कहा कि पहले क्या व्यवस्थाएं, जो हमारी पॉलिटी का स्ट्रक्चर था कि सेंटर पर स्कीम बनती थी और नीचे स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल दिया जाता था, लेकिन अब जीएसटी काउंसिल के थ्रू स्टेट्स और सेंटर साथ में बैठते हैं, खुद तय करते हैं किसी चीज पर क्या जीएसटी लगना है, वो किस लैब में आएगा, किस कैटेगरी में आएगा। और इससे कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म की बात करते हैं वो ढांचा मजबूत हुआ है, जो संवैधानिक व्यवस्था थी वो मजबूत हुई है। जी
0: बिल्कुल। और प्रफुल्ल जी, हम ये भी देखते हैं कि पहले कारोबारी कैश लेने में कोई हिचक नहीं रखते थे, बल्कि उनकी चेष्टा रहती थी, चाहते थे कि कैश मिल जाए। अब क्या है कि देखिए क्या सोच का बदलाव है जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं। आज छोटे से छोटा कारोबारी, बड़े से बड़ा कारोबारी कैश नहीं ले रहा है। अगर कैश आप देते भी हैं तो या तो बोलेगा कि नहीं जी खुले नहीं है, आप UPI पेमेंट कर दीजिए या कार्ड से दे दीजिए। ये एक जो सोच का बदलाव हुआ है, ये और आगे कहां तक जाना है इस सोच को?
2: मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये 100% खत्म हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन ने तीन चीजें की। एक सोशल इंक्लूजन, मजाक उड़ाया जा रहा था जब पहली बार भीम और UPI की बात आ रही थी, आज ये चर्चा हो रही है कि 0.2 से 0.4% हो जाएगा तो कितने लोग इससे हटेंगे, और उसका असर जमीन पर नहीं हो रहा है क्योंकि अब लोगों को उसकी आदत भी पड़ गई और लोगों को ये समझ में आ रहा है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकता, तो जो हायर कैटेगरी वाले ट्रेड लेवल के पेमेंट्स है उसमें कुछ ना कुछ चार्जेबल करना पड़ेगा, और वो भी क्रेडिट कार्ड वगैरह बाकी लोग यूज करते तो उसके चार्जेस है ही। तो सबसे पहला जो हुआ कि गांव का सामान्य आदमी भी जो छोटी सी दुकान रेडी पटरी पर काम कर अपना ये लगा रहा है, वो भी इससे पेमेंट, तो उनका बैंकिंग में इंक्लूजन होना, ये बहुत बड़ा बदलाव था
0: जी।
2: दूसरा, फास्ट एंड एग्जैक्ट ट्रांजेक्शन, मतलब आप एक्चुअल 221.39 रुपया है तो उतना ही पेमेंट आप कर सकते हो। तो जब वो ट्रेड के बड़े इसमें होता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता था कि ये सब लोग 99 रुपीज़ 299 रुपीज़ क्यों छापते हैं, तो वो 1 रुपया जो था वो बेसिकली वही था, वो कैश में हो ना हो लेकिन वो एडिशनल ही था, वो कभी भी टैक्स ब्रैकेट में नहीं आता था। आज आपके पास वो ऑप्शन खुला है तो इसके कारण ट्रांजैक्शनल ट्रांसपेरेंसी आ गई है, एग्जैक्टनेस एक्यूरेटनेस आ गया है। तीसरा, इसके कारण उसके लिए भी ये लगने लगा है कि यार फिर ये जब सब मेरा पूरे मेरे डैशबोर्ड मेरी कुंडली मेरी जन्म पत्रिका सब बनी हुई है, मैं कहीं से भी करूंगा तो वो दिखने ही वाला है, तो मैं फालतू चीजों में 2 पैसे के लिए मैं और अपने जनरेट क्यों पाल लूं। तो ट्रेडर भी, और कभी भी आप देखिए ये टैक्स टेररिज्म 1970 से जब शुरू हुआ तो लोगों के टैक्स चुराने की मानसिकता बढ़ गई, क्योंकि लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया। एक ज़माना था जब इमरजेंसी के समय उसके आसपास 80-90% तक सारा कुल मिलाकर टैक्स देना पड़ता था, तो जब मैं ये सारी मेहनत कर रहा हूँ उसमें 80-90% सरकार को देने पड़ रहे हैं तो मैं क्यों करूँ, और उस पर से भी कोटा भी है, परमिट भी है, तो रिलक्टेंस खत्म हो गया। जब डिलीवरी मिलने लगती है तो लोगों की टैक्स देने की मानसिकता बदल जाती है, तो उसके कारण टैक्स ब्रैकेट भी चेंज हो गए। तो मुझे लगता है ये तीनों तरीके के बदलाव उसके कारण
0: है। और साथ ही एक चलते चलते, अब समय बहुत कम बचा है, आपसे ये जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट विनियमन एवं विकास अधिनियम, जिसे रेरा के नाम से हम जानते हैं, ये आने से भी घर खरीदने वालों का बड़ा फायदा हुआ है, लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वरना कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं थी बिल्डर्स की।
2: नहीं, मुझे लगता है ये बिल्डर्स के लिए भी अच्छा हुआ है। कुल मिलाकर रियल इस्टेट इंडस्ट्री के लिए रेरा आना, क्योंकि किसको क्या जमीन एलोकेट हुई है, ज्यादातर होता क्या था इसमें, क्योंकि उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है तो वो आधी प्रोजेक्ट करता था, क्रेडिटर्स के रूप में उसके ऊपर ये प्रेशर बढ़ जाता था, उसके आए हुए एडवांस के पैसे वो दूसरे प्रोजेक्ट में लगा देता था। और इसमें कहीं पे भी, जिसको यूएस में 2008 में प्रसिद्ध रूप से कहा गया सब प्राइम क्राइसिस
0: जी,
2: तो सब प्राइम बेसिकली क्या था,
0: यही था,
2: तो क्रेडिट के ऊपर क्रेडिट लिया हुआ है, तो उसका वो कहीं ना कहीं तो वो चेन ब्रेक होनी है, तो वो चेन ब्रेक होती थी और वो प्रोजेक्ट खटाई में पड़ जाता था। लेकिन जिसने उसमें घर बुक किया हुआ है वो सामान्य खरीदार, उसका क्या, अब उसके पास ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है। तो रेरा एक ऐसी अथॉरिटी है जिसने लैंड अलॉटमेंट से लेकर फाइनल डिलीवरी तक उस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करने का एक डिजिटाइज मैकेनिज्म भी बनाया है, और इसमें कहीं पे कुछ डिलीवरी में गड़बड़ी होती है तो वो जो घर खरीदने वाले हैं उनके लिए उसका एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी दिया है। 2-3 प्रोजेक्ट आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में ही, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े बिल्डर्स के, जो आधे अधूरे पड़े हुए थे वो दूसरे बिल्डर को हैंड ओवर करके कंप्लीशन करने के ऑर्डर्स हुए हैं। ये कितनी बड़ी राहत है, जो सर्वसामान्य व्यक्ति जीवन भर की पूंजी इकट्ठा करके 40-50 लाख जो भी है उसको इकट्ठा करके कोई घर बुक कर लेता है, एडवांस पहला 10-20 लाख का कर देता है, और उसके बाद उसको लगता है 5 साल हो गए यार घर ही नहीं मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग जो है वो भी उसके कारण बढ़ा है,
0: और साथ ही टाइम लाइन आ जाने से लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि तब तक तो हमारा घर मिल ही जाएगा। जन सेवा से देश सेवा, आज के एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे व्यवस्था में बड़े बदलावों को लेकर, खासकर कानून और संस्थानों को लेकर। और आज की चर्चा से ये स्पष्ट हुआ कि किसी भी देश की प्रगति में कानूनों का आधुनिकीकरण, संस्थानों की मजबूती और प्रशासनिक सुधार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आज हमने शासन, अर्थव्यवस्था, न्याय व्यवस्था और संस्थागत बदलावों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की अपने दो बेहद खास मेहमानों के साथ, प्रफुल्ल केतकर पॉलिटिकल एनालिस्ट और आशीष कुमार पांडे एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 14वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, व्यवस्था में बड़े बदलाव, कानून और संस्थान। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट आशीष कुमार पांडे। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 800 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 9:45 हुए हैं, सुनिए फिल्म संगीत।

दिव्या कुमार और साथियों का गाया ये गीत फिल्म थी भाग मिल्खा भाग। प्रसून जोशी ने ये गीत लिखा, शंकर एहसान लॉय ने संगीत से सवारा। अगला गीत भूलभुलैया से के और साथियों का गाया ये गीत, शब्द रचना समीर की, संगीत प्रीतम का।

फिल्म संगीत का ये अगला गीत, फिल्म का नाम है अजब प्रेम की गजब कहानी। नीरज श्रीधर और सुजैन डोमेलो की आवाज़, इरशाद कामिल का गीत, प्रीतम का संगीत।

0: श्रोता सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजने को है जिले की चिट्ठी आकाशवाणी भोपाल से। अब से कुछ ही पलों बाद बने रहिए हमारे साथ। भोपाल केंद्र से लीजिए अब सुनिए बड़वानी जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बड़वानी जिले की चिट्ठी। आलेख शिवपाल सिंह सिसोदिया का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी जिले में इन दिनों बारिश का मौसम खत्म हो गया है। जिले में पर्याप्त मात्रा में बारिश न होने से जल स्रोत पूर्णतः भर नहीं पाए थे, जिससे आगामी दिनों में बोई जाने वाली रबी की गेहूं तथा चने की फसल में सिंचाई की समस्या सामने आ सकती है। पिछले दिनों विश्व रैबीज दिवस के अवसर पर जिला पशु चिकित्सालय द्वारा श्वान एवं बिल्लियों के लिए निःशुल्क एंटी रैबीज वैक्सीनेशन और स्वास्थ्य जाँच कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में पालतू पशुओं का टीकाकरण किया गया। वहीं पिछले दिनों नगर पालिका बड़वानी द्वारा स्वच्छता ही सेवा और सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत नगर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के उद्देश्य से एक विशेष जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान नपा अध्यक्ष अश्विनी चौहान, कलेक्टर बड़वानी जयति सिंह द्वारा नागरिकों को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गयी। वहीं जिले में विश्व हृदय रोग दिवस के अवसर पर बीते दिनों राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन जिला चिकित्सालय बड़वानी में किया गया। इस अवसर पर मोबाइल हेल्थ टीम के द्वारा स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्रों में जाकर 850 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई। जिले के

मुचावद में बीते दिनों 22वीं रात्रि चौपाल कार्यक्रम में कलेक्टर ने किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने किसानों को बेहतर उत्पादन और उचित मूल्य प्राप्त करने के लिए उन्नत तकनीकी अपनाए जाने का आह्वान किया। वहीं आज मध्य प्रदेश शासन की रोजगार उन्मुखी योजना के अंतर्गत ग्राम चाचरिया में युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन जिले में किया जा रहा है। जिला रोजगार कार्यालय उप संचालक TS डुडवे ने बताया कि इस मेले में 90 पदों पर निजी कंपनियों द्वारा भर्ती की जाएगी। वहीं बीते दिनों श्रवण एवं वाक बाधित दिव्यांग जनों को उनके अधिकारों, शासकीय योजनाओं और न्याय तक आसान पहुंच की जानकारी देने के उद्देश्य से जिला न्यायालय परिसर में राज्यव्यापी अनुगूंज से उद्घोष विशेष विधिक साक्षरता एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 65 दिव्यांगजन और उनके परिजन शामिल हुए। सेवा संकल्प अभियान के तहत बड़वानी जिले में 2 से 10 अक्टूबर तक सेवा मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जिला पंचायत CEO के अनुसार इस दौरान नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायतों में पौधरोपण, योग एवं ध्यान सत्र, साइबर एवं सड़क सुरक्षा जागरूकता, नशा मुक्त भारत जागरूकता, वीरगाथा एवं सैनिक सम्मान, शासकीय योजना जागरूकता के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। पिछले दिनों नगर पालिका परिषद बड़वानी के द्वारा स्वच्छता ही सेवा अभियान के अंतर्गत सफाई मित्रों और ड्राइवरों का सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष एवं पार्षदगण उपस्थित थे। वहीं जिले में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत बीते दिनों एक विशेष पोषण जागरूकता कार्यक्रम जिले की आंगनबाड़ियों में आयोजित किया गया। इस अवसर पर महिलाओं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा विभिन्न पौष्टिक खाद्य पदार्थों की प्रदर्शनी लगाकर महिलाओं को संतुलित आहार, हरी सब्जियों, अनाज, फलों और अंकुरित अनाज के महत्व की जानकारी दी गई। बड़वानी जिले में 4 अक्टूबर से मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के सहयोग से 2 दिवसीय कार्यक्रम खेती खेड़ों हरे नाम की लोक और जनजाति संस्कृति उत्सव आयोजित किया जा रहा है। खरीफ वर्ष उपार्जन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत समर्थन मूल्य पर धान, बाजरा, ज्वार विक्रय के लिए किसान पंजीयन की प्रक्रिया 15 सितंबर से 10 अक्टूबर तक संचालित की जा रही है। वहीं बीते दिनों 10 दिवसीय गणेश उत्सव का समापन हर्षोल्लास के साथ किया गया। इस अवसर पर बड़वानी जिले में पंडालों और घरों में गणेश प्रतिमाओं को स्थापित कर पूजा अर्चना और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं अनंत चतुर्दशी की रात को जिला मुख्यालय पर विभिन्न संदेश देती 40 झांकियों का कारवां भी निकाला गया। इन दिनों पितृपक्ष यानी 16 श्राद्ध पर्व चल रहा है। पितरों को तर्पण और श्रद्धा का पर्व जिले में परंपरागत तरीके से मनाया जा रहा है। श्राद्ध पक्ष में निमाण के अंचलों में लोक पर्व संजा भी परंपरागत और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। संजा पर्व पर कुमारी कन्याओं द्वारा प्रतिदिन शाम को इकट्ठा होकर मकानों के दीवारों पर गोबर से विभिन्न आकृतियों का निर्माण किया जाता है, जिसे निबाड़ी में छावड़ी माड़ना भी कहते हैं। वहीं आगामी दिनों में आने वाले नवरात्र पर्व के मद्देनजर जिले के सेंधवा के समीप स्थित बड़ी बीजासेन माता मंदिर में आयोजित कार्यक्रम और भक्तों की सुरक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्टर एवं SP बड़वानी द्वारा मंदिर पहुंचकर मंदिर समिति के सदस्यों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा आशा ग्राम ट्रस्ट बड़वानी में वृद्धजन सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में वृद्धजनों के स्वास्थ्य परीक्षण के साथ उनके अनुभव भी साझा किए जाएंगे। वहीं जिले की छात्रा कुमारी प्रतिज्ञा चौहान का चयन विभागीय राज्य स्तरीय हॉकी जूनियर प्रतियोगिता में अंडर 17 के लिए किया गया है। छात्रा प्रतिज्ञा इस प्रतियोगिता में संभागीय दल पश्चिम क्षेत्र की टीम की तरफ से खेलेंगी। बड़वानी जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी अन्य जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: बड़वानी जिले की चिट्ठी अभी आप सुन रहे थे। आलेख शिवपाल सिसोदिया का था, वाचन स्वर था अभिषेक कटियार का। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, लीजिए सुनिए।
1: मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 801 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। 10:05 हुए हैं, सुनिए गौरव गान की डेढ़ सदी। वंदे मातरम, गौरव गान की डेढ़ सदी।

श्रोताओं, आज हम वंदे मातरम गीत के 150वीं को मना रहे हैं। वंदे मातरम गीत जब बना तब परिस्थितियां अलग थी। देश को एक ललकार की जरूरत थी ताकि ब्रिटिशर्स के जुल्म खत्म हो और वो देश छोड़कर भाग जाएं, जो हुआ भी। अपनी मातृभूमि की वंदना थी ताकि देशवासियों को, जो उस समय अंग्रेजों के हाथों जुल्मों के को सहते सहते अपने ही देश की सुंदरता, अपने देश की छटा क्या ही देखते, उनकी आंखों में तो थी बस बेबसता,

जकड़न थी बेड़ियों की। धन धन से संपन्न हमारा देश, जिसे उसके नागरिकों से छीना जा रहा था और लूटा जा रहा था विदेशियों द्वारा। तब क्रांति की मशाल को अग्रसित करने ये गीत बना, ताकि देशवासियों में जज्बा अपने देशभक्ति का, और इसी जज्बे के फलस्वरूप उन्होंने अंग्रेजों को खदेड़ा भी। पर क्या अब ये गीत सफल बना रहे हैं हम? क्या अंग्रेजों के जाने के बाद हम अपने देश को संजो रहे हैं? क्या उसकी सुंदरता बरकरार रख रहे हैं? सुजलाम सफलाम अपने देश की नदियों को सुरक्षित रख रहे हैं हम? नैसर्गिक सुंदरता को, देश की आन बान शान को संरक्षित रख रहे हैं हम? कई क्वेश्चन मार्क इस बारे में है, कई कोशिशें हैं भी और नहीं भी। इस बारे में हम ज़रूर सोचें और कोशिश की अलग जगाएं, और फिर उच्च स्वर में गाएं वंदे मातरम गीत।

0: वंदे मातरम गौरव गान की 150वीं। अभी हम सुन रहे थे आकाशवाणी जबलपुर से। श्रोताओं, सुबह के 10:10 होने को हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से, जहां है विश्व दर्पण। आइए सुनते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। सऊदी अधिकारियों ने पायलट पर हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान इस्मत मच्छार को सच्चा नायक बताया। सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। भारत के पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते तक पहुंचने के प्रयासों के तहत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि जैस्मिन ग्रीर से मुलाकात की। जापान में एशियाई खेलों में पुरुषों की स्किप स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। अब समाचार विस्तार से। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान पर चाकू से हमला करने की कोशिश के आरोप में विमान के सह पायलट को

0: उनका इलाज चल रहा है। दूतावास ने कहा कि शुरुआती रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि उनकी हालत अभी स्थिर है। भारतीय दूतावास ने कहा कि वो कैप्टन के परिवार के संपर्क में हैं और सऊदी के अधिकारियों के समन्वय से हर संभव सहायता प्रदान कर रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इतने बड़े खतरे का सामना करते हुए और गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद कैप्टन स्मिथ मच्छार ने दूसरों की जान बचाने के लिए अटूट साहस दिखाया। प्रधानमंत्री ने उन्हें सच्चा नायक कहा और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैप्टन मच्छार को सच्चा नायक बताया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल हुई फ्लाई दुबई फ्लाइट की घटना के दौरान कैप्टन स्मिथ मच्छार की असाधारण हिम्मत और मुश्किल समय में सूझबूझ दिखाने के लिए उनकी तारीफ की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि श्री मच्छार ने गंभीर खतरे के बावजूद कई लोगों की जान बचाई और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने ऐसी हिम्मत दिखाई जिससे कई लोगों की जान बचाई सकी। प्रवक्ता ने बताया कि कैप्टन मच्छार का इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि देश गर्व के साथ उनके और उनके परिवार के साथ खड़ा है। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि यह भारत की खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज संसाधन सुरक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नीलामी में अंडमान सागर क्षेत्र के 2 अपतटीय खनिज भंडार शामिल हैं जिन्हें समग्र लाइसेंस प्रदान करने के लिए पेश किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इससे व्यवस्थित अन्वेषण को प्रोत्साहन मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा और अपतटीय खनिज अन्वेषण तथा विकास के लिए उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि तकनीकी उन्नति, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के संदर्भ में अपतटीय खनिज संसाधन महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि जैस्मिन ग्रीड से मुलाकात की। ये मुलाकात भारत और अमरीका द्वारा संतुलित और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते तक पहुंचने के प्रयासों का हिस्सा है। अमरीका यात्रा से पहले वाणिज्य मंत्रालय ने कहा था कि श्री गोयल द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए श्री ग्रीर से चर्चा करेंगे। दोनों नेताओं की मुलाकात उस समय हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा के लिए टेलीफोन पर बातचीत की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमेरिकी सैनिकों की अंतिम टुकड़ी इराक से वापस लौट रही है जिससे ऑपरेशन इनहेरेंट रिजॉल्व औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा। मीडिया को संबोधित करते हुए श्री ट्रंप ने इस वापसी को ISIS पर निर्णायक जीत बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ इराक की भी जीत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इसके साथ इराक में 2 दशकों से अधिक समय से चली आ रही अमेरिका की सैन्य भागीदारी का अंत हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: 2024 में बिडेन प्रशासन के दौरान अमेरिका और इराक के बीच सैनिकों की वापसी योजना पर बातचीत हुई थी जिसकी अंतिम समय सीमा 30 सितंबर तय की गई थी। ट्रंप प्रशासन ने समझौते को लागू करना जारी रखा। अमेरिकी सैनिक 2003 में अमेरिका के आक्रमण के बाद शुरू हुई 8 साल की उपस्थिति के बाद पहली बार 2011 में इराक से चले गए थे। ISIS द्वारा इराक और सीरिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने और बगदाद के मार्गों को खतरा पैदा करने के बाद वे 2014 में वापस लौटे थे। हालांकि 2019 में अमरीकी नेतृत्व वाले अभियान ने ISIS को सैन्य रूप से हरा दिया था, लेकिन समूह के पुनरुत्थान को रोकने में मदद करने के लिए अमरीकी सेना इराक में बनी रही। समाचार कक्ष से विकास नापा।
1: अमेरिका के रक्षा विभाग ने फोर्ट्रेस अमेरिका नामक पहल शुरू की है। अमेरिका के रक्षा ढांचों को साइबर हमलों, तोड़फोड़ और भू राजनीतिक व्यवधानों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय बीमा योजना के रूप में शुरू किया गया है। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि फेडरल ऑपरेशंस फॉर रेजिलियंस ट्रूप रिसोर्सेज एनर्जी सप्लाई एंड सर्वाइबिलिटी फ्रूटरीज नामक यह पहल घरेलू सैन्य प्रतिष्ठानों को बाहरी खतरों

0: और राष्ट्रीय आपात स्थितियों के प्रति मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई है। रूस ने कल यूक्रेन के ऊर्जा ग्रिड को निशाना बनाते हुए व्यापक हवाई अभियान शुरू किया। इस दौरान राजधानी कीव और कई अन्य क्षेत्रों में बिजली सुविधाओं तथा महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमले किए गए। ये हमले पिछले कई महीनों में यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर सबसे बड़ा संयुक्त हमला बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: यूक्रेन के अधिकारियों के अनुसार रूस के इन हमलों में 7 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले कई दिनों तक ड्रोन हमलों में तेजी देखी गई थी, जिनमें मुख्य रूप से राजधानी कीव को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की सरकारी बिजली ग्रिड संचालन कंपनी उर्गनॉर्गो ने बताया कि कीव और आसपास के 3 क्षेत्रों में आपातकालीन बिजली कटौती लागू की गई है। इससे पहले भी रूस के हमलों से यूक्रेन की बिजली और हीटिंग व्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा था। उस दौरान कम तापमान के बीच लाखों यूक्रेन वासियों को लंबे समय तक बिजली और अन्य आवश्यक सेवाओं में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। विश्व दर्पण के लिए अमीशा।
0: कुवैत में भारतीय दूतावास ने इंडिया कुवैत मीडिया कनेक्ट की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य कुवैत के मीडिया के साथ भारत के संबंध और बातचीत को बढ़ाना है। इस पहल का विषय है साझेदारी, विचार और संभावनाएं। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। भारत ने एशियाई खेलों में नौकायान के क्षेत्र में अपना पहला पदक जीता है। मनु फ्रांसिसी और प्रिंस कुरिसिंकल नोबेल ने आज पुरुषों की स्किफ स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। हाल के दिनों में हुई 9 रेसों में फ्रांसिस और नोबेल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए कुल 23 अंक अर्जित किए और एक रेस जीतकर रजत पदक अपने नाम किया। पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज पाकिस्तान से होगा। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सऊदी अधिकारियों ने पायलट पर हमला करने और दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान को दुर्घटनाग्रस्त करने के प्रयास के आरोप में ओमान के सह पायलट को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 174 लोगों की जान बचाने वाले कप्तान स्मिथ मच्छार को सच्चा नायक बताया। सरकार आज अपतटीय खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू करेगी। भारत के पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते तक पहुंचने के प्रयासों के तहत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि जैस्मिन ग्रीर से मुलाकात की। जापान में एशियाई खेलों में पुरुषों के स्किप स्पर्धा में भारत ने रजत पदक जीता और भारत ने गुवाहाटी में खेले गए दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराकर 2-0 की अजेय बढ़त हासिल की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 374.5 मीटर यानी 800 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये जबलपुर केंद्र है। समय हो चला है फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम सारंगा का।

जबरिया जोड़ी इस फिल्म का ये गीत था, यासिर देसाई की आवाज़ और साथ ही थे अल्तमश फरीदी। रश्मि विराग की जोड़ी ने इस गीत को लिखा था और तनिष्क बागची ने संगीत निर्देशन दिया था और पसंद किया था आप सभी ने। महाराजा रेडियो श्रोता संघ के सदस्य जिला खंडवाल ग्राम लाहौरी से इन्होंने चिट्ठी भेजी है। लिखने वाले हैं राजेश कुमार धनजे, राजुल कुमार, विशाल कुमार, शीला और गायत्री, खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा, नीतू वैद, और इन्होंने ये भेजा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साहब राही, मेहराज जहां ने आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, हमसे है मुकाबला फिल्म से, मानो और स्वर्णलता की आवाज़, पीके मिश्रा के बोल, एआर रहमान का संगीत और पसंद किया आप सभी ने। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइनी शर्मा, निवान शर्मा। एरोड्रम थाने के पास वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र रघुवंशी, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की, स्वाति प्रयाग, मालती चौधरी, गणेश, कार्तिक, सजना, परी और नारायण खर्चे।

गौतम नगर जिला नांदेड़ से आरती जोंदले, प्रभाकर जोंदले, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राशि, श्रीमती शीतल छत्तीसगढ़ से, और छत्तीसगढ़ के दंतरिंगी से भागवत वर्मा, लिवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू। आप सभी ने सुनना चाहा है मोहरा फिल्म का गीत। पंकज उदास और साधना सरगम ने इस गीत को आवाज़ दी, इंदिवर ने लिखा और विजू शाह ने संगीतबद्ध किया।

फिल्म दर्द का गीत, लता मंगेशकर की आवाज़, नक्श लियालपुरी की कलम से निकला गीत और खयाम के संगीत में डूबा ये गीत जिसे सुनना चाहा है आप सभी ने, बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन से विनोद मूर्त, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन, दीक्षा, कुश मूर्त, नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से, अकरम हुसैन, वसीम अकरम, आरिज, शमीम, ममता रानी, बच्चू शेख, चीना, पूनम कुमारी, अमन, नदीम, रुबीना, मोहम्मद आसिफ खान, बेगम निकहत परवीन, नूर महल महसौल से हुमेरा नाज, सुमेरा नाज, अभिहा नाज, अरहान बाबू, हमजा बाबू और मुजम्मिल बाबू।

फरमाइशी फिल्म संगीत के कार्यक्रम सारंगा में ये था फिल्म किनारा का गीत, लता मंगेशकर और भूपिंदर की आवाज से सजा, गुलजार ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन ने संगीत दिया था। अगला गीत वन डे जस्टिस डिलीवर्ड फिल्म का लिया हुआ, निमिषा और ऋषि सिंह का गाया हुआ, आलोकिक राही ने इस गीत को लिखा है और ऋषि सिंह ने संगीतबद्ध किया। इन दोनों फिल्मों के गीतों की मिलीजुली फरमाइश कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा, अमित कुमार, हैप्पी राय, दुबिया निवादा, गाजीपुर से प्रतीक, श्रीमती रोशनी प्रांजल, शेरपुर कला, गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय, सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा।

फिल्म अंधाधुंध का ये गीत अमित त्रिवेदी ने गाया है और साथ ही संगीतबद्ध किया है जयदीप साहनी का लिखा ये गीत है और पसंद किया आप सभी ने। कवर कॉलोनी बड़वा से प्रवीण शिमाली, मीना शिमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनूराज शिमाली, जिला पजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसोलिया।

मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत है किशोर कुमार का गाया हुआ गीत, मजरू सुल्तानपुरी का, संगीत आर डी बर्मन का और पसंद मलोट कैंप से सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह, लखविंदर संधू, महावीर, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी, बेंडी से राजेश सोनी, कंचन गायत्री, वैष्णवी, चंचल, अर्जुन और धीरज।

फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम सारंगा आप सुन रहे थे आकाशवाणी जबलपुर से। 10:58 होने को हैं, कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे इस घंटे की खास खबरें आकाशवाणी

अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज आरसीवीपी नरोहना प्रशासन अकादमी भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 500 से अधिक वरिष्ठ जन और गणमान्य नागरिक शामिल होंगे। वहीं प्रदेश भर में 100 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को शतायु सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। पर्यावरण और जीवन शैली विषय पर आज भोपाल स्थित विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में जलवायु, पर्यावरण तथा राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में राज्यों की भूमिका पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार, नागरिक समाज, अकादमिक जगत, निजी क्षेत्र, युवाओं और समुदायों की भागीदारी पर भी चर्चा की जाएगी। गांधी जयंती के अवसर पर प्रदेश भर में कल से 10 अक्टूबर तक सेवा सेतु अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के दौरान प्रशासनिक दलों द्वारा ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित कर पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। प्रदेश से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई अगले 2 से 3 दिनों में हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक नमी के प्रभाव से कुछ इलाकों में बूंदाबांदी और गरज चमक की स्थिति बन सकती है, लेकिन प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। जापान में चल रहे एशियाई खेलों में आज पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से है। वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम पहले ही चीन के खिलाफ स्वर्ण पदक के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। क्रिकेट के सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ चुनौती पेश करेगी। और एशियाई खेलों में भारत के कुल पदकों की संख्या 62 हो गई है, जिसमें 10 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदक शामिल हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है, हमारे अगले प्रसारण की कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम को बरकरार करते हैं और सुनते हैं दिल तो पागल है फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत उत्तम सिंह का है।

देव कोहली का लिखा गीत राम लक्ष्मण के संगीत निर्देशन में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं हम आपके हैं कौन फिल्म से। इसे अपनी आवाज़ दी है लता मंगेशकर और एस पी बालसुब्रमण्यम ने।

हम आपके हैं कौन फिल्म के इस गीत के साथ ही श्रोताओं, फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। श्रोताओं, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में नई दिल्ली में आयोजित संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह का सीधा प्रसारण जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: यह आकाशवाणी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित होने वाले संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के शताब्दी समारोह में भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री सभा को संबोधित भी करेंगे। आपको बता दें, यह कार्यक्रम उन साल भर चलने वाले समारोह का समापन होगा जो पिछले 1 अक्टूबर से आरंभ हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री यूपीएससी शताब्दी स्मारक सिक्का, एक स्मारक डाक टिकट और भारत में यूपीएससी और लोक सेवा आयोगों की नीतियों को आकार देने वाले 100 ऐतिहासिक निर्णय नामक पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, भारत सरकार के विशिष्ट अधिकारी, शिक्षाविद और काफी लोग हिस्सा ले रहे हैं। इस सब का विवरण देने के लिए मैं हूं शोएसियार खान, मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
1: नमस्कार एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल ब्रॉडकास्ट व्हिच इज मार्किंग द सेंटिनरी ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी दैट अपॉइंट्स इंडिया सिविल सर्वेंट्स। एंड नाउ श्री अजय कुमार, चेयरमैन यूपीएससी, इज एड्रेसिंग।
2: माननीय कार्मिक मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, माननीय कैबिनेट सचिव श्री सोमनाथन, संघ लोक सेवा आयोग के माननीय सदस्यगण, राज्य लोक सेवा आयोगों के सम्मान्य अध्यक्ष एवं सदस्यगण, संघ लोक सेवा आयोग के सम्मानित पूर्व अध्यक्ष और सदस्यगण, वर्तमान और सेवानिवृत्त सम्मान्य अधिकारीगण,

0: हैं जो दशकों से राष्ट्र के निर्माण एवं सुरक्षा में लगे रहे हैं और आने वाले समय में विकसित भारत के सपने को साकार करने की जिम्मेवारी भी इनके कंधों पर रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज हम केवल आयोग के 100 वर्षों की का जश्न नहीं मना रहे हैं बल्कि लोक विश्वास के 100 वर्षों का महोत्सव भी मना रहे हैं। आजादी के बाद पीढ़ियों से देश के युवा देश सेवा के सपने लेकर आयोग के द्वार पर आते रहे हैं और आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि उन्हें केवल और केवल उनकी योग्यता की कसौटी पर ही कसा जाए, कोई भेदभाव नहीं, पूरी निष्पक्षता से उनका चयन हो। आयोग पर विश्वास केवल भर्ती प्रक्रिया तक सीमित नहीं है, ये भारत के संविधान द्वारा आयोग को सौंपी गई समस्त जिम्मेवारियों में झलकता है, चाहे वो अधिकारियों की नियुक्ति हो, पदोन्नति हो, डेपुटेशन या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का मामला हो। आयोग ये भली भांति समझता है कि विश्वास बनने में वर्षों लग जाते हैं और उसे बनाए रखना उससे भी बड़ी साधना है, इसलिए आयोग के लिए हर कार्य केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक नैतिक दायित्व है जिसे हम प्रतिबद्धता, प्रामाणिकता और सत्यनिष्ठा से निभाने का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आयोग हर साल लगभग 250 भर्ती प्रक्रियाएं आयोजित करता है। इसका अर्थ है लगभग हर वर्किंग डे पर आयोग कोई ना कोई नया परिणाम घोषित करता है। सन 2013 में हमारी परीक्षाएं केवल 45 शहरों में आयोजित होती थी, आज देश के 86 शहरों में होती हैं। आज सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों में लगभग 30% महिलाएं हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से डुप्लीकेट एप्लीकेशंस की पहचान, उम्मीदवारों द्वारा अपलोड किए गए करोड़ों दस्तावेजों का OCR द्वारा रियल टाइम इवैल्यूएशन और परीक्षा केंद्रों पर लाखों उम्मीदवारों का फेस ऑथेंटिकेशन कुछ ऐसे हालिया उपाय हैं जिन्हें आयोग ने निष्पक्षता और सुरक्षा को और सुदृढ़ बनाने के लिए अपनाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब हम शताब्दी का उत्सव मना रहे हैं तो हम कृतज्ञता पूर्वक उन सभी का भी स्मरण करते हैं जिनकी साधना से इस संस्थान को यह गरिमा मिली है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने इस शताब्दी समारोह को हम सभी के लिए और भी स्मरणीय बना दिया है। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और समस्त सम्मानित अतिथियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
1: UPSC के अध्यक्ष अजय कुमार जी,
2: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से विनम्र निवेदन, अपने संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। माननीय
1: डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहां उपस्थित लोगों को संबोधित करेंगे।
3: परमादरणीय प्रधानमंत्री जी, इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामय उपस्थिति इस बात का प्रतीक है कि आज के दिन का क्या महत्व है, क्या अहमियत है, क्या इतिहास है। आज के दिन हम एक ऐसी संस्था के 100 साल मना रहे हैं जिसका जन्म हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले हुआ था। एंड देयरफॉर लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज एन इंस्टीट्यूशन विच कैरीज द लेगेसी ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एंड द फ्लेवर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। 100 वर्षों के इस गौरवमय यात्रा में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने इस विशाल देश में अनेकों अनगिनत छिपी हुई विभूतियों को तलाशा, खोजा, फिर तराशा और तराश कर इस काबिल बनाया कि वो देश की प्रशासनिक जिम्मेवारियां निभा सके। एंड देयरफॉर UPSC ट्रूली परसोनिफाइज सरदार पटेल्स विजन ऑफ स्ट्रांग, पावरफुल एंड प्रोफेशनल सिविल सर्विसेज, द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि 100 साल के इस लंबे सफर में

0: पिछले 10-12 साल एक खास मकाम रखते हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा लाए गए गवर्नेंस रिफॉर्म्स के चलते इन 12-13 सालों में यूपीएससी ने कई आयाम हासिल किए, कई कीर्तिमान स्थापित किए। नतीजे के तौर पर जहां यूपीएससी के द्वारा होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई, वहीं साथ ही साथ नियुक्ति प्रणाली में पारदर्शिता में इजाफा हुआ और लोगों का भरोसा भी बढ़ा। यदि बात करें संख्या की, तो यूपीए के 10 साल के कार्यकाल में यूपीएससी द्वारा की गई नियुक्तियों की संख्या रही 45,431 और इसकी तुलना में एनडीए के पहले 10 वर्षों में ये संख्या बढ़ करके हो गई 50,906 और अगर हिसाब लगाया जाए 12 साल का तो ये आंकड़ा 65,000 पार कर जाता है। अनेकों रिफॉर्म्स लाए गए, जैसे यूनिफाइड वन टाइम रजिस्ट्रेशन इंटेग्रेटेड विद आधार एंड डिजी लॉकर, जैसे दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए सेंटर ऑफ चॉइस, जैसे प्रोविजनल आंसर की ऑन द वेबसाइट और प्रतिभा सेतु सिविल सर्विसेज एग्जाम के वो उम्मीदवार जो आखिरी चरण में किसी कारण असफल रह गए उनके लिए विकल्पित जॉब ऑप्शंस, और अभी हाल ही में प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट। आज यूपीएससी एक रोल मॉडल बन चुका है देश विदेश की हर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए। आज दुनिया भर से अनेकों मुल्कों से प्रतिनिधि मंडल यहां आकर के यूपीएससी की नियुक्ति प्रणाली का अध्ययन कर रहे हैं। आज यूपीएससी एक बेंचमार्क है, एक यार्डस्टिक है, एक मापदंड है जिसके ऊपर हर एक रिक्रूटमेंट एजेंसी पूरा उतरना चाहती है। और अंत में केवल इतना कहना है कि प्रधानमंत्री जी, आपने हमारे सामने सन 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की रचयिता है यूपीएससी। यूपीएससी इज इंडीड द आर्किटेक्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रूट टू डेस्टिनेशन 2047। विरासत और विकास का ये खूबसूरत मिश्रण इसी तरह बना रहे, इसी दुआ के साथ, इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।
1: That was Dr. Jitendra Singh,
2: आपके the
1: Minister of State in charge of the Department of Personnel, Training, Pensions and Grievances. And the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, is the guest of honor at the centenary celebrations of the Union Public Service Commission. And a short film on UPSC.
3: Karodon sapne aur ek atoot kasauti. Merit. Saal dar saal. Jan seva ke liye 200 se adhik parikshaon ke madhyam se सबसे योग्य प्रतिभा को चुनना, यूपीएससी द्वारा सटीकता का राष्ट्रीय स्तर पर अभ्यास है। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसमें भाग लेती है भारत की विविधता, 48 विषय, 22 संवैधानिक भाषाएं, लाखों परीक्षक और अंत में सिर्फ एक मेरिट लिस्ट। इतनी विविधता को एक ही राष्ट्रीय कसौटी पर लाना, यही यूपीएससी की उपलब्धि है। 100 वर्षों में परीक्षा का आकार बढ़ा तो अवसर का दायरा भी। 1957-58 में लगभग 1,000 अनुसूचित जाति कैंडिडेट से 450 गुना बढ़ना, 100 से भी कम अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट से आज 1,500 गुना बढ़ना, दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए सेंटर ऑफ चॉइस, अतिरिक्त समय, स्क्राइब की सहायता मिलना, बदलते भारत के साथ महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी, 1952 में 3 से बढ़कर 2025 में लगभग 300 हुई, जिनमें टॉप 25 में 11 महिलाएं शामिल हैं, लाखों कैंडिडेट्स, हजारों परीक्षा केंद्र, निष्पक्षता की रक्षा कैसे हो? यूपीएससी ने चुनी न महंगी मशीन है, न भारी ढांचा, बस एक स्मार्टफोन। 2025 से सभी 2072 केंद्रों पर रियल टाइम फेस ऑथेंटिकेशन, 7 सेकंड में पहचान, हर मिनट 12,000 सत्यापन, AI से एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स की जांच, प्रतिभा सेतु अंतिम सूची से चूक गए प्रतिभाशाली कैंडिडेट्स को देता है एक और अवसर। तभी तो सर्वोच्च अदालत से लेकर लाखों युवाओं का UPSC पर है अटूट भरोसा।
2: UPSC and its conduct is always top notch. There is no problem in conducting of papers. There is no rescheduling of papers, no cancellation of papers. I think that's almost the best body you can get.
4: बहुत ही ज़्यादा fair selection होता है कि आप आओगे, आप अपनी तैयारी करके आओ और आपको मौका दिया जाएगा और आपका evaluation होगा।
3: 100 वर्षों में भारत बदला, UPSC भी बदला, लेकिन लक्ष्य वही है। प्रतिभा की तलाश, निष्पक्षता का संकल्प और अडिग रहकर हर कर्तव्य का पालन।
5: कर्तव्य हमारे लिए विकल्प नहीं, संकल्प है। ये समय तेजी से बदलाव का समय है। आपकी भूमिका भी आपके अधिकारों से नहीं, आपके कर्तव्य और उनके पालन से तय होगी।
3: UPSC 100 years of selecting India.
6: संघ लोक सेवायोग के 100 वर्षों की यात्रा को दिखाती हुई है फिल्म का प्रदर्शन किया गया भारत मंडप
7: और देशवासियों की सेवा नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ का गौरव पाता है तभी गुलामी की मानसिकता को त्याग कर कर्तव्य पथ कर्तव्य का बोध कराता है और हर
6: भारत मंडप में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह का आयोजन किया जा रहा है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री
7: शताब्दी स्मारक टिकट
6: हिस्सा ले रहे हैं।
7: शताब्दी स्मारक सिक्का एवं लोक सेवा
6: शताब्दी संबंधित टिकट और सिक्का माननीय प्रधानमंत्री द्वारा
7: का विमोचन जारी किया जा रहा है।
1: And the Honorable Prime Minister will now release a commemorative postage stamp, a commemorative coin, and a publication titled The 100 Landmark Judgments. And the postage stamp is priced at 5 rupees and it says 100 years of Union Public Service Commission. It's indeed a collector's item, and the postage stamp and cover is a special commemorative postage stamp and cover that is available as a collector's item. And this also, a beautiful coin which depicts the UPSC building from 1926 to 2026, and it is valued at 100 rupees. And the publication 100 Landmark Judgments, the commemorative postage stamp, the commemorative coin and 100 Landmark Judgments publication have been released by the Honorable Prime Minister.
6: Maranee Pradhamantri ne smarak ticket aur sikka jari kiya. आपको बता दें
7: 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का शंखनाद
6: UPSC के 100 वर्ष के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया रहा है। अब समारोह के उद्बोधन के लिए
1: अपने आशीर्वाद। एंड नाउ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विल एड्रेस द गैदरिंग हियर टू मार्क 100 इयर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी,
5: केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, पीके मिश्रा जी, टीवी सोमनाथन जी, अजय कुमार जी, UPSC के सभी माननीय सदस्यगण, अलग अलग राज्यों से आए सभी PSC के चेयरमैन, अन्य महानुभाव, देवी और सज्जनों, मैं आज की इस बात करने से पहले कल जो एक घटना घटी है

और भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया, और जैसे आज इज़राइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है। आज मेरी उनके पिता भूपेंद्र भाई, उनकी माता गीता बहन और पत्नी बहन सोनल से भी बातचीत हुई। उनकी सारवार चल रही है, आज पूरी दुनिया उन पर गर्व कर रही है। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि हम सब स्मिथ के दीर्घायु के लिए, स्मिथ के उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें और भारत के गौरव के बढ़ाने वाले भाई स्मिथ का अभिनंदन करें। साथियों, आज का ये दिन यूपीएससी के 100 वर्षों के उत्सव के साथ ही एक विरासत का भी उत्सव है। ये उत्सव उस आकांक्षा का है जिसे हर वर्ष लाखों लाख युवा उसे जीते हैं। ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, टेक्नोलॉजी बदली, सिलेबस बदले, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। और ये आप सभी की बहुत बड़ी पूंजी है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर अभी यहीं स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है। मैं 100 वर्ष की इस यात्रा से जुड़े सभी महानुभावों का वंदन करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अभी मैं एक छोटी सी गैलरी बनाई है, उसका निरीक्षण कर रहा था, और आप सबसे भी कहूंगा कि 10-15 मिनट लगेंगे, जरूर देखें। और मैंने उसमें 75 साल के कार्यक्रम का भी एक चित्र देखा जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल सुरेंद्रनाथ दिखते हैं, आज 90 साल की आयु में हमारे बीच मौजूद है। साथियों, ऐसे कितने ही लोग हैं जिन्होंने इस यात्रा को विश्वास में बदला है, समयाकुल परिवर्तन किए हैं और संस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं।
वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। जब मैं गैलरी देख रहा था तो 1920 में सुभाष चंद्र बोस ने भी इसी प्रक्रिया से जब गुजरे थे उसकी सारी जानकारी वहां है। और मेरा इस बात पर ध्यान गया कि उस समय अंग्रेजों की हुकूमत थी लेकिन संस्कृत का पेपर हुआ करता था और सुभाष बाबू ने संस्कृत में पेपर लिखा है। साथियों, आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भी नमन करूंगा। आजादी के बाद उनके सामने केवल एक देश को आजाद रखने की चुनौती नहीं थी, उनके सामने एक राष्ट्र को चलाने की चुनौती भी थी। राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए जिस स्टील फ्रेम की जरूरत थी वो स्टील फ्रेम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया। उन्होंने इस संस्था को आजाद भारत का एक प्रमुख स्तंभ बनाया, इसे सशक्त किया। साथियों, 1926 में जब इस संस्थान की नींव रखी गई थी तब उस समय की प्राथमिकताएं अलग थी। उस समय व्यवस्था का फोकस और उसका समर्पण दोनों ही ब्रिटिश राज के प्रति था। देश आजाद हुआ तो आजाद भारत के सपने और भारत की व्यवस्था ये फोकस में रहे, केंद्र में रहे। बीते दशकों में यूपीएससी ने अपने दायित्वों को बेहतरीन तरीके से निभाया है और इस बारे में यहां मन से भी काफी बातें हुई हैं और इसलिए मैं न उसका पुनरावर्तन करना चाहता हूं न ही उसके विस्तार में जाना चाहता हूं। इतिहास से आगे बढ़कर अब हमारे सामने भारत का भविष्य इंतजार कर रहा है। 21वीं सदी का एक क्वार्टर 25 साल बीत चुके हैं। आने वाले 20-25 साल भारत के लिए, भारत के हर व्यक्ति, भारत की हर संस्था के लिए बहुत अहम है। इसलिए आज मैं अपनी चर्चा का फोकस इसी दिशा में रखूंगा। साथियों, विकसित भारत के लिए अब जिस तरह की गवर्नेंस देश को चाहिए उसका बहुत बड़ा माध्यम यूपीएससी और राज्यों के चयन आयोग भी हैं। आज आप जिन युवाओं की भर्ती कर रहे हैं वो विकसित भारत के निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे और वही विकसित भारत के सबसे बड़े बेनिफिशियरी भी होने वाले हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमें दो कसौटियों को हमेशा याद रखना है। पहली कसौटी है नेशन फर्स्ट और दूसरी कसौटी है सिटीजन फर्स्ट। यही दो कसौटियां हैं जिन पर हर सिलेक्शन को कसा जाना है और जब इस भाव से कैंडिडेट को परखा जाएगा, इस भाव से भरे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा तो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति
उतनी ही सहज हो जाएगी, आसान हो जाएगी। साथियों, 2047 का भारत आज के भारत से बहुत अलग होगा। भारत आज के मुकाबले और अधिक अर्बन होगा, गांव और शहरों का अंतर कम होगा और हमारे नागरिकों, खासकर युवाओं के एस्पिरेशंस और एक्सपेक्टेशंस कहीं ज्यादा बड़ी होगी। आज ही इसका बदलाव दिखाई दे रहा है। इसलिए आज सवाल सिर्फ सर्विस डिलीवरी का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या पब्लिक सर्विसेज आज की इंस्टेंट डिलीवरी वाली दुनिया की गति उसको पकड़ पा रहे हैं क्या, उस हिसाब से चल पा रहे हैं क्या। आज नागरिक किसी सर्विस के लिए हफ्तों या महीनों का इंतजार नहीं करना चाहता। जब एआई हजारों डॉक्यूमेंट्स को कुछ ही क्षणों में प्रोसेस कर सकता है, जब सरकार के पास रियल टाइम डाटा उपलब्ध है, तो नागरिक तेजी से समाधान चाहता है। यही बदलती हुई सोच हमारी सिविल सर्विसेज से भी नए बदलाव की मांग करती है। इसलिए हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा। हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं, पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो। इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे कि वह युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है। क्योंकि जब मोटिवेशन सही होगा तो बदलती जन आकांक्षाओं के साथ चलना भी आसान होगा, ढलना भी आसान होगा। साथियों, आप में से काफी लोग इस बात से परिचित है कि मैं जब ट्रेनी ऑफिसर से मिलता हूं तो उनसे कहता हूं कि वे लिखकर रखें प्रारंभ में ही, और खुद लिख करके उसको रखे, वे सिविल सर्विस में क्यों आए हैं। क्योंकि समय के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, नई चुनौतियां आती हैं, ऐसे समय में वही छोटा सा नोट उन्हें उनके मूल उद्देश्य की याद दिलाता है। यह उनके लिए एक सेल्फ अप्रेजल टूल भी बन जाता है। यूपीएससी और राज्यों के आयोग भी कुछ ऐसी व्यवस्था को विकसित करने के बारे में विचार कर सकते हैं। साथियों, हमने अतीत का वो दौर देखा है जब माना जाता था कि सरकार ही माई बाप है, लेकिन आज ये दौर है जिसमें हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। यानी देश का नागरिक हमारे लिए किसी देव से कम नहीं है। हमारे लिए नागरिक की सेवा सर्वोपरि है। इसलिए साथियों, आज 21वीं सदी का भारत
एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका मूल सिद्धांत है प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस। प्रो पीपल यानी सरकार की सुविधा को देखते हुए नहीं, बल्कि नागरिक के हितों को सर्वोपरि रखते हुए काम करना। प्रोएक्टिव यानी जब समस्या आए तब एक्शन के बजाय समस्या को पहले ही एंटीसिपेट करके उसके समाधान तैयार हो। गुड गवर्नेंस यानी सरकार का अभाव भी ना हो, दबाव भी ना हो और अनावश्यक प्रभाव भी ना हो। राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य के स्तर पर दोनों ही जगह हमें अपने सिलेक्शन प्रोसेस को इसी स्पिरिट के हिसाब से डिजाइन करना चाहिए। हमें प्रो पीपल प्रोएक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो देश की आवश्यकताओं को समझे, जो कानून का पालन कराए, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है। साथियों, आज जिस तेजी से युग बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, वो हम सब देख रहे हैं। इसके बाद जो आने वाला समय है उसमें नई तरह की चुनौतियां समाज के सामने आने जा रही है। एआई को लेकर इस समय विश्व में जो चर्चा छिड़ी हुई है उससे हम सब परिचित है। ऐसे में हमारे सिविल सर्वेंट्स भी अलग तरह की परिस्थितियों में काम करेंगे। इंफॉर्मेशन वॉर की स्थिति होगी, डीपफेक होंगे, एल्गोरिथमिक बायस के चैलेंज होंगे।

0: अब उसको और विस्तार दे करके और अधिक प्रोडक्टिव बनाने के लिए और अधिक नए विचारों से भरने के लिए भी उसके रूप रंग व्यवस्था को कैसे नया आयाम दिया जाए उस पर जरूर आप सोचते होंगे। ऐसे प्रयासों से अलग अलग संस्थानों की बेस्ट प्रैक्टिसेस साझा होती है, लेकिन साथ ही इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को भी स्टडी करना चाहिए। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपने प्रोसेस और प्रोसीजर्स की एफिशिएंसी ये कैसे बढ़े, इस पर भी फोकस चर्चा होनी चाहिए। क्लोज्ड लर्निंग के इस प्रयास से यूपीएससी को भी फायदा होगा और हर राज्य के चुनाव चयन आयोग को भी जरूर लाभ होगा। हमें प्रोसेस और प्रोसीड्यूरल के मानकों को स्टैंडर्डाइज करने पर भी विचार करने की आवश्यकता है। इससे युवाओं को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, एक और विषय यूपीएससी और राज्यों के चयन आयोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग का भी है। ये काम भी निरंतर होते रहना चाहिए। मिशन कर्मयोगी के तहत जो आईगॉट प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसका उपयोग हमारी इन अंदरूनी व्यवस्थाओं के लिए भी, हमारे साथ काम करने वाली टीम के कैपेबिलिटी के लिए भी इन सारे प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया जा सकता है। साथियों, आप सभी को हमेशा याद रखना है कि आपका काम युवा शक्ति के भविष्य से जुड़ा है, यानी युवा शक्ति से राष्ट्र शक्ति के निर्माण का जो मिशन है आप उसका एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। और बीते वर्षों में आपने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई भी है। जब यूपीएससी का गठन हुआ था तब बड़े शहरों, समर्थ परिवारों और बड़े संस्थानों से पढ़े युवाओं को अवसरों का लाभ अधिक मिलता था, लेकिन आज गांव और कस्बों के युवा भी पब्लिक सर्विस में पहुंच रहे हैं। हमारी बेटियों की भागीदारी भी लगातार बढ़ रही है। 1952 में सिविल सर्विसेज में विमेन कैंडिडेट की संख्या सिर्फ 3% थी, 3%। आज यह 30%, 30% से अधिक हो चुकी है। और यूपीएससी के पूरे इतिहास में 4 विमेन चेयरपर्सन रही है पूरे यूपीएससी के इतिहास में। ताली बजने का समय अब आएगा। पूरे यूपीएससी की हिस्ट्री में 4, उसमें से 3 2014 के बाद बनी है। ये बदलाव केवल आंकड़े नहीं है, ये बताते हैं कि देश में अवसरों का दायरा कितना बढ़ा है। साथियों, 1976 में जब यूपीएससी को 50 साल हुए थे, उस समय की तुलना में परीक्षा देने वालों की संख्या में 45 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है, 44.5 टाइम। यानी आज हमारे सामने टैलेंट का एक बहुत बड़ा पूल है। ये देश के लिए बहुत गर्व की बात है। अब हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है, क्योंकि जब इतना बड़ा टैलेंट पूल हो, पूरी दुनिया जिस पर ईर्ष्या करती है, जब सामने इतना बड़ा टैलेंट पूल है तो आप सिर्फ एक कैंडिडेट को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप ऐसे व्यक्ति का चयन कर रहे हैं जो आगे चलकर गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। ग्राउंड लेवल पर लोग उसी को गवर्नमेंट मानेंगे। इसलिए आप सभी पर सही व्यक्ति के चयन का बहुत बड़ा दायित्व है। साथियों, यूपीएससी ने अपने पहले 100 साल में अपनी विश्वसनीयता को निरंतर मजबूत किया है। अब इस संस्था को अपनी दूसरी सदी में नई संभावनाओं, नई चुनौतियों के हिसाब से विश्वसनीयता को और समृद्ध कर रहा है। जो वैल्यूज आज तक हमारी ताकत रही है उन्हें बनाए रखते हुए भविष्य के अनुरूप अपग्रेड भी करना है। यूपीएससी की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, योग्यता, गोपनीयता और निष्पक्ष प्रक्रिया, यही उसकी पहचान है। ये मूल्य हमेशा बने रहना चाहिए। इसी आग्रह के साथ आप सभी को फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission said that he spoke to the parents and the spouse of Captain Smith Machar, who saved many lives in an aircraft that was on its way from Dubai to Israel yesterday. And he said that this displays India's commitment to peace and to fight terrorism. The Prime Minister said that he was pleased to see a photograph of Netaji Subhash Chandra Bose, who appeared and passed the 1920 UPSC examination, and he had appeared for the exams and wrote the paper in Sanskrit. The Prime Minister observed that the Union Public Service Commission played a pivotal role in shaping the roadmap of our bureaucrats and our police officers. He said that the coming 2 decades would be extremely significant for every citizen and every institution as India embarks on Viksit Bharat. During Viksit Bharat governance, UPSC and state PSCs will play a great role. He said that two touchstones should be remembered by the civil servants. The first is nation first and the other citizen first. 2047's India will be totally different from

0: Now, Nagrik Devo Bhava should be the mantra of every civil servant as it is the mantra of the government. Service to citizens should be the top priority of officers of the central and state governments. Citizens require quick solutions to their grievances. The examination cycle's timeline may be brought down further, observed the Prime Minister. He urged the Commission to standardize processes and procedures and said that UPSC is the link between Yuva Shakti and Rashtra Shakti.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने यूपीएससी की ऐतिहासिक यात्रा, लोक सेवा की भूमिका और देश की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री ने इस समय युवाओं और लोक सेवा में उनकी भूमिका की चर्चा भी की। प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक सेवा में प्रतिभा, जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण के महत्व को भी रेखांकित किया। श्रोताओं, 1 अक्टूबर 2026 को भारत मंडपम में आयोजित समारोह संघ लोक सेवा आयोग की 100 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा को एक साथ देखने का अवसर प्रदान करता है। 1 अक्टूबर 1926 को शुरू हुई यात्रा, फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का चरण और स्वतंत्र भारत के संविधान के लागू होने के साथ ही 26 जनवरी 1950 को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का संवैधानिक स्वरूप, इन सभी प्रयाणों से गुजरते हुए यूपीएससी ने आज अपना शताब्दी समारोह मनाया। आज का यह समारोह अतीत की विरासत को स्मरण करने के साथ साथ आने वाले समय के लिए नई सोच, नई दिशा पर विचार करने का एक अवसर भी है। भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित इस विशेष प्रसारण से मैं शहसियार खान, अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।
1: अभी आप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गरिमामय उपस्थिति में नई दिल्ली में आयोजित संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह का सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

प्रस्तुति कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, स्वागत करती है बहुत बहुत आपका आपकी अपनी रेडियो संगीनी प्रियंका आज के इस कार्यक्रम में। सबसे पहले सुनते हैं वो कौन थी, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा है राजा मेहदी अली खान ने और संगीत दिया है मदन मोहन ने। इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है सरोचो कमरावती महाराष्ट्र से कमरोला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा बेगम, हृदया खान, असमा, सालिया शोएब खान, सायमा खान, पोत्रा मुस्तावा खान, पोत्री अफिया खान, राहु भाई, शहीद भाई, गांधीवाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटेनकर, असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबेर अंसारी, कंवर कॉलोनी बढ़वा से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य अदिति शिवानी और मीनू राज श्रीमाली। और साथ ही ये खत हमारे हाथ में है रथ चौक बहादुरपुर जिला जलगांव से, और हमारी ये भेजने वाले श्रोता हैं संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र दंडगवाड़, रविंद्र सोनार, सुन्नी मुन्ना, बंडू दादा, और साथ ही साथ सुलताई माता नगर 40 गांव से पांडुरंग सूर्यवंशी, रेखाताई सूर्यवंशी, नीरज ठाकुर, आरती ठाकुर और कुमारी नव्या।

श्रोताओं, आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अब हम शामिल करने जा रहे हैं हमारे इन सभी श्रोताओं की पसंद। ये खत हमें मिला है ग्राम पंचायत बठेना से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौद सारा गांव से सुजान वर्मा, सोहरदा वर्मा, आयुषी कृत वर्मा, मोहम्मद हलवाईना शेरकोटा जिला बिजनौर से, मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हीना कौसर, और पोस्ट ऑफिस रोड बक्सर से मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना और सानवी, और तीवरता डबरी पारा से ये हमारे श्रोता है महेंद्र प्रताप मरकाम, श्रीमती जया मरकाम, जागेंद्र गजेंद्र मरकाम और जयंती मरकाम। हमारे ये सभी श्रोता सुनना चाह रहे हैं धनवान फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत हृदयनाथ मंगेशकर का है।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से, और आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में नीरज की लिखी गीत रचना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कन्यादान फिल्म से। इस गीत को पसंद करने वाले हमारे श्रोता है इंद्रप्रस्थ सदन रुद्री जिला धमतरी छत्तीसगढ़ से, चंद्रकांत, सीमा साहू, सूर्यकांत, राकेश साहू, शुभम, शिखा सेफाली, जांजगीर चापा छत्तीसगढ़ से, राजेश, रेखा साव, कमलेश, रावी साहू, हनी, हिमांशु, डिम्पी, संजल साव, और एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, कुमारी देविका चौधरी, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मराठा, मालती चौधरी, स्वाति प्रयाग चौधरी, ललिता नारायण खर्चे, और ये खत लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से है, विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू और कुंती साहू का। और इसी गीत की फरमाइश है शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, दिलीप वर्मा, राजू ताम्रकार, रज्जन रजक, संजीव वर्मा, विपिन गुप्ता और बनोजिया, अरुण बनोजिया, संजय सोनी, पवन यादव, सुनील जैन, लालू, सोना, मोना, हनी, यश, सौम्या और उनके मम्मी पापा। तो इन सभी की पसंद पर सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ का ये गीत, जिसकी फरमाइश हमें मिली है खतों के माध्यम से।

0: लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए।
1: और श्रोताओं, अब सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, जिसकी धुन बनाई है आरडी बर्मन ने, और इस गीत को हमने लिया है हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म से, और इसकी फरमाइश खतों के माध्यम से हमें मिली है ननोरा महोबा उत्तर प्रदेश से बलराम दास अहिरवार, श्रीमती कस्तूरी, आराधना, सोनिका, उपमा और नैतिक वर्मा, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, जावेंद्र कुमार वर्मा, राजकोट जयराज प्लॉट से ये हमारे श्रोता हैं, मधुसूदन भट्ट, आरती, पूजा, जास्मीन और प्रयागराज, और कवाई सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव, ग्राम सनोतिया जिला गुना मध्य प्रदेश से मांगीलाल चंदेल, अरविंद, अशोक, राजकुमार और हिमांशु। और ये एक खत और हमारे हाथ में है, जालौन उत्तर प्रदेश का ही है, दीपक सिंह गुर्जर, सत्यम सिंह गुर्जर, अंशराज सिंह गुर्जर और इनका पूरा परिवार।

और कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं बावर्ची फिल्म का गीत मन्ना डे और असरानी की आवाज़ों में। कैफी आजमी ने इस गीत को लिखा है और संगीत मदन मोहन का है। इस गीत की फरमाइश हमें मिली है गौरीनगर इंदौर से आनंद कुमार कामले, रेखा कामले, राखी पारस, तपस्या और करिश्मा कामले, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बीरक, जैतिक बीरक, मीका बीरक और गोलान बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज प्रमोद, रोहित और मोहित और थाना रोड बक्सर से ही ये पत्र है ज्योत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानविका। और ये अंतिम पत्र हम शामिल कर रहे हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, डॉक्टर अमनदीप और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बिट्टा बजाज। इन सभी की पसंद पर बावर्ची फिल्म का ये गीत।

मन्नाडे के गाए बावर्ची फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।

स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हुए हैं। संग्रहालय से लीजिए सुनिए इस कार्यक्रम में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति। आज इस रेडियो धारावाहिक की 13वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी और आज की कहानी है नीलम की चीज़।

0: अरे भाई भोला राम जी, ये बरसात तो बहुत जोर की हो रही है।
1: हाँ कृपा शंकर, दो दिन से सूर्य भगवान के दर्शन ही नहीं हो पा रहे हैं।
0: ठीक कह रहे हो। अरे भाई भोला राम जी, एक बात तो बताओ।
1: पूछो।
0: ये अपने गंगाधर जी को सभी लोग शास्त्री जी क्यों कहते हैं?
1: अरे कृपा शंकर जी, अभी तबादला होकर आए हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं मालूम।
0: क्या नहीं मालूम?
1: ये कि गंगाधर शास्त्री को लोग शास्त्री क्यों कहते हैं।
0: भाई मैं यहाँ अभी तबादला होकर आया हूँ और तहसील कार्यालय में मुलाजिम हूँ, इसलिए ये जानना चाहता हूँ कि उन्हें लोग शास्त्री क्यों कहते हैं। शायद उन्होंने शास्त्री की परीक्षा पास की हुई होगी।
1: अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है
0: भाई। आपने तो रहस्य और भी गहरा कर दिया। अब तो मुझे जानना ही है कि लोग उन्हें शास्त्री क्यों कहते हैं।
1: तो एक बात और सुनो।
0: क्या बताओ?
1: उन्होंने शास्त्री वाला सर्टिफिकेट भी नहीं लिया है और ये पढ़े लिखे भी कम हैं।
0: क्या बात करते हो भोला भाई, कम पढ़े लिखे हैं और शास्त्री नाम के साथ लगाते हैं।
1: यही तो बात है, पढ़ाई लिखाई नहीं के बराबर और नाम के साथ शास्त्री।
0: भाई वाह। ये बात तो समझ में आई कि ये पढ़े लिखे कम हैं, परंतु शास्त्री ये बात समझ के परे हैं।
1: अरे कृपा शंकर जी, इनके दादा के दादा संस्कृत के विद्वान थे, इसलिए शास्त्री उपनाम इनके खानदान को मिला हुआ है।
2: पंडित गंगाधर शास्त्री थे तो कम पढ़े लिखे, परंतु शास्त्री कहलाते थे।
3: शास्त्री कहलाने का कारण ये था कि उनके दादा के दादा संस्कृत के विद्वान थे।
2: गंगाधर शास्त्री 35-36 रेलवे स्टेशनों के खोमचों के ठेके लिए हुए थे।
3: उनका एक ही पुत्र था वैतरणीधर, जो अब शादी लायक हो चुका था।
2: पंडित जी उसके लिए उपयुक्त वधु की खोज कर रहे थे, साथ ही वो ये भी देख रहे थे कि खानदान ऊंचा हो, घर बार भी खाता पीता हो, ताकि बहू के साथ भरपूर दहेज आ सके।
3: पंडित जी की खोज सार्थक हो गई, एक अच्छा परिवार मिल गया। समधी बहुत बड़े तालुकेदार थे, उनका नाम हम समय आने पर बताएंगे।
2: दोनों समधियों को भगवान ने अतिरेक दिया था, दोनों में अंतर था तो केवल संतानों की संख्या का। पंडित गंगाधर की पत्नी केवल वैतरणीधर को ही जन्म दे सकी थी।
3: इधर तालुकेदार साहब को कोई 7 लड़कियां नसीब हुई थीं। आइए सुनते हैं कि भोला राम और कृपा शंकर आगे क्या बात कर रहे हैं।
0: भाई इतना तो हम जान गए कि आपके पंडित गंगाधर कम पढ़े लिखे हैं और शास्त्री इसलिए कहलाते हैं क्योंकि उनके दादा के दादा संस्कृत के विद्वान थे।
1: बिल्कुल सही।
0: हमें तो आपसे ये भी पता चला है कि उनका एक ही पुत्र वैतरणीधर है, जिसका विवाह तालुकेदार की पुत्री से तय हुआ है और
1: इसकी... और उनकी 6 सालियां हैं। और सुनो, पूजा करते समय अपने पंडित जी तिलक से केवल टीका नहीं लगाते हैं,
0: तो फिर
1: वो तिलक से सारा कपाल ही पोत डालते हैं। अब मैं उनकी रुद्राक्ष की माला के बारे में बताता हूँ।
0: अच्छा, तो उनकी रुद्राक्ष की माला भी विशेष है?
1: हाँ भाई, माला के रुद्राक्ष विशेष हैं। वो इतने कटीले हैं कि उनके कटीलेपन से गाय का बछड़ा भी गला छिल जाने के डर से अपने गले में उस माला को पहनने पर घबरा कर भागने लगता है। और सुनो, जब वैतरणीधर अपने पूज्य पिताजी की माला को या तो विनोदवश या उसका उचित स्थान जानकर किसी पड़ोसी की गाय के बछड़े के गले में डालने लगता है, तो बछड़ा रस्सा समझकर भागता है।
0: वाह भोला भैया वाह। भोला भैया, आप चित्र खींचने में उस्ताद हैं, मैं आपकी इस कला से बहुत प्रभावित हूँ।
1: अरे अब मैं आपको उनकी पूजा करने की विधि के बारे में विस्तार से बताता हूँ।
0: क्या क्या क्या, पूजा का तरीका भी विशेष है?
1: हाँ भाई, पंडित गंगाधर जब शाम केवल हरि पूजा पर बैठते हैं, तब षोडशोपचार पूजन में नीम की लकड़ी घिस घिस कर शालिग्राम शिला पर चंदन चढ़ाते हैं।
0: क्या बताया, नीम की लकड़ी घिसकर?
1: हाँ, अक्षत में चावल का एक कण चढ़ा देते हैं।
0: क्या केवल एक चावल का दाना?
1: अरे जी हाँ, सुनते जाइए। पुष्प और धूप का काम वो एक नींबू के झाड़ की टहनी से लेते हैं। वे डाली को भगवान पर झुकाकर उसके पुष्प को नित्य चढ़ा दिया करते हैं और कह देते हैं, पुष्पम धूपम समर्पयामि।
0: भाई वाह।
1: और जब दीप की बारी आती है तो पंडित जी शुद्ध घासलेट के तेल की दूर जलती हुई टिमटिम दानी की तरफ उंगली दिखाकर कह देते हैं, दीपम समर्पयामि।
0: भाई जब वो इतने कंजूस हैं, तो वो नैवेद्य क्या चढ़ाते होंगे?
1: अरे वाह, नैवेद्य की आपने खूब याद दिलाई। भगवान के नैवेद्य की तो उनके घर में परमानेंट यानी स्थायी व्यवस्था है।
0: भाई ये स्थायी व्यवस्था क्या है?
1: सुनो, दो सूखे हुए छुहारों की वो दलेल बोल दी जाती थी कि जब तक वैतरणी धर उन्हें चुरा कर ना खा जाए, तब तक वे नित्य भगवान के भोग के लिए रख दिए जाया करें। अरे लो भाई, बारिश भी रुक गई।
0: हाँ भाई,
2: तो कुल मिलाकर बात ये थी कि पंडित जी जरा खर्च कम ही किया करते थे।
3: इतने में आ गई वैतरणी धर की शादी। वो किस धूमधाम से हुई ये कहना व्यर्थ है।
2: ताल्लुकेदार साहब ने अधिक लड़कियां होने से यदि कार्य को सूत्र रूप में निपटाया तो पंडित गंगाधर जी ने एकाक्षर ब्राह्मण ओम की तरह अपना अंगूठा टेढ़ा कर भरी सभा में दिखाते हुए ताल्लुकेदार साहब के सूत्र को मंत्र का रूप दे दिया।
3: विवाह में एक विचित्र घटना हो गई। जिस समय सारा ब्रह्म वृंद ताल्लुकेदार साहब की चौपाल में भोजन करने के लिए बैठा, उस समय पहले तो कच्ची यहां नहीं पक्की वहां नहीं के संग्राम से निपट कर किसी प्रकार लोगों ने अपना खाना शुरू किया।
2: ताल्लुकेदार साहब का नाम अब अधिक समय के लिए छुपाकर उनके साथ अन्याय करना उचित नहीं जान पड़ता।
3: उनका नाम था हलधर प्रसाद।

0: वे बहराइच तहसील बोर्ड के सभापति और अपने इलाके के पहले दर्जे के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी थे।
1: खैर, तो उनके पास एक नीलम जड़ी हुई सोने की अंगूठी थी। उसे पहनती तो थीं अक्सर ताल्लुकेदारिन साहिबा, और जरा विशालकाय होने के कारण उनकी छिगुनी में वो ठीक बैठती भी थी।

0: अजी सुनती हो?
1: क्या है जी, क्यों शोर मचा रहे हो?
0: अरे भाई, मैं कह रहा था वो नीलम की अंगूठी कहाँ है?
1: ये पहन तो रखी है मैंने शिगुनी अंगुली में।
0: अरे लाओ लाओ, इसे मुझे दे दो।
1: नहीं नहीं, क्यों?
0: अरे भाई, अपने घर में शादी है बिटिया की, है? समाज के लोग आएंगे, उसे हम पहनेंगे तो लोगों पर खूब रौब पड़ेगा। हाँ,
1: अब तो रौब ही पड़ेगा।
0: क्या मतलब है आपका?
1: मतलब ये कि जवानी में आप पर ये अंगूठी खूब फपती थी, अब केवल रौब ही डालती है।
0: अरे भाई, जवानी की बात अलग थी भाई।
1: हाँ जी, जवानी में आप थे भी तो कितने खूबसूरत, माल गुजार के सुपुत्र, और उसी गांव के निवासी होने के कारण ये अंगूठी आपके व्यक्तित्व में चार चांद लगा देती थी।
2: देखने वाले, आज के हल्दर जी का बनना सवरना, ओढ़ना पहनना सह जाते थे, क्योंकि एक तो वो ऑनररी मैजिस्ट्रेट थे, दूसरे वो इलाके के ताल्लुकेदार भी थे। इस समय उनकी उम्र 50 को पार कर चुकी थी। नए लड़के उनकी अंगूठी पर खूब हंसा करते थे, इसलिए वो विशेष अवसर पर ही इसे पहनते।

0: स्वजातीय लोग भूख नामक शत्रु का पता पाकर और उसे पेट में छुपा देखकर तरह तरह के प्रहार कर रहे थे।
1: बूरे के बारूद, पूरियों के चक्र, लड्डुओं के बम गोले, सभी से शत्रु पर वार किया जा रहा था।
0: जो कमजोर थे वो बूरे का बारूद, पूरियों के चक्र और लड्डुओं के बम गोलों के स्थान पर शाक तरकारियों का कीचड़ ही शत्रु पर अधिक फेंक रहे थे। ये सब देखकर श्रीमान हल्दर प्रसाद मन ही मन गर्व कर रहे थे।
2: बारे मैं, कितने स्वजातीय बंधु मेरे यहाँ भोजन कर रहे हैं, है किसी में तब है? अरे कोई है? लाओ लड्डू लाओ, श्याममुख शास्त्री जी को परोसो।
0: हल्दर प्रसाद बार बार परोसने वालों को पुकारते और भिन्न भिन्न सज्जनों की थाली में तरह तरह के व्यंजन परोसने को कहते।
1: चूंकि वो नीलम की अंगूठी तर्जनी में ही पहने हुए थे, अतः भोजन का आग्रह और नीलम की अंगूठी का प्रदर्शन दोनों साथ साथ ही होता चल रहा था।
0: ताल्लुकेदार साहब का ये कृत्य उनके समधी और दूल्हे के पिता पंडित गंगाधर जी को अच्छा न लगा।
1: उन्हें ये अपमानजनक मालूम हुआ कि लड़के के पिता के सामने नीलम की अंगूठी दिखाकर वो अपना बड़प्पन जता रहे थे। वे दूर एक चारपाई पर बैठे तंबाकू खा रहे थे और अपने आसपास की जमीन पर अपने और अपने साथियों के लिए थूक थूक कर कुंभी पाक नरक का निर्माण कर रहे थे।
0: वे तुरंत उठे और जेओनार के बीचों बीच आकर अपनी गर्मी के दिनों में भी पहनी हुई रुई की बंडी बाहर उतार कर खड़े हो गए।
1: उनके हाथ

0: में कोहनी के ऊपर और कंधे के नीचे भुजा पर एक सोने का कंकड़ था। उन्होंने अपनी भलाई की तरह गीली चमड़ी पर से किसी प्रकार कंकड़ कोहनी पर सरकाया और तालुकेदार साहब ने जो ही नीलम अंगूठी वाली तर्जनी को आगे बढ़ाकर कहा,
1: अरे भाई यहाँ इमारती परोसो।
2: तभी पंडित गंगाधर ने चिल्लाकर और अपना हाथ मोड़कर सोने के कंकड़ को आगे करके कंकड़ समेत कोहनी हिलाते हुए कहा,
3: अरे इधर देखो जी, यहाँ माल पोए परोसो। अरे हाँ, कब तक देखा जाए किसे भोजन मिल रहा है किसे नहीं।
2: लोगों पर आफत टूट पड़ी, उन्हें खाना और हंसना दोनों एक साथ करना पड़ रहा था। ताल्लुकेदार साहब तो अंगूठी पर कंकड़ की चढ़ाई देख ऐसे गायब हुए कि फिर उन्होंने मुंह नहीं दिखाया।

पंडित गंगाधर शास्त्री अपने घर चांद सी बहू लेकर आ गए। वैतरणीधर और उसकी माताजी श्रीमती पार्वती बाई बेहद खुश थे।

0: अम्मा, बुआ भी अपने घर विदा होने को है।
1: हाँ बेटा, वो कितने दिनों में आई है। दीदी को विदा में एक गाय देनी चाहिए।
0: ये अच्छा रहेगा अम्मा, वैसे भी रिवाज के अनुसार गाय देना ही ठीक रहेगा। और अपने घर में भी तो गाय है ना, क्यों ना बुआ को विदाई में वही दे दें।
1: पर तेरे पिताजी नहीं मानेंगे।
0: क्यों अम्मा?
2: क्यों भाई, क्या बातें हो रही हैं?
1: वैतरणीधर कह रहा था कि दीदी को विदा में अपनी गाय दे दें।
2: नहीं नहीं, हम वो नहीं देंगे। अरे भाई, वो हमारे घर के सदस्य की तरह है, बहन के लिए हम दूसरी गाय ले आएंगे।
0: पिताजी, सुना है मवेशियों की नीलामी होने जा रही है।
1: अगर मवेशियों की नीलामी होने जा रही है तो आप वहीं से क्यों ना एक गाय ले आते हैं।
2: वैतरणी ने कह दिया और तुम एकदम राशन पानी लेकर दौड़ गई हैं? अरे मैं पता करता हूँ कब नीलामी हो रही है, अगर सस्ते में गाय मिल गई तो लेता आऊंगा।
3: दूसरे दिन शास्त्री जी अपने गांव की प्राइमरी पाठशाला के पास से निकले। वहां करीब ही पोस्ट ऑफिस, स्टाम्प बिक्री की दुकान और एक कांजी हाउस भी था।
4: उस समय स्कूल के दरवाजे पर कुछ मवेशी नीलाम के लिए खड़े थे। एक चौपाया नीलाम पर चढ़ा था और कुछ लोग उस पर बोली लगा रहे थे।
3: स्कूल ऊंचे टीले पर था और उसी के नजदीक टीले पर होकर सड़क जा रही थी जिससे गंगाधर शास्त्री जा रहे थे। उन्होंने देखा।
5: भाई, इस जानवर की बोली शुरू करते हैं।
6: हाँ भाई, हाँ गाना लगाइए, करिए करिए।
5: ₹1 से?
6: अच्छा, ₹1 से?
5: हाँ, ₹1।
6: ₹1 4 आना,
5: ₹1 4 आना,
6: ₹1 8 आना,
5: ₹1 8 आना,
6: ₹1 12 आने,
5: इधर से ₹1 12 आना,
6: ₹2।
5: हाँ भाई, ₹2 से ऊपर है कोई? ₹2 1,
7: ₹2 4 आना,
5: ₹2 4 आना,
6: भैया ₹2 8 आना। भैया,
5: हाँ भाई,
6: मेरी तरफ से ₹3।
5: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
6: ₹3.5,
5: ₹3.5 है। बोलिए भाई, ₹3.5 दो है कोई? बोलिए भाई, ₹3.5 दो।
2: बछड़ा हो या बछिया, ₹4 में महंगा नहीं पड़ेगा।
8: अरे अरे भाई, मेरी तरफ से ₹4।
5: हाँ भाई, है कोई? ₹4 है, ₹4 दो, ₹4 3।
3: शास्त्री जी तो ₹4 लगाकर चले गए। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो किस पर बोली लगाए हैं। जब बोली खत्म हुई तो तहसीलदार साहिबा ने पूछा,
9: ये जानवर किसने खरीदा?
10: जी, पंडित गंगाधर शास्त्री ने खरीदा है हुजूर।
9: उन्होंने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी?
10: जी हुजूर, सबसे ज्यादा ₹4।

0: लाओ कागजात लाओ, मैं उनकी मिल्कियत इस पे दर्ज कर देती हूँ।
1: जी हुजूर, ये रहे कागजात।
0: पंडित शास्त्री को बुलाओ और उनकी अमानत उन्हें सौंप दो।
1: जी हुजूर।
2: पंडित गंगाधर शास्त्री हाजिर होकर तहसीलदार साहिबा से अपना जानवर ले जाए। पंडित गंगाधर शास्त्री हाजिर होकर तहसीलदार साहिबा से अपना जानवर ले जाए।
1: हुजूर, शास्त्री जी तो शायद घर चले गए।
0: कृपा शंकर, पंडित गंगाधर शास्त्री हमारे ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट हल्दर प्रसाद जी के समधी हैं।
1: जी,
0: इसलिए इस जानवर को उनके यहाँ इज्जत से पहुँचा दो और नीलामी के 4 रुपए लेते आना।
1: जी हुजूर, मैं अभी पहुँचा आता हूँ। ए दीनो, इसे हाथते हुए ले चलो।
3: ठीक है।
4: दीनो, जो कांजी हाउस का चरवाहा था वो नीलामी में खरीदे जानवर को हांकता हुआ शास्त्री जी के घर की तरफ चल दिया। साथ में जरूरी कागजात लिए कृपाशंकर भी चल रहा था।
5: पंडित जी के घर आकर कृपाशंकर ने 2-3 बार दरवाजा थपथपाया।
6: अरे कौन है भाई? अरे कौन है भाई?
2: जी मैं हूँ कृपाशंकर, तहसील का मुलाजिम। आपका नीलामी में खरीदा जानवर लेकर आया हूँ।
6: अच्छा अच्छा अच्छा, गाय ले आए? ठहरो, मैं दरवाजा खोलता हूँ।
4: इस समय लोगों की भीड़ का क्या कहना, उससे 10वीं भीड़ भी नीलामी की जगह पर नहीं थी। शास्त्री जी ने नीलामी में खरीदा जानवर देखा तो झल्ला कर बोले,
7: क्या मैंने ये जानवर खरीदा है? ये जानवर, ये गधा? क्या मैं बर्तन बनाकर बेचता हूँ? क्या मैं कपड़े धोता हूँ जो ये गधा खरीदता है?
8: देखिए शास्त्री जी, ये मैं नहीं जानता, आपने 4 रुपए इसी के लगाए थे। हाँ, और देखिए तहसीलदार साहिबा ने आपके नाम पर बोली खत्म कर दी, और मुझे 4 रुपए दीजिए, मैं रसीद ला दूंगा, और ये गधा संभालिए बस। हाँ।
6: अरे अरे, मुझे बताना तो चाहिए था कि बोली गधे पर लग रही है, है?
8: आप वहाँ ठहरे भी कहाँ, न जानवर देखा और न उसके बारे में मालूमात की, बस बोली लगाई और घर चले गए। तहसीलदार साहिबा ने आपको बहुत ढूंढवाया, जब नहीं मिले तभी तो मुझे आपके घर भेजा है।
6: देखो भाई, मैं तो ये गधा नहीं लूंगा।
8: तब तो आपको तहसीलदार साहिबा के पास चलना होगा।
6: ना रे बाबा ना, रुपया चाहे 4 के 8 ले लो, पर एक तो मुझे गधा न दो, दूसरे मुझे तहसीलदार साहिबा के पास न ले चलो भैया।
9: पिताजी, आप खुद तहसीलदार साहिबा के पास चले जाएं और साफ साफ कह दें। भोला चाचा, आप भी पिताजी को कहिए ना।
10: हाँ शास्त्री जी, आप गधे को ले जाकर तहसीलदार साहिबा से साफ साफ कह दें, ये सब भूल से हो गया है।
4: इतने में चर्च के पादरी जी वहाँ आ गए।
11: शास्त्री जी, हमारे धर्म में गधा बुरा नहीं माना जाता है।
6: जी, तो आपके धर्म में गधा कैसा माना जाता है?
11: मुझे कहते दुख है कि आप लोग गधों के गुणों को नहीं जानते। ग्रीस देश की कुछ जातियां गधों को बहुत पवित्र प्राणी मानती थी और वहां उनकी पूजा की जाती थी।
6: धन्य पादरी साहेब, बड़े वक्त पर पधारे आप।
11: ग्रीस देश में एक गधे ने अपने युद्ध में गए हुए स्वामी के प्राणों की रक्षा की थी, इसीलिए वो गधा प्राण रक्षक की तरह माना गया।
6: अरे यहां एक तरफ बांधरे गधा, मुझे पादरी साहब के उपदेश सुनने दे।
11: पर्शिया के राजा ओजस का एक गधा था। उसे उसने इतना पवित्र माना कि उसका एक मंदिर ही बनवा दिया। फिर सारी जनता उस खर प्रतिमा की पूजा करने लगी। ग्रीस देश में ही निकॉन नाम का एक गधा सवार सेनानी गधे पर चढ़े हुए ही एक युद्ध जीत गया। वो व्यक्ति ग्रीस के धार्मिक इतिहास में विजेता निकॉन के नाम से प्रसिद्ध है।
3: अरे वाह!
11: जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो ग्रीस के सम्राट ने उस गधे के पूरे कद का एक तांबे का पुतला बनवा दिया था।
6: पादरी साहब, अब मैं और धीरज नहीं रख सकता, आप ले जाइए इस गधे को।
11: ना ना ना पुत्र, मैंने तो इतनी बातें इसलिए कही कि जिससे तुम इस पवित्र प्राणी को घर से बाहर ना निकालो और रुपए चुका कर रख लो।
12: बिल्कुल ठीक बात, पादरी इस बात में बिल्कुल सही बात, वाह बिल्कुल ठीक बात।
4: पंडित जी चार के आठ ले जाने का कहते रहे, परंतु कृपा शंकर ने उनकी एक न सुनी, चार के चार ही लिए और चला गया।
5: लोगों की शरारत शुरू हो गई। उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले और कपड़े धोने वाले को तैयार कर लिया, यहां तक कि कांजी हाउस वाला भी उनका साथ देने इस मस्ती में तैयार था।
4: इसका परिणाम यह हुआ कि पंडित जी गधे को किसी को भी नहीं बेच सके और न ही पुनः कांजी हाउस बेच पाए।
5: शास्त्री जी ने गधे को 10-5 मील दूर छुड़वा भी दिया, पर दुर्भाग्य की जय, वो ईमान का पक्का प्राणी फिर संध्या को शास्त्री जी के खूंटे पे हाजिर।
13: अरे ये तो फिर आ गया, अरे क्या करूं, इसे कहां छोड़ूं? अरे मेरे बाप, पीछा छोड़ मेरा। अरे कोई है जो इससे मेरा पीछा छुड़वाए, पीछा छुड़वाए, पीछा छुड़वाए, पीछा छुड़वाए।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की कहानियों की रेडियो प्रस्तुति की 13वीं कड़ी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण और इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 12:58 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन्यजीव सप्ताह के अवसर पर नागरिकों से वन्यजीवों और उनके आवासों की रक्षा में योगदान देने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह में कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में अनेकों बदलाव के बाद भी भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। प्रदेश में भावांतर योजना के अंतर्गत सोयाबीन उपार्जन के लिए 3 से 17 अक्टूबर तक ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन किए जा सकेंगे। किसानों को पंजीयन के लिए सभी पंचायत, तहसील और सहकारी समितियों में निःशुल्क सुविधा उपलब्ध रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर कल से 10 अक्टूबर तक प्रदेश भर में सेवा सेतु अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान प्रशासनिक दलों द्वारा ग्राम पंचायत और वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित कर पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल वर्ष 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि की है। वहीं ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर चरण 3 योजना को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि निर्णय नए अवसरों को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश भर में नशा मुक्त युवा अभियान के तहत अधिकारियों को हॉटस्पॉट पर विशेष निगरानी रखने और हर माह समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि पुलिस और आबकारी विभाग संयुक्त कार्रवाई कर दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए और राज्य से दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई अगले 2 से 3 दिनों में हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजे हैं और लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

नमस्कार मानव, स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम महिला सभा में। आज मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी सखी अमृत। बहनों, अपनी व्यस्तता से थोड़ा सा समय निकालकर आप आ जाइए हमारे साथ, यानी अपने रेडियो सेट के नज़दीक। आपकी अपनी बातों के साथ और कुछ जानकारी लेकर मैं आ गई हूं, और साथ में ले आइए घर के बड़े बुजुर्गों को भी अपने साथ, जिन्हें आप अकेला नहीं छोड़ पा रहे या जिनकी आपको फिक्र है। वैसे एक बात तो है बहनों, हम चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, हमारे माता पिता, घर के बुजुर्ग हमारी फिक्र करना कभी नहीं छोड़ते। स्वयं असमर्थ होने पर भी वो आपसे हमेशा यही पूछते हैं कि बेटा खाना खाया, बच्चों ने खाना खा लिया, या फिर नियत समय पर आने वाला थोड़ा सा भी देर होने पर पूछते हैं कि क्या हुआ, आज देर कैसे हो गई, रास्ते में कहीं कोई परेशानी तो नहीं हुई। यही तो उनका प्यार है। जिंदगी के इस पड़ाव में वो अपने आप को अकेला ना महसूस करें, इसके लिए हमारा भी कर्तव्य है कि हम उनसे थोड़ी बातें करते रहें, थोड़ी उनकी सुने, उनके अनुभव, उनका जीवन संघर्ष, उनका धैर्य संयम, उनकी सीख निश्चित ही हमारे लिए लाभदायक रहेगी। बहनों, अभी पितृपक्ष चल रहे हैं, जिसमें 16 दिन की वो अवधि जिसमें हिंदू अपने पितरों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करते हैं, उन्हें जल देते हैं। यही तो हमारी भारतीय परंपरा है। तो हमारे जीवित बुजुर्ग पूर्वज जो सदा आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, वृद्ध हमारे समाज का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ हैं, साथ ही हमारे समाज के लिए पारंपरिक ज्ञान का विशाल भंडार भी होते हैं। जिस क्षेत्र में उनकी विशेषता रही है, उस क्षेत्र में उनसे मदद लेने पर अपने आप को वो निश्चित ही सम्माननीय समझेंगे। आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसंबर 1990 को इस दिन को नामित किया था, और पहली बार 1 अक्टूबर 1991 में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया गया। इसको मनाने का उद्देश्य ही यही था कि दुनिया भर में बुजुर्गों के साथ होने वाले भेदभाव, उपेक्षा और दुर्व्यवहार को रोका जा सके, साथ ही समाज में उनके योगदान, ज्ञान और गरिमा का सम्मान किया जा सके, वरिष्ठ नागरिकों की उपलब्धियों, उनके अनुभवों के प्रति आभार जताया जा सके, और उनके स्वास्थ्य और अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जा सके। वृद्ध मनुष्य जीवन की खुली पुस्तक के समान होते हैं, बस हम उनसे जो चाहे ले सकते हैं। सदैव अपने आप को उनके सानिध्य में ही रखें। पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दीजिए, पेड़ बूढ़ा ही सही आंगन में लगा रहने दीजिए, फल ना देगा ना सही, छाया तो देगा। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है थोड़ा जो पैसा है थोड़ा जो किस्मत है के दिखाना यहाँ पड़ता है बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: खिलवाड़ है, जानवर आदमी से ज्यादा वफादार है, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का डर है।

0: मैंने पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत सरकार का एक डिजिटल और बहुआयामी मंच है, जिसे अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था। ये योजना देश में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए बनाई गई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है कि ये सड़क, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डे, जलमार्ग, जल परिवहन और बिजली नेटवर्क जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के डेटा को एक ही मानचित्र पर जोड़ता है। इससे अलग अलग विभागों के बीच तालमेल बढ़ता है और जिससे परियोजनाओं को पूरा होने में देरी नहीं होती और लागत भी बचती है। मैंने इस योजना को बाइसेग एन भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा डिजिटल मास्टर प्लानिंग टूल के रूप में विकसित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि ये क्लीन एनर्जी और सबका प्रयास से संचालित है, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर की मिलकर की गई कोशिशें, जिसमें सभी के लिए, खासकर युवाओं के लिए नौकरी और एंटरप्रेन्योरशिप के बड़े मौके मिलते हैं। बहनों, जब हम अपनी भावनाओं, अपनी कल्पनाओं को एक व्यवस्थित क्रम में रचते हैं तो या तो कहानी बन जाती है या कविता का रूप ले लेती है। तो बहनों, हम समय समय पर आपके लिए लेकर आते हैं कथा कुंज क्रम में कहानी। तो आज की कहानी है सौगात। कहानीकार है श्री बी डी बजाज।
1: सौगात, उसे यह अजनबी शहर जहाँ वो पहली बार आया था अपने शहर से बहुत सुंदर एवं शांत तथा सुखी लग रहा था। छत की मुंडेर पर खड़े होकर वो आसमान में टिमटिमाते तारों को ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी अजनबी चीज को देख रहा हो। हल्के हल्के हवा के झोंकों के स्पर्श से वो आनंद विभोर हो उठा। तभी अचानक उसकी नजर दूर, बहुत दूर, पेड़ों के झुंड पर कलात्मक ढंग से लगी रंग बिरंगी टिमटिमाती बिजली की झालर पर जा पड़ी। वो बहुत खुश हुआ और अपने शहर की तुलना इस शहर से करने लगा। तभी अचानक किसी बूढ़े के भयानक खांसने की आवाज उसके कानों को छेदती हुई निकल गई। वो घबराकर छत के नीचे झांकते हुए इधर उधर देखने लगा, किंतु नीचे अंधेरे के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। वो कुछ सोच ही रहा था कि नीचे से मामी की आवाज आई, राजेश नीचे आओ, खाना लगा दिया है। खाना खाने के बाद राजेश ने चाहा कि वह फिर छत पर जाए और पता लगाए कि ये भयानक खांसने की आवाज किसकी थी, पर राजेश की हिम्मत नहीं हुई। वो बिस्तर पर अचेत सा लेट गया। बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई। वो किसी पत्रिका के पन्ने पलटते हुए करवटे बदलता रहा। अब वो सीधा लेटा हुआ था, उसकी आंखें छत की ओर शून्य में जा टिकी। वो फिर सोचने लगा। अचानक उसकी आंखों में एक आकृति तैरने लगी जिसे वो मन ही मन रूप देने लगा कि एक वृद्ध जिसने शायद कई दिनों से खाना नहीं खाया हो, जिसका पेट पीठ से चिपका हुआ, गाल दाढ़ से सटे हुए, बाल एवं दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई हो और आंखें फाड़े फटे पुराने बिस्तर पर उठकर बैठने की कोशिश कर रहा है, किंतु उसकी खांसी उसे उठने नहीं दे

पीछे कई छोटे छोटे घर दिखाई दिए। कान लगाने पर उसे कुछ इस तरह समझ आया कि एक माँ अपने बच्चे से हिसाब ले रही है। उस बच्चे का नाम अन्नू है, जो एक सिनेमा हॉल के पास चाय की घुंटी लगाता है। आज अन्नू के हाथ से 2 लीटर दूध गिरकर नुकसान हुआ था। नाराज होकर उसकी माँ उसे डांट रही थी। ये हादसा भी उसके लिए सोचने का मुद्दा बन गया। उसे लग रहा था कि उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। उसने तय किया कि वो आगे छत पर कभी नहीं आएगा। राजेश इंटरव्यू हो चुका था, आज वो घर लौटने की तैयारी कर रहा था। उसने मामी के चरण स्पर्श कर विदाई ली, तभी उसकी मामी ने उसे थैले में एक मिठाई का डिब्बा दिया और कहा, ये सौगात पड़ोसन दे गई है, उसकी बिटिया अनीता तुम्हारे मोहल्ले में ब्याही है, अशोक नाम है लड़के का। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, उन तक पहुँचा दूंगा, कहते हुए राजेश ने थैला मामी से ले लिया। ट्रेन में बैठे बैठे वो गुजरे दिनों की याद में गुम हो गया। उसे बारी बारी गुजरे दिनों की घटनाएं याद आने लगी, बूढ़े की भयानक खांसी, बच्चे का सबक कर रोना। फिर उसे अचानक याद आया, वो जब अपने मित्र की दवाई की दुकान पर बैठा था, तब एक महिला ने आकर 200 रुपये की दवाई ली थी। फिर कुछ सोचकर उसने 100 की दवाई वापस करके सामने मिठाई की दुकान से मिठाई ली थी। तब वो सोचने लगा, कितना अंतर है दवाई और मिठाई में, दोनों का क्या संबंध है आपस में। वो समझ नहीं पाया, सोच सोच कर उसका सर चकराने लगा। विचारों से पिंड छुड़ाने के लिए वो खिड़की के बाहर प्रकृति के सौंदर्य को निहारने लगा। अब वो अपने घर पहुंच गया था। नहाकर भोजन करने के पश्चात उसने थैला उठाया और अनीता के घर देने निकल पड़ा। उसके घर पहुंचकर उसने दरवाजे की कुंडी खटखटाई, तभी किसी महिला ने कुंडी खोली, जो इस समय पोछा लगा रही थी। राजेश ने पूछा, क्या अनीता आप ही हैं जिसका मायका भोपाल में है। अनीता ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और राजेश को बैठने को कहा। अनीता को देखकर राजेश गजब में पड़ गया, सोचने लगा, क्या ये वही अनीता है जो कुछ वर्ष पूर्व ब्याह कर हमारे मोहल्ले में आई थी, जिसके खूबसूरती और संस्कार की चर्चा सारे मोहल्ले में हुई थी। जब अनीता ने सुना कि राजेश भोपाल से उसके मायके से मिलकर आया है, वो बहुत खुश हुई और एक ही सांस में उसने पूछ लिया, कैसे थे मम्मी पापा, पापा की खांसी ठीक थी ना, अब पापा को पेंशन तो समय पर मिलती ही थी ना, अनु कैसा था, अरे हाँ अनु की चाय की दुकान ठीक चल रही थी ना। कहकर अनीता आशा भरी नजरों से अच्छा समाचार सुनने के लिए राजेश को निहारने लगी। ये सुनकर राजेश हतप्रभ रह गया, उसके पास अनीता के सवालों का जवाब नहीं था। घटना के बाद घटना उसे याद आने लगी, वो उलझ सा गया। एक पल रुककर उसने अनीता का दिल रखने के लिए कह दिया, हाँ सब ठीक था, कहते उसने मिठाई का डिब्बा उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए आपकी मम्मी ने सौगात भेजी है। अनीता ने जैसे ही मिठाई का डिब्बा लिया, तभी उसकी सासू माँ आ गई। अनीता ने सासू माँ को मिठाई का डिब्बा देते हुए कहा, ये लीजिए माँ जी, ये सौगात मम्मी ने भेजी है। तभी सासू माँ ने डिब्बा लिए बिना तनक कर कहा, हाँ हाँ मालूम है, 1/2 किलो मिठाई क्या मिली है, ऐसे खुश हो रही है जैसे खजाना मिल गया हो। ये सुनकर राजेश अचंभित हो उठा। अनीता बर्फ के सिल्ले की तरह जम सी गई। तभी दरवाजे की कुंडी खटकी, राजेश दरवाजे के नजदीक बैठा था। राजेश ने दरवाजा खोला, देखा टेलीग्राम वाला खड़ा था। राजेश ने टेलीग्राम लिया। अनीता लड़खड़ाते कदमों से राजेश की ओर बढ़ी और बोली, क्या लिखा है। राजेश ने टेलीग्राम खोला और पढ़ते हुए धीमी आवाज में बोला, सुंदरलाल एक्सपायर। यह सुनकर अनीता फूट फूट कर रोने लगी। तभी मिठाई का डिब्बा उसके हाथ से गिर गया। यह देखकर राजेश स्तब्ध रह गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया, मित्र की दवाई की दुकान में जब वो बैठा था, वहां जो महिला दवाई का प्रिस्क्रिप्शन लाई थी, उसमें भी तो सुंदरलाल ही लिखा था। तभी वह सोचने लगा, रिश्तेदारी निभाने में और गिला शिकवे से बचने के लिए आदमी कितना मजबूर है कि वो अपनी जिंदगी की रक्षा से जरूरी रिश्तेदारी की औपचारिकता निभाने को देता है और अपने लिए मुसीबत पैदा कर देता है। अब उसे समझ आया दवाई और मिठाई के बीच का अंतर, जो वो कभी सोच रहा था। सोचते हुए राजेश को लगा, अब वो मामा के घर की छत पर निश्चिंत होकर जा सकेगा। अब उसे किसी वृद्ध की खांसी परेशान नहीं करेगी, न ही किसी बच्चे के सिसकने की आवाज आएगी।

0: शायद ये सारे हादसों का अंत है। तभी राजेश ने मुड़कर देखा तो दंग रह गया। अनीता की सासू माँ धरती से मिठाई के पीस बीनते हुए अनीता को कह रही थी, बस करो अब ये रोना पीटना, अब क्या होगा। इस समय अनीता फूट फूट कर रो रही थी। उसको सांत्वना देने अड़ोस पड़ोस के कई लोग इकट्ठे हो गए थे। उसकी सासू माँ नजर नहीं आ रही थी, वो शायद सौगात संभाल कर रखने कमरे में गई हुई।
1: अभी हमारी बहनें सुन रही थीं कहानी सौगात। कहानीकार थे श्री बीडी बजाज। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के साथ साथ आज हम मना रहे हैं राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, जिसे आज के दिन यानी 1 अक्टूबर को मनाते हैं, ताकि किसी व्यक्ति के जीवन में रक्त की जरूरत और महत्व को समझा जा सके। इसकी शुरुआत सबसे पहले 1 अक्टूबर 1975 को इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनिटोहेमेटोलॉजी के जरिए हुई थी। आज के समय में ज़रूरतमंद व्यक्ति को खून देना इंसानियत का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा बन गया है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि खून देने वाला कौन है और खून लेने वाला कौन है। मैंने जैसे जैसे हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं, रक्त की मांग बढ़ती जा रही है। सड़क दुर्घटनाओं, सर्जरी, पुरानी बीमारियों और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि के साथ सुरक्षित रक्त की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। रक्तदान केवल एक नेक कार्य ही नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य सेवा का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है जो हर रोज जीवन बचाता है। बहनों, आपके हमारे एक बार रक्तदान करने से 3 लोगों की जरूरत पूरी हो सकती है, क्योंकि दान किए गए रक्त को लाल रक्त कोशिकाओं, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा जैसे घटकों में विभाजित कर दिया जाता है, जिसका उपयोग रोगी की जरूरत के अनुसार किया जाता है। बहनों, रक्त की जीवन काल बहुत कम होता है। लाल रक्त कोशिकाएं केवल 42 दिन और प्लेटलेट्स केवल 5 दिन तक ही जीवित रहते हैं। इसलिए आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने के लिए निरंतर रक्तदान आवश्यक है। तो क्या आप भी सोच रही हैं, क्या मैं भी रक्तदान कर सकती हूँ? तो अगर आपकी आयु 18 वर्ष से 65 वर्ष के बीच है और आपका वजन 45 किलो या उससे अधिक है और हीमोग्लोबिन 12.5 से 18.5 के बीच है और आप किसी संक्रमण या लंबी बीमारी से पूर्णतः मुक्त हैं, आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, तो आप निश्चित ही रक्तदान कर सकते हैं। अगर आपने 1 वर्ष के भीतर टैटू बनवाया है, आपको डायबिटीज या उच्च रक्तचाप हो, या फिर गर्भवती हो, या फिर हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो, या बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ हो, तो आप सभी को रक्तदान नहीं करना चाहिए। रक्तदान न केवल लेने वाले के लिए जीवन रक्षक है, बल्कि दानदाताओं के लिए भी कई तरह से लाभदायक है। शरीर में अतिरिक्त आयरन को कम करके हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है, नए रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को बढ़ाता है, कैलोरी तो जलाता है और शरीर के वजन को भी नियंत्रित करने में मदद करता है। जब दूसरों की मदद करते हैं तो निश्चित ही हमें भावनात्मक संतुष्टि भी मिलती है और सामुदायिक भावना का निर्माण भी होता है। तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

मेरा इस गीत के साथ ही अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और दीजिए अनुमति आपकी अपनी सखी अमृत को। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:30 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत और लोक संगीत का कार्यक्रम। पहले हम आपको सुनवा रहे हैं लोक संगीत के कार्यक्रम में रामचंद्र अहिरवार के गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत के कार्यक्रम में किशन भट्ट के गाए गीत और भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। एक छोटा सा अंतराल।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2 बजने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत। लता मंगेशकर के साथ दूसरी आवाज है किशोर कुमार की। गीत लिखा है गुलजार ने और संगीत खयाम का है। फिल्म का नाम थोड़ी सी बेवफाई।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं राजपूत फिल्म का गीत, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और साथियों के हैं। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। सुनिए ये गीत।

0: राजपूत फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:10 होने के हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार के परिजनों से फोन पर बात कर उनके साहस की सराहना की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। स्मिथ मच्छार फिलहाल तबुक के अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और अन्य लोगों ने भी उनकी बहादुरी की सराहना करते हुए जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। दरअसल दुबई से तेल अवीव जा रहे फ्लाई दुबई विमान में उड़ान के दौरान को पायलट ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला कर दिया था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद मच्छार ने हमलावर का मुकाबला किया और यात्रियों तथा क्रू की मदद से उसे काबू करने में अहम भूमिका निभाई, जिसके बाद विमान को सऊदी अरब के तबुक में सुरक्षित उतारा गया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों के विकास योजनाओं की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भोपाल के विकास के साथ आदर्श गौशाला के काम में तेजी लाने और सिंगरौली को आदर्श जिला बनाने के प्रयासों पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने सिंगरौली में नई टाउनशिप और माइनिंग सेक्टर की संभावनाओं को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा की। आईटी क्षेत्र में निजी कंपनियों को पार्क स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने और जबलपुर के सेमी डॉक्टर इच्छुक उद्यमियों को सहयोग देने के निर्देश दिए गए। प्रदेश में इस साल भी सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना के तहत होगी। किसानों के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। पंजीयन के दौरान भुगतान वाले आधार लिंक बैंक खाते में 1 रुपये भेजकर उसका सत्यापन किया जाएगा। पिछले साल करीब 7 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था और करीब 1,476 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था। इस साल 7 से 10 लाख किसानों के पंजीयन और करीब 20 लाख टन सोयाबीन खरीदी का अनुमान है। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में 3 महीने बाद आज से जंगल सफारी शुरू हो गई है। सुबह 6 बजे से पर्यटकों ने ताला, मगधी और खितौली जोन में जंगल का भ्रमण किया। जंगली हाथियों की मौजूदगी को देखते हुए पार्क प्रबंधन ने गाइड और वाहन चालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया है। क्षेत्र संचालक अनुपम सहाय के मुताबिक नए पर्यटन सीजन के पहले महीने की बुकिंग पूरी तरह से फुल हो चुकी है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के बाबा महाकाल के भस्म आरती हुई। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भगवान का जलाभिषेक और पंचामृत से अभिषेक किया गया। इसके बाद भांग, चंदन, आभूषण और गुलाब के फूलों से बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया। महानिर्वाणी अखाड़े की ओर से भस्म अर्पित करने के बाद भगवान का राजा स्वरूप में श्रृंगार किया गया। आकाशवाणी भोपाल में स्वच्छता ही सेवा अभियान 6.0 और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कल पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। आकाशवाणी परिसर के उद्यान में 50 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों ने उत्साह के साथ पौधे लगाए और उन्हें पानी दिया। कार्यक्रम में क्लस्टर प्रमुख लोकेश कुमार, निदेशक समाचार पूजा पी वर्धन समेत केंद्र के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मानसून की विदाई का दौर शुरू हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में मानसून प्रदेश से विदा हो सकता है। हालांकि इससे पहले कुछ इलाकों में बूंदाबांदी और गरज चमक की संभावना है, लेकिन कहीं भी भारी बारिश के आसार नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी नगर निगम में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होंगे दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में यूपीएससी शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक में खाद्य सुरक्षा तथा सहयोग का आह्वान किया। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की। पाकिस्तान के हवाई हमलों में अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में 9 नागरिक मारे गए। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता। 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल, प्रो एक्टिव, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है।
2: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार का मंत्र नागरिक देवो भव है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए देश को जिस तरह के प्रशासन की जरूरत है, उसे यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग जैसे संस्थान काफी हद तक संभव बनाएंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि आजादी के बाद से ही युवा देश सेवा करने के सपने लेकर संघ लोक सेवा आयोग के पास आते रहे हैं और यूपीएससी ने यह पक्का किया है कि उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर ही परखा जाए। उन्होंने बताया कि अभी सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 30% है। सरकार ने इस महीने की 15 तारीख से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय कर दी गई है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी

0: की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। मंत्रालय ने कहा कि चीनी की औसत खुदरा कीमतों में अगस्त के उच्चतम स्तर से 15% की गिरावट आई है। ये गिरावट सरकार द्वारा चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने और बाजार में इसकी सुचारू आवाजाही को आसान बनाने के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों का असर दिखाती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र बलों के बीच तालमेल और एकीकरण पर जो जोर दिया जा रहा है, वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी लागू की जानी चाहिए। आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता ऑडिटिंग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने और उन्हें आत्मसात करने तथा देश और दुनिया भर में बदलते मानकों के साथ तालमेल बिठाने का आग्रह किया।
1: डिफेंस सेक्टर में भी हम सेल्फ रिलायंस पर विशेष बल दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे वेपन्स, ये सब देश में ही और देश के लोगों के हाथों से ही बने, और इस प्रोसेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भूमिका मैं मानता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, जब हम मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हैं, तो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम्स को भी उसी तरह फ्लेक्सिबल और एफिशिएंट होना चाहिए, यह तभी संभव है।
0: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच लंबे समय से लंबित महानदी जल विवाद को सुलझाने के लिए आज नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
2: छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी के जल बंटवारे का विवाद पिछले कई वर्षों से लंबित है। ओडिशा ने नवंबर 2016 में केंद्र सरकार से विवाद के समाधान के लिए न्यायाधिकरण गठित करने की मांग की थी। बातचीत से समाधान नहीं निकलने के बाद मार्च 2018 में महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया। ओडिशा का कहना है कि छत्तीसगढ़ में ऊपरी हिस्से में बनाए जा रहे जल संसाधन परियोजनाओं से गैर मानसूनी मौसम में उसके हिस्से में पानी का प्रवाह प्रभावित होता है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का पक्ष मुख्य रूप से अपने हिस्से के जल के उपयोग और राज्य की सिंचाई, औद्योगिक तथा घरेलू आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हाल के महीनों में केंद्र सरकार ने दोनों राज्यों के बीच बातचीत, तकनीकी सहयोग और आपसी सहमति के जरिए समाधान निकालने पर जोर दिया है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और public@AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने खाद्य सुरक्षा के लिए आवश्यक वैध राष्ट्रीय उपायों को भोजन का शस्त्रीकरण बताए जाने के खिलाफ चेतावनी दी है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के एक सत्र के दौरान ये बात कही। श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि साझा मकसद ये सुनिश्चित करना होना चाहिए कि भोजन सुरक्षा स्थिरता और सहयोग का जरिया बना रहे। केंद्रीय मंत्री ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसे लागू करने की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने मिलवॉकी में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक के दौरान व्यापार और आर्थिक सुरक्षा के लिए यूरोपीय आयुक्त मारो सेफकोविच के साथ बातचीत की। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने दुबई में कैप्टन स्मिथ मच्छार के परिवार से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राजदूत ने सरकार की ओर से पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने आज कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन हर संभव मदद पहुंचा रहे हैं।
4: भारत के कैप्टन स्मिथ ने जिस प्रकार से धैर्य, सूझबूझ और साहस का परिचय करवाया। और जैसे आज इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस हिंदुस्तानी ने 9/11 होने से बचा लिया, हर देशवासी के लिए स्मिथ का ये पराक्रम हमें गौरव से भर देता है।
0: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात के अटॉर्नी जनरल ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जांच में घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाया जाएगा। ये भी जांच की जाएगी कि घटना का संबंध किसी आतंकी गतिविधि से था या इसमें पहले से कोई योजना शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जनसेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने बोगीबिल पुल ने नदी के उत्तरी और दक्षिणी तटों को जोड़कर लोगों की जिंदगी में किस तरह का बदलाव लाया है।
5: 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बोगीबिल पुल के उद्घाटन ने असम में परिवहन के लिए एक नया क्षितिज खोल दिया। यह पुल ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट पर स्थित धेमाजी जिले को दक्षिणी तट पर स्थित डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। बोगीबिल पुल ने ऊपरी असम के सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रों में व्यापक बदलाव लाए हैं। डिब्रूगढ़ ऊपरी असम का एक प्रमुख शहर है और यह पूरे क्षेत्र के साथ साथ पड़ोसी राज्य अरुणाचल प्रदेश के लिए भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रमुख केंद्र है। 4.94 किलोमीटर लंबा यह डबल डेकर रेल कम रोड पुल भारत में अपने तरह का सबसे लंबा पुल माना जाता है। हालांकि इसकी आधारशिला 1997 में रखी थी, लेकिन इसका निर्माण कार्य वर्षों तक काफी हद तक रुका रहा। बाद में NDA सरकार के दौरान परियोजना को गति मिली और लंबे समय से प्रतीक्षित इस पुल का निर्माण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। 2018 में पुल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने इसे उस क्षेत्र के लोगों के लिए जीवन रेखा करार दिया था।
4: ये देश का सबसे लंबा रेल कम रोड ब्रिज है। ये देश का पहला पूरी तरह से स्टील से बना बड़ा ब्रिज है। पानी से 30 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर बना ये पुल हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य की भी मिसाल है। भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक ब्रिज नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के लाखों लोगों के जीवन को जोड़ने वाली लाइफलाइन है। इससे असम और अरुणाचल के बीच की दूरी सिमट गई है।
5: आज उस क्षेत्र के उत्तरी तट के लोग मेडिकल इमरजेंसी, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए कुछ ही घंटों में डिब्रूगढ़ पहुंच सकते हैं। पहले आने जाने की इस यात्रा में 2 दिन तक का समय लग जाता था। धेमाजी से हरेंद्रनाथ शर्मा के साथ राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता की स्थिति में सुधार करना है। देश भर में कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम आज से प्रभावी हो गया है। इस अधिनियम ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन किया है। अफगानिस्तान के कुनार और हेलमंद प्रांतों में पाकिस्तान के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 9 अफगान नागरिक मारे गए और 11 घायल हो गए। तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने बताया कि कल हुए हमलों में कुनार के सुल्तान जिले और हेलमंद के गर्मसेर जिले में 3 मकान भी नष्ट हो गए। और अब जापान एशियाई खेलों की ताजा जानकारी के साथ हैं जागृति शर्मा।
6: भारत ने एशियाई खेलों में नौकायन स्पर्धा में आज अपना पहला पदक जीता। जापान में पुरुषों की स्केफ प्रतियोगिता में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने शानदार निरंतरता का प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। कंपाउंड तीरंदाज गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने आज पुरुषों के व्यक्तिगत वर्ग में कांस्य पदक जीता और इन खेलों में भारत की पुरुष क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच गई है। भारत पदक तालिका में 62 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है, जिनमें 10 स्वर्ण, 21 रजत और 31 कांस्य पदक शामिल हैं।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत की 21वीं सदी की कार्य संस्कृति जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन की है। उन्होंने नई दिल्ली में UPSC शताब्दी समारोह को संबोधित किया। सरकार ने जमाखोरी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए व्यापारियों के चीनी भंडारण की अवधि घटाकर 15 दिन की। रक्षा मंत्री

0: श्री राजनाथ सिंह का रक्षा प्रबंधन और संसाधनों के प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रणालियों पर जोर। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने नौकायन में पहला रजत पदक जीता, 10 स्वर्ण सहित कुल पदकों की संख्या 62 हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपकी फरमाइश, और आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म क्रांति का एक गाना। इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है महेशवाड़ी तहसील मलकापुर महाराष्ट्र से, लिखने वाले हैं शत्रुघ्न धाड़े, बाल्मीक धाड़े, न्यानाजी धाड़े, स्वप्निल धाड़े, अजय शिरोडकर और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने को पसंद किया है नेपाल पैलेस सागर से, लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका रॉबिन और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। छबड़ा राजस्थान से आसिफ अली सिद्दीकी, वाहिद अली सिद्दीकी और शमीम बानो। इसी गाने के लिए फरमाइश भेजी है पालदाना का इंदौर से हसीना बी मंसूरी, आमना बी मंसूरी और मोहम्मद रफी मंसूरी। और ये पत्र है धामड़ी मनोरा से, लिखने वाले हैं तुलसीराम डेरे, मायावती डेरे, संदेश डेरे, आदेश डेरे, किरण डेरे, प्रवचल डेरे और अनुत। इसी गाने के लिए हमारे पास में ये फरमाइश है, लिखने वाले हैं इन्होंने जगह का नाम लिखा, हाँ ये है गोवर्धन, रविंद्र पवार, मीना पवार, श्रीकांत, एकनाथ काले और इन्होंने ज़िला बाझिम से ये पत्र लिखा है। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं क्रांति फिल्म का ये गाना। आवाज़ें इसमें किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, नितिन मुकेश और साथियों की हैं। फिल्म का नाम क्रांति है और संतोष आनंद का लिखा हुआ ये गाना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। सुनिए ये गीत।

क्रांति फिल्म के गाने के बाद अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नसीब का एक गाना। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, आशा भोसले, उषा मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों की। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है शाहू नगर यवतमाल से। लिखने वाले हैं राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी, स्वीटी बेबी, प्रियांशी और उनके परिवार के दूसरे सदस्य इसी गाने को पसंद किया है। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन जमप्रीत, हेमेंद्र और सम्मति पंचोलिया ने। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गायकवाड़, सरिता गायकवाड़, प्रिंस एकांश गायकवाड़, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गायकवाड़, प्रणेता गायकवाड़, अर्जुन गायकवाड़, वैशाली शैलेश गायकवाड़, सुमित गायकवाड़, कुमारी धोनी गायकवाड़ परी और उनके परिवार के दूसरे सदस्यों ने। ज्योतिर्लिंग रेडियो श्रोता संघ, रेडियो संघ नेहरू वार्ड, बस स्टैंड यादव मोहल्ला, सनावद, मध्य प्रदेश से लिखने वाले हैं दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, मुस्कान मालाकार, योगेश मालाकार और उनके परिवार के दूसरे सदस्य। सुनिए ये गीत।

अब हम आपको सुनवा रहे हैं पूनम फिल्म का गाना, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, हसरत जयपुरी का लिखा हुआ है, अनु मलिक का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है कवई सालपुरा ज़िला 12 राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव,

प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक श्रीवास्तव और उनके परिवार के बहुत सारे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी और फातिमा खातून अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीपा दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और अस्मा खातून अंसारी, जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है गोला बक्सर, गोला बाजार बक्सर से लिखने वाले हैं सिद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित, मोहित और उनके परिवार के सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है मोहल्ला हलवाई यान शेरकोट ज़िला बिजनौर से मोहम्मद वक़ार आफरीदी, मोहम्मद इकबाल आफरीदी, सितारा बेगम, नसरीन, रोज़ी परवीन, बिट्टू भैया, साजिदा रानी, हिना कौसर और उनके परिवार के सदस्य। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से स्टार रेडियो श्रोता संघ के जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और डागला परिवार। और इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है सारा गांव सुजान वर्मा, सुहाद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा की। सुनिए ये गीत।

अगला गाना हमने लिया है, बहुत ही खूबसूरत गाना है जिसको लिया है हमने खुदा कसम से। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की हैं। मजरूर सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है। और इस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है थाना रोड बक्सर से, लिखने वाले हैं जीवत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुषी, आयुष और सानवी। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है छत्रपति शंभाजी नगर से, लिखने वाले हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश और परिवार के दूसरे सदस्य। इसी गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश का यह ख़त आया है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से, कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा सालिया, शोएब साइमा खान, मुजतबा खान और आफिया खान, रऊफ खान और शाहिद भाई का। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई है राजा बाजार बिहिया आरा से, लिखने वाले हैं सुरेश केसरी, पूनम केसरी, प्रतिज्ञा केसरी, प्रतीक केसरी और ओम नंद केसरी की। फरमाइश आई है, सुनवाते हैं खुदा कसम का ये गाना।

आखिर में अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म चकमा का एक गाना, आवाज़ सुलक्षण पंडित और मोहम्मद रफ़ी की है। आनंद बख्शी ने इस गाने को लिखा है, बप्पी लहरी का संगीत है और इस गाने के लिए फरमाइश आए हैं सिंहपुर बड़ा से लिखने वाले हैं राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा।

इसी गाने के लिए फरमाइश आई है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा चर डोंगरी पिपरिया से लिखने वाले दुर्गाराम साहू अजय साहू जय किशन साहू और उनके परिवार के सदस्य इसी गाने के लिए फरमाइश भेजिए गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जितेग ब्रक मीका ब्रक और उनके परिवार के सदस्य। और ये आखिरी ख़त है सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी लीला फतेह चंदानी संगीता सुनीता पिंकेश साक्षी और मनन तानिया का। सुनते ही ये गाना।

0: इसी गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो के घड़ी में 2:57 हुए हैं। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पायलट स्मिथ मच्छार के परिजनों से फोन पर बात करके उनके साहस की सराहना की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। स्मिथ मच्छार फिलहाल तबुक के अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा की और जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने भोपाल के विकास के साथ आदर्श गौशाला के काम में तेजी लाने और सिंगरौली को आदर्श जिला बनाने के प्रयासों पर जोर दिया। प्रदेश में इस साल भी सोयाबीन की खरीदी भावांतर योजना के तहत होगी। किसानों के लिए ई उपार्जन पोर्टल पर पंजीयन 3 से 17 अक्टूबर तक किया जाएगा। पंजीयन के दौरान भुगतान वाले आधार लिंक बैंक खाते में 1 रुपए भेजकर उसका सत्यापन किया जाएगा। विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में 3 महीने बाद आज से जंगल सफारी शुरू हो गई है। सुबह 6 बजे से पर्यटकों ने ताला मगथी और खितौली जोन में जंगल का भ्रमण किया। आकाशवाणी भोपाल में स्वच्छता ही सेवा अभियान 6.0 और एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया गया और उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती हुई। सुबह 4 बजे मंदिर के पट खुलने के बाद भगवान का जल अभिषेक और पंचामृत से अभिषेक किया गया। सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

डीटीएच ऑडियो चैनल पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में 3 बजे नेको हैं।

मीडियम वेव डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। थोड़ी देर में होगा हमारा अगला कार्यक्रम। मीडियम वेव डीटीएच ऑडियो चैनल साथी न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल एप्लीकेशन पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3 बजे हैं, लीजिए सुनिए शाम की सभा में प्रसारित होने वाले आकाशवाणी मध्य प्रदेश और आकाशवाणी भोपाल के मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। युवा साथियों का नियमित कार्यक्रम युवाणी रोज की तरह 5:02 पर होगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति होगी। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकते हैं 5:33 पर, शाम 6:30 पर और रात 8:35 पर, और साथ ही सुन सकते हैं 9:30 पर और रात 10:20 पर। प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम होगा 6 बजे। किसान वाणी 7:30 पर। विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा, ये कार्यक्रम 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। 10 बजे आप सुन सकते हैं एशिया गेम्स 2026 पर आधारित डेली हाइलाइट्स। 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम राग रजनी, जिसमें कलाकार होंगे यशवंत पुगा जोशी, इनका सुनेंगे आप ख्याल गायन। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। 3:02 हुए हैं, अब हमारा मीडियम वेव पर प्रसारण कुछ देर के लिए बंद होता है। अब से कुछ ही देर बाद

0: जो सुन रहे हैं वो अपने विचार हमारे साथ साझा कर
1: जी
0: सकें। तो आज हम लेकर आए हैं कहानी पद्मश्री के अंतर्गत लक्ष्मी बरुआ, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके बारे में हम बात करेंगे, उनके जीवन संघर्ष के बारे में बात करेंगे। और साथ ही क्या लेकर आए हैं?
1: मुझे कुछ कहना है, मैं हमारे साथियों ने कहना शुरू कर दिया है, संगीत का जादू। हमने कहा था इस विषय पर कुछ कहें, तो उन्होंने इतनी सारी बातें कहनी शुरू कर दी है। और उपयोगी टिप्स में आज हम बात करेंगे वृद्ध जनों की देखभाल
0: हाँ,
1: किस तरह से हो।
0: कैसे करनी चाहिए। कि इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई साइंस प्रोजेक्ट है,
1: हाँ
0: बस कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अपने जो बुजुर्ग हैं उनकी सहायता करनी है, बस सहायता, एक सहायक की तरीके से हमें काम करना है,
1: जी
0: उनके अपने की तरह से काम करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये सारी चर्चा हम करेंगे, साथ में बात करेंगे, लेकिन एक गीत सुनने के बाद, है ना?
1: देखिए,
0: गीत,
1: आते ही
0: संगीत,
1: आते
0: क्योंकि
1: आते
0: संगीत का दिन है ना,
1: जी
0: तो संगीत के दिन की शुरुआत अगर गीत से करें तो सबसे बढ़िया
1: तो
0: बात होगी।
1: कार्यक्रम में भी संगीत का जादू छाने देते हैं और कार्यक्रम
0: हाँ
1: में पहला गीत आने देते हैं।
0: बिल्कुल।

0: आरती जी, संगीत की तो इतनी बातें हो गई, लेकिन आपने जब कहा कि इतने सारे दिवस हैं तो दिन भी ऐसे घूमने लगा हमारा भी कि क्या क्या है, कौन कौन से दिवस हैं, जरा बताइए तो,
1: बहुत
0: सस्पेंस क्यों है इतना?
1: बिल्कुल, और इतने स्वादिष्ट दिवस है ना, हाँ बहुत मजा आ जाएगा। क्योंकि देखो, एक तो है शाकाहार दिवस, यानी कि अच्छी अच्छी चीजें खाइए, फल फ्रूट, फल नहीं माफ कीजिएगा, अब हम खा सकते हैं सब्जियां, बढ़िया
0: हाँ,
1: बढ़िया। वैसे शाकाहार में फल भी
0: फल भी
1: आता
0: खा
1: है,
0: सकते हैं।
1: सब्जियां
0: हाँ
1: आती हैं,
0: हाँ
1: सब कुछ आता
0: जब
1: है।
0: उपवास करते हैं तो बस फलाहार
1: हाँ
0: बोल
1: फल
0: बोल के जो
1: खाते हैं,
0: खाते हैं हम।
1: हाँ वो फलाहार भी वही है,
0: जी
1: तो सब्जियां हरी हरी खा सकते हैं, बढ़िया।
0: हाँ
1: और हमारा खून भी बढ़ाती हैं, हमारा जो दिमाग है उसको भी शार्प करती हैं, तेज करती हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो शाकाहार में बहुत सारे गुण भी समाए, और साथ ही हम बात करेंगे, पूछेंगे बल्कि अपने साथियों से, जो श्रोता है उनसे, कि उन्हें क्या पसंद है, चाय की कॉफी।
0: लेकिन
1: वैसे
0: ये क्यों
1: तुम्हें क्या
0: पूछ रहे हैं
1: पसंद
0: आप,
1: है?
0: ये क्यों पूछ रहे हैं आप, शाकाहारी में ये सब कैसे आ
1: देखो,
0: गई?
1: एक तो शाकाहार दिवस है,
0: हाँ हाँ
1: समझो ना, थोड़ी सा जो हम हिंट दे रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं।
0: समझ तो गए हम भी कि कॉफी या चाय में से क्या पसंद है, तो हम अपना जो जवाब है वो बचा के रखेंगे उस समय के लिए जब हमारे श्रोता अपने जवाब दे देंगे तब।
1: बिल्कुल, आप लोग भी बताइए आपको क्या
0: हाँ
1: पसंद है, चाय की कॉफी?
0: फिर पता चलेगा कि आज सखी सहेली के बाद चाय मिलेगी या कॉफी
1: बिल्कुल
0: मिलेगी
1: बिल्कुल।
0: या दोनों ही नहीं मिलेगा। जी
1: नहीं, कॉफी या चाय में से आप बताइए आपको क्या पसंद है,
0: जी
1: तो क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ हमारा दिवस है ना।
0: और जो शाकाहारी दिवस आज है हम बता रहे हैं, तो

0: दिन भी थोड़ा हरा भरा है, और शाकाहारी लोगों की मतलब बातें करें, शाकाहारी जिन लोग खाते हैं, मतलब सभी खाते हैं, शाकाहारी तो सब होते
1: बिल्कुल,
0: हैं क्योंकि सभी एक ना एक कभी ना
1: शाकाहार
0: कभी
1: के
0: तो
1: साथ में, शाकाहार के
0: शाकाहार
1: साथ
0: के
1: में
0: साथ में कुछ
1: भी।
0: कुछ और दूसरे आहार भी लेते हैं।
1: हाँ
0: लेकिन कई बार ऐसा होता है जो शाकाहारियों की, इनकी थाली को देख कर, सब्जियाँ देख कर डॉक्टर भी बोल देते कि भाई वाह, रंगों का पूरा पैलेट ही यहाँ पे भरा हुआ है।
1: बिल्कुल
0: तो विश्व शाकाहारी दिवस में हम यही बात कर सकते हैं कि शाकाहारी भोजन और पौधों से मिलने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनके संतुलित खान पान के बारे में सोचने का मौका ये दिन हमें देता है।
1: बिल्कुल। लेकिन आज हम कोई भारी भरकम से आपको भाषण नहीं देने वाले हैं
0: नहीं दे रहे?
1: कि
0: अरे
1: हाँ कि आपको ये करना चाहिए वो करना
0: जी
1: चाहिए। आपको जिस कलर की जिस रंग की सब्जी पसंद है
0: हाँ
1: आप खाइए, जो फल पसंद है वो खाइए। और देखिए खाने के समय भाषण सुनना ऐसे ही लगता है जैसे कि गर्मा गर्म पकौड़े सामने रखे हों और कोई कहे पहले इसमें से आप कैलोरी गिननी कि आपको कितना इसमें से आपको आपके वजन बढ़ाने वाली
0: हाँ
1: चीजें हैं,
0: हाँ
1: इसमें ऐसी चीजें वैसी चीजें, तो उस समय तो हमें लगता है ना कि हम बस एंजॉय करें उसको, आनंद उठाएं उस पकौड़ों का।
0: हाँ
1: तो वैसे ही है शाकाहार दिवस के बारे में बात करेंगे, तो हम अपनी अपनी बात करिए। आप बताइए कि भाई आपको कौन सी सब्जी पसंद है, क्या
0: हाँ
1: खाना अच्छा लगता है आपको, मतलब कौन सी सब्जी को किस तरह से बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं एक ही
0: जी
1: सब्जी को, तो ये बता सकते हैं आप। और साथ ही बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा आपके जो जो प्लेट रहती है उसमें किसका राज रहता है, आलू का, गोभी का, टमाटर का, मिर्ची का, किस चीज का सबसे ज्यादा रहता है बोल
0: ये अभी
1: वाला।
0: तो लग रहा है आलू ही जीत जाएगा वैसे। लेकिन पनीर भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि पनीर कचघरों के लिए तो सब्जी नहीं है बल्कि परिवार का एक सदस्य जैसा होता है। कहते कि क्या
1: बिल्कुल
0: बनेगा ते पनीर,
1: हाँ,
0: कल कल क्या बना था पनीर, आज क्या बनेगा पनीर,
1: कोई
0: आज थोड़ा
1: कोई
0: सा
1: आ
0: अलग
1: रहा है
0: बना
1: तो भी
0: है,
1: पनीर, कोई
0: हाँ
1: नहीं आ रहा है तो
0: तो
1: भी
0: भी पनीर, और बहुत
1: पनीर।
0: दिनों से खाया नहीं इसलिए भी पनीर।
1: हाँ
0: तो पर कुछ अलग अलग पनीर की भी बहुत सी रेसिपी होती है, तो अलग अलग बनाते हैं कि कभी क्या बनेंगे, तो शाही पनीर बनेगा, कभी कुछ पनीर का अलग अलग
1: हाँ
0: चीज़ें, कभी भुर्जी बन जाती है पनीर की। तो
1: हाँ
0: पनीर भी अपने आप को रंगों में अलग अलग
1: बिल्कुल,
0: रूपों में ढाल
1: हरा
0: लेता
1: भरा भी
0: है।
1: पनीर हो जाता है जब
0: हाँ
1: हम उसमें कोई हरी सब्जी मिला के बना लेते हैं।
0: और सही बात ये भी है कि शाकाहारी भोजन बोलते साथ ऐसे जो कहते हैं ना घास फूस बोलते कई बार लोग, तो वो
1: हाँ
0: घास फूस नहीं, ऐसा नहीं कि सलाद की प्लेट लेकर बैठ गए तो ही शाकाहारी। भाई
1: बिल्कुल
0: शाकाहारी व्यंजनों की जो बातें हैं वो
1: बिल्कुल
0: तो अपने आप में ही है, क्योंकि इतनी सारी विविधता है हमारे ही रसोई में, हम जब देखते हैं शाकाहारी खाने की तो ऐसा लगता है कि खाना खा लें कि इसकी फोटो खींच लेंगे, इतना कलर रहता है, इतना रंग
1: सच
0: रहते
1: में
0: हैं,
1: सच
0: तो
1: में
0: बड़ा आनंद भी आता है।
1: बिल्कुल। और दाल चावल रोटी सब्जियां फल अनाज दही दूध पनीर मेवे, कई तरीके के जो पौधे होते हैं वो उन पे जो आधारित फल होते हैं फ्रूट होते हैं और ये सब्जियां होती हैं, शाकाहार होता है। तो अगर संतुलित भोजन हो तो शाकाहारी थाली जो होती है वो स्वाद और पोषण दोनों से भरी हुई हो सकती है।
0: जी
1: और शाकाहारी भोजन में भी संतुलन बहुत जरूरी होता है कि एक ही चीज़ अब मत खाते रहिए कि
0: हाँ
1: हमने पनीर खाने तो पनीर चला ही चला जा रहा है, चला ही चला जा रहा है, बाकी चीज़ों को भी मौका दीजिए अपनी स्वाद को पहचानने का।
0: हाँ
1: तो दालें हैं और प्रोटीन के और भी बहुत सारे स्रोत हैं, और साबुत अनाज हो गए, मौसमी फल सब्जियां हैं, मेवे हैं, बीज हैं, और बहुत से आवश्यकता अनुसार जैसे कि आप दूध दही का भी सेवन कर सकते हैं, उसको भी तरह तरह से बना सकते हैं, तो इससे पौष्टिकता तो आती है और साथ ही विविधता भी आती है खाने में।
0: और हरी सब्जी को देख के ऐसे प्लेट से भागने लगते हैं, बोले अरे अरे हरी सब्जी क्यों खानी है, लेकिन अगर उसको स्वादिष्ट तरीके से हम पकाते हैं तो उसका एक अलग तरह का जायका बढ़ जाता है। और ऐसे लगता है जिसको देख के कल को ऐसे लगता था कि नाक सिकोड़ते थे कि ये नहीं खाना है, वो हमारी पसंदीदा डिश बन जाती है कि ये नहीं बना, चाहे वो लौकी ही क्यों ना हो, क्योंकि
1: बिल्कुल
0: लौकी बड़ी स्वास्थ्यवर्धक है लेकिन लोग उसे खाना नहीं चाहते, उनके कहते हैं कि लौकी कद्दू क्या खाना है,
1: बिल्कुल,
0: कर्ड
1: लौकी को ही नेहा
0: हाँ
1: अगर हम दाल में, चने की दाल में डाल के बनाए क्या स्वाद बनती है, वो
0: हाँ
1: बहुत
0: तो
1: सारी
0: वही तो
1: चीजें
0: बात है
1: हैं।
0: कि अगर जब हम उसको बनाने का तरीका अगर बदल देते हैं तो ये सब्जियां भी बोल सकती कि भाई मैं जब पहले खाने की मेज पे आती थी तो कैसी शिकायतें होती थी, अब देखो अब मुझे देख के मुंह मत बनाओ,
1: हाँ
0: मुझे देख के थोड़ा मौका तो दो। तो
1: बिल्कुल
0: अलग अलग तरह से अब लौकी का अगर रायता बनाया जाए तो कोई
1: हाँ,
0: मुंह नाक नहीं
1: लौकी का
0: सिकोड़ता है।
1: कोफ्ता, वाह क्या
0: हाँ
1: क्या बात है।
0: देखिए लौकी पे ही हमारा कुछ अलग सा ऐसा प्रेम जागृत हो चुका
1: नहीं
0: है।
1: कहने की मतलब, कहने का मतलब है कि एक छोटी सी एक सब्जी जिसपे आप नहीं खाना चाहते हैं वो
0: हाँ
1: किस तरीके से कितने कितने तरीके से बन सकती है।
0: तो इस तरह से बन सकती है, व्यंजन विधियों में तो हम बताते ही हैं, लेकिन जब इतनी बातें होगी खाने की, जब ज्यादा बातें हो जाती है ना तो हमें एक गीत चला लेना चाहिए,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि
1: थोड़ा दिमाग
0: थोड़ा
1: हटे वहां
0: दिमाग
1: से।
0: और थोड़ा जो मुंह में पानी आ गया उसका क्या किया
1: बिल्कुल
0: जाएगा।
1: तो थोड़ा सा अच्छा
0: हाँ
1: लगेगा।

सालगिरह पर 3 अक्टूबर को होगा एक खास जश्न। राजस्थान की लोक माटी की खुशबू लिए एक आवाज और एक अंदाज जिसकी अपनी ही एक रंगत है, और इस बार ये आवाज सिर्फ गीतों में नहीं बल्कि लाइव ब्रॉडकास्ट में होगी हमारे साथ। जानी मानी गायिका, अभिनेत्री, लेखिका और रंगकर्म की बहुमुखी कलाकार इला आरुण। सुनिए उनकी बातें, जानिए उनकी कहानियाँ और मनाइए विविध भारती की सालगिरह का ये खास।